0: श्रोताओं आइए बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: यस मैम, हम जिया प्रजापत बोल रहे हैं, नीलगंगा राजनगर से।
1: जिया बात कर रहे हैं, आप उज्जैन से ही बात कर रही हैं। जिया कैसी हैं आप?
2: बढ़िया है मैम, आप बढ़िया?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। जिया जी, आप क्या करती हैं?
2: मैम हम मतलब घर पे रहते हैं 12th करके।
1: जी जी, अच्छी बात है। जी, आकाशवाणी उज्जैन सुनते हैं आप?
2: हाँ मैम सुनते हैं, रोजाना
1: सुनते हैं। कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं जी आपको?
2: मैम हमें बॉलीवुड बीट्स अच्छा लगता है, सुबह भजन आते वो अच्छे लगते हैं।
1: अरे वाह।
2: और फिल्मी गीत अच्छे लगते हैं।
1: फिल्मी गीत अच्छे लगते हैं आपको जिया। आज दरअसल हम बात कर रहे हैं कि त्योहारों की क्या तैयारियां चल रही हैं। जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, जिसमें 9 दिन हमारे यहाँ माता जी की स्थापना होती है, गरबे होते हैं, फिर दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, तो इन सब त्योहारों की आप क्या तैयारियाँ कर रही हैं?
2: मैम तैयारी तो जोरों से चल रही है।
1: क्या
2: मतलब
1: है?
2: हम कुल देवी के दर्शन करके आते हैं फर्स्ट दिन, और घट स्थापना करते हैं घर पे।
1: जी कहाँ है कुल देवी आपकी?
2: मैम उज्जैन में है, गोवला के यहाँ पे।
1: अच्छा, कोई स्थान
2: है
1: जी? क्या नाम से स्थान है उज्जैन में? डोंगला
2: मैम, गोवला करके गांव है, वहाँ पे देवल माता का मंदिर है हमारे, कुल देवी माता।
1: हाँ। अरे वाह, क्या बात
2: मैम।
1: अच्छा,
2: वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे दर्शन वगैरह करके आते हैं,
1: और फिर घर पर घट स्थापना करते हैं आप?
2: हाँ, घर पे घट स्थापना करते हैं और पूजा पाठ करते हैं 9 दिन।
1: अच्छा, कौन सा पूजा पाठ करते हैं आप? क्या कोई स्तुति है जो आप करते हैं?
2: मैम जैसे नॉर्मल करते हैं ना, माता जी की आरती,
1: दुर्गा चालीसा वगैरह।
2: हाँ ये सब
1: जी,
2: करते हैं।
1: अच्छा अच्छा, और जिया जी क्या आप गरबे करने जाती हैं?
2: हाँ मैम चल जाते हैं, वैसे डेली नहीं जाते हैं, बाई चांस एक आध बार।
1: अच्छा,
2: चल जाते हैं
1: जी। अच्छा अच्छा, चलिए तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं गरबे करना?
2: मैम अच्छा लगता है।
1: अच्छा लगता है ना?
2: किसको पसंद नहीं
1: जी,
2: है
1: जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये ना एक माता की आराधना होती है, माता के सामने घड़े को रख करके उसके चारों ओर जब नृत्य किया जाता है गोल घूम करके, और तालियों के साथ में, डंडों के साथ में, तो ये एक बहुत सुंदर माता की आराधना का ही एक रूप होता है। तो जी आप एक बात और बताइए, क्या आपके घर में दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी है?
2: यस मैम, दिवाली की सफाई तो क्या अभी नौरते की पूजा हो जाए और उसके बाद फिर स्टार्ट होती है।
1: उसके बाद स्टार्ट होगी, तो आप भी हाथ बटाएंगे उसमें?
2: हाँ मम्मी का हाथ बटाते हैं हम।
1: मम्मी का हाथ बटाते हैं आप, चलिए ये अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जिया हमें। हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का एक और गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी उज्जैन में फोन करने के लिए।
2: मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चलिए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।
3: <Uh-huh. coughs>

0: तो चलिए श्रोताओं, बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं कि वो क्या तैयारियां कर रहे हैं त्योहारों की। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: मैं अभिषेक चौधरी उज्जैन से बोल रहा हूं।
0: अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं अभिषेक जी?
1: मैम बढ़िया हूँ मैं।
0: अभिषेक जी, आप क्या करते हैं?
1: मैम हमारी टायर रिमोल्डिंग की शॉप है किसान टायर के नाम से।
0: अच्छा। तो अभी जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अभी त्योहार जो है वो लगातार हमारे एक के बाद एक हमारे आ रहे हैं। अभी नवरात्रि चल रही है, फिर दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी। इन त्योहारों की आप क्या तैयारियां कर रहे हैं?
1: मैम तैयारी क्या, ये घर का ही रहता है जो लेडीज वगैरह करती है
0: जी।
1: हाँ, साफ सफाई वगैरह और भक्ति में लगे रहते हैं हम शक्ति का पर्व पर।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे शब्दों में आपने ये बात कही अभिषेक जी कि आप शक्ति के पर्व में भक्ति में लगे रहते हैं। तो अभिषेक जी, एक बात और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि घर पर लेडीज लोग ये जो सफाई वगैरह करती हैं, क्या आप उसमें हाथ बटाते हैं? कई चीजें ऐसी होती हैं, कोई भारी सामान उठाना होता है, कहीं ऊपर चढ़कर कोई काम करना होता है ना, तो क्या ऐसे कामों में आप हाथ बटाते हैं?
1: मैम हम क्या है, शॉप वाले हैं तो हमें संडे को टाइम मिल पाता है
0: जी।
1: तो हम क्या, अगर घर पे संडे को थोड़ा बहुत हाथ बटा देते, बाकी तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है
0: जी। जी, मतलब संडे को आपका घर पे भी घेराव होता होगा?
1: हाँ जी, बिल्कुल चारों तरफ से।
0: जी अभिषेक जी, और जी बताएं।
1: हमारी मेरी दो बेटियां हैं, वो अभी दशहरा मैदान गरबे में जा रही है गरबा खेलने।
0: अरे वाह, क्या बात है। हाँ। बहुत सुंदर बात है ये तो, और बहुत अच्छी। अभी तो प्रशासन ने यहाँ पर अच्छी मुस्तैदी है, बच्चियों के लिए पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो बिल्कुल अपनी बच्चियों को भी इस बारे में सारी जानकारी जरूर दीजिएगा। और अभिषेक जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी दुकान है, तो क्या दिवाली पर आप दुकान में किस तरह की तैयारी आपकी होती है? क्या दुकान पर पूजा होती है? क्या दुकान की भी सफाई होती है?
1: हाँ जी मैम, वो हम नवरात्रि के बाद जब भी हमें समय मिलता है थोड़ा फ्री का टाइम का, तब हम साफ सफाई करते हैं। और हमारा क्या व्यापार कृषि से संबंधित है, ट्रैक्टर से किसानों
0: की। जी जी,
1: तो वो दिवाली के पहले जब भी हमें थोड़ा समय मिलता है तो हम समय निकाल के साफ सफाई में कर लेते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: और मैम मैं पार्ट टाइम में लोडिंग ऑटो भी चलाता हूँ।

0: अच्छा।
1: उसमें मैंने रेडियो लगा रखा है तो मैं दिन भर मतलब ये विविध भारती ही सुनता रहता हूँ और बड़ा ही आनंद आता मुझे आपके प्रोग्राम सुन के।
0: बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी। क्या आप आकाशवाणी उज्जैन के भी कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: हाँ जी मैम, मैं दोनों जो वो बम्बई वाले और ये उज्जैन वाले दोनों ही सुनता हूँ मैम।
0: क्या बात है। तो कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं अभिषेक जी?
1: मेरे को वो विविध भारती के, एक तो वो हेलो फरमाइश,
0: हाँ जी,
1: और ये अपना उज्जैन वाला भी जो है, ये जो अभी फरमाइश वाला चल रहा है,
0: उज्जैन
1: वाला ये
0: जी।
1: और वो अपने हेलो सहेली, सखी सहेली
0: जी,
1: और भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा नाम जिंदगी में, बाकी सुनते रहता
0: हूँ। पूरे समय सुनते रहते हैं जी जी।
1: हाँ, ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लेते रहते हम।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने ये बताई है कि वाकई में रेडियो के माध्यम से आप अपना कोई भी काम करते हुए भी उसे सुन सकते हैं और कई तरह की रोचक जानकारियां और कई आपको उसमें ज्ञानवर्धक बातें जानने को मिलती हैं।
1: और एक बात और बोलना चाहूंगा मैम, मैं तो अदर जो पर्सन है उनको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी कम से कम विविध भारती सुना करिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: इससे क्या है कि माइंड डाइवर्ट नहीं होता फालतू कामों में।
0: ये आपने बिल्कुल सही, संगीत जो होता है ना, और संगीत के साथ में जब कुछ जानकारियां आती हैं या कोई कार्यक्रम होता है, जब हम उसको सुनते हैं तो हमारा दिमाग भी उस तरफ सोचने लगता है, संगीत से हमारे दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत अच्छी बात कही आपने अभिषेक जी।
1: बुरे विचार मन में नहीं आते मैम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए अभिषेक जी।
1: थैंक यू मैम। जय माता दी।
0: जय माता दी। तो श्रोताओं, ये कितनी अच्छी बात थी ना अभिषेक जी ने जो भी बताई कि संगीत सुनते रहिए और संगीत सुनने से दिमाग को रखिए शांत, क्योंकि बहुत सारा काम है अभी करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: वो क्या तैयारियां कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
2: नमस्कार जी, मैं स्वाति बात कर रही हूं, उज्जैन से, अलकापुरी कॉलोनी से।
1: स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूं और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं रेगुलर कॉलर हूं आपके आकाशवाणी उज्जैन की।
1: जी जी,
2: कई बार मेरे फोन लग भी जाते हैं और आज लगा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है।
1: हाँ जी, आज ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है स्वाति जी। और स्वाति जी, अभी तो त्योहारों की धूम है और गरबों का सीजन है, चूंकि आप से हम थोड़ा पहले से मुखातिब हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि गरबों में एक आजकल थीम का बड़ा ट्रेंड हो गया है, कहीं भी जाएं, किसी भी जगह जाएं, उत्सवों में ये कलर आज का, आज ये पहन के आना है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या आप गरबे वगैरह करने जा रही हैं?
2: जी बिल्कुल, मैं गरबे, मुझे बहुत शौक है गरबे करने का, और ये और हमारा मेरा एक फ्रेंड सर्कल है जी। तो हम लोग हर साल नवरात्रि के पहले क्लासेस लेते हैं, कुछ सीखते हैं वहाँ पे, और फिर बिल्कुल बकायदा हमारी थीम्स रहती हैं, और जैसे कि 9 दिन माता जी के जो कलर जो माता जी के रहते हैं
1: जी जी।
2: जैसे पहला दिन हम लोग जो है वो सफेद है या फिर हरा रंग है या पीला रंग है, वैसी थीम्स के हिसाब से अपने ड्रेस कोड रखते हैं। लेकिन रश्मि जी, मैं आपको एक बात ये बताऊं कि ड्रेस कोड हर दिन का रहता है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो हम फ्रेंड्स ये करते हैं कि हम अपनी पुरानी साड़ियां, हमारे पुराने दुपट्टे, उनका बड़ा अच्छे से रीयूज कर लेते हैं।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने जी, क्योंकि क्या होता है ना स्वाति जी, आजकल ये थीम के चक्कर में कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा बर्डन पॉकेट पे बढ़ जाता है जी,
2: कि मतलब थीम तो रख लेते हैं लेकिन भाई 9 दिन के 9 अलग अलग ड्रेस कोड है उसके हिसाब से, तो इतना कैसे अपन उसको मैनेज करें?
1: और फिर एक बार यूज किया अगली बार फिर क्या करेंगे उसका?
2: जी वो भी बात है। तो ये हम लोगों ने एक वहाँ पे ये रूल भी बनाया हुआ है कि कोई भी अपना जो है वो नया उस पे बर्डन ना आए, तो अपने जब मिक्स एंड मैच करिए, रीयूज करिए पुराने दुपट्टों को, स्टाइल सुंदर।
1: और इस बहाने हमारे बहुत पुराने कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि आउट ऑफ फैशन हो गए, लेकिन किसी समय बहुत चाव से खरीदे थे, उनके साथ कुछ यादें जुड़ी होती है और वो फिर से पेटी से निकल आते हैं।
2: जी बिल्कुल, उस तरह से बस बहुत इंजॉय कर लेते हैं, ये सीजन बहुत ही आनंद का टाइम है।
1: ये बात तो है कि त्योहार मन में बहुत सारी उमंग लेकर आते हैं। और स्वाति जी, इसी के साथ मैं आपसे एक चीज और ये पूछना चाहूंगी कि ये जो त्योहार अभी हम बात कर रहे हैं, सफाई की अगर मैं बात करूं, चूंकि दिवाली की सफाई कई घरों में शुरू हो चुकी है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि आप कैसे करते हैं, क्योंकि सामान तो हर बार नया आता जाता है, तो घर में जगह तो लिमिटेड है, तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं?
2: स्वाति जी, मतलब मैं स्वाति अपनी तरफ से सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि सफाई आप जब भी करें तो थोड़ा जो डीक्लटर करने का सामान है, मतलब हम लोग कई बार ऐसा रहते हैं बहुत सारी चीजें सहेज के रखते हैं, अरे ये यूज आएगी, लेकिन वो साल भर फिर वो उसी पेटी में रखी हुई रहती है और वो कोई यूज नहीं आती,
1: तो मुझे लगता है कि आप
2: जी तो या तो आप उनको ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे जरूरतमंद लोग हैं, अपने कुछ कपड़े जो है वो उन लोगों को दीजिए, मतलब मुझे लगता है स्पेशली जब हम दो महिलाएं बात कर रही हैं तो महिलाएं बहुत सारी चीजें अपने पास अवेयर के रखती हैं कि हाँ नहीं नहीं ये नहीं है, मेरे को कभी काम आएगा, मैं पहनूंगी इसको, लेकिन वो मुझे पता है कि वो अब मेरे साइज से छोटा हो चुका है, वो मुझे कभी काम नहीं आने वाला
1: जी।
2: तो वो चीजों का मोह जो बोलते है ना, तो उसको थोड़ा सा वो करना चाहिए और अपनी चीजों को देना चाहिए, अच्छे से क्लटर करना चाहिए ताकि नई चीजों के लिए भी फिर रूम बन सके, क्योंकि
1: त्योहार आते हैं तो खरीदी तो होती है, शॉपिंग जी बिल्कुल, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके हमें स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई, कपड़ों का भी रीयूज आपने बताया और डी क्लटरिंग का भी जो आपने हमें आज ये मैसेज दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मैं आपसे बस यही बोलना चाहूंगी कि मुझे बहुत पसंद है उज्जैन आकाशवाणी, और जब से ये शुरू हुआ है मैं इसकी रेगुलर लिसनर हूँ और बहुत पसंद करती हूँ आप लोगों के प्रोग्राम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आपने सुना किस तरह से सफाई को हम एक अच्छे वे में हम उसको क्रिएटिव भी कर सकते हैं, कोई पुरानी चीज़ है उसे कोई सजावट की सामान बन सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब नहीं

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन एफ एम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये कार्यक्रम है हमारा विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम, और मैं हूँ आपके साथ आपके इस सफर में आपकी हम सफर रश्मि बजाज। दोस्तों, कहते हैं ना कि दिवाली की सफाई में अक्सर वो चीज़ें भी मिल जाती हैं जिन्हें हम सालों पहले भूल चुके थे, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ऐसी कोई चीज़ मिली हो जिससे आपकी कोई पुरानी याद ताज़ा हो गई हो? तो अपनी ऐसी ही यादों को हमारे साथ बांटिए और हमें कॉल कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0734-405-4191। फ़िलहाल सुनते हैं ये एक और खूबसूरत गीत।

0: तो चलिए श्रोताओं, हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानते हैं कि वो त्योहारों की तैयारियों में क्या कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
2: जी नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
2: आपके नियमित श्रोता साथी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ से योगेश जांगड़े जी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, अच्छे हैं।
1: अच्छे हैं। इन दिनों अभी क्या चल रहा है आपके यहाँ नवरात्रि के अवसर पर?
2: अब माता जी की भक्ति आराधना पूजा करते हैं
1: जी,
2: और बढ़िया लोग गाना बजाना भी अपने स्तर में करते हैं।
1: अरे वाह। योगेश जी, ये जानना चाहूंगी कि जहाँ आप रहते हैं बिनापारा छत्तीसगढ़, कोई देवी स्थान बिनापारा, वहाँ पर कोई ऐसा देवी स्थान जो प्रसिद्ध हो? कई हर शहर में लगभग होता ही है।
2: जी जी, यहाँ पर माता शीतला और माता भद्रकाली की शक्तिपीठ है।
1: अरे वाह, शक्तिपीठ के शहर से आप आते हैं। शक्तिपीठ के एक शहर से दूसरे शहर को बहुत सारा नमन
2: जी
1: जी। यहाँ पर भी आप जानते होंगे कि उज्जैन में हर सिद्धि
2: माता जो है, की नगरी है।
1: जी, बिल्कुल जी, और हर सिद्धि माता जो है वो शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है।
2: जी जी,
1: सती माता का उर्ध्व ओष्ठ जो था वो यहाँ पर गिरा था ऐसा माना जाता
2: जी,
1: है
2: जी, जी,
1: तो जी आप बताएंगे आपके वहाँ के उस स्थान के बारे में, क्या उसकी प्रसिद्धि है और किस तरह से वहाँ पर ये त्योहार मनाया जाता है?
2: नवरात्रि के समय में प्रमुख रूप से भीड़ रहता है, लोग आते हैं आसपास के जो गांव के हैं
1: जी,
2: और एक जो कह सकते हैं नवरात्रि में जो प्रकाश पर्व कह सकते हैं, मतलब एक डेकोरेशन होता है तो काफी आकर्षक लगता है। और जो लोग भी अपना मनोकामना लेकर आते हैं
1: जी,
2: और मनोकामना पूरी हो इसके लिए मतलब सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं।

0: जी। और आपके घर में किस प्रकार से आयोजन हो रहे हैं इस समय? क्या कोई विशेष?
1: गांव में भी
0: जी
1: गांव में भी माता दुर्गा विराजमान किए हैं,
0: जी
1: और छोटा सा गांव है, जिला मुख्यालय से लगा हुआ बेमेतरा से,
0: जी
1: तो सभी लोग शामिल होते हैं और बढ़िया ढंग से मनाते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। और इस समय जैसा कि हम जानते हैं कि आपका खेती किसानी का भी काम है, तो
1: जी,
0: क्या इस समय चल रहा है आपकी खेती किसानी में?
1: खेती किसानी में जो निंदाई कोड़ाई काम होता है कचड़े का, वो अंतिम स्थिति में है।
0: जी
1: थोड़ी सी बारिश की अंतिम पानी की कमी हो गई है,
0: जी
1: लेकिन उम्मीद करते हैं, देखिए, बोर वगैरह के माध्यम से, और बढ़िया होगा फसल, ऐसे भी
0: बिल्कुल
1: उम्मीद
0: अच्छा
1: रहती है।
0: होगा। आज ही के समाचार पत्रों में विंटर
1: जी
0: मानसून की भी खबर आई है, कुछ 15 दिन का ऐसा आसार जताए जा रहे हैं कि शायद बारिश हो सकती है।
1: जी
0: बिल्कुल जरूर अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा योगेश
1: जी
0: जी। और आपके घर
1: जी
0: में दिवाली की सफाई वगैरह शुरू हो गई है?
1: हाँ जी, अब देखिए, अब पहले और अभी के समय थोड़ा सा अंतर ये आ गया है। पहले
0: जी
1: क्या है, मिट्टी के घर होते थे तो सबको मतलब लिपाई पोताई करना
0: हाँ,
1: गोबर
0: वो
1: वगैरह
0: पीली मिट्टी
1: से,
0: और गोबर
1: कलर,
0: से।
1: हाँ,
0: जी
1: अब थोड़ा सा पक्की हो गया है तो थोड़ा बहुत तो मतलब उनको पानी वगैरह से या फिर कपड़ों से साफ करना होता है। मतलब पहले की तुलना में थोड़ा सा वो तैयारी, उतना ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी।
0: आपने ये बात
1: और
0: बिल्कुल
1: पहले
0: सही
1: के
0: कही है।
1: समय जब देखे थे, जब छोटे थे, तो
0: जी
1: उस समय तो 15 दिन पहले लोग मतलब एकदम तैयारी में भिड़ जाते थे कि हाँ, त्योहार आने वाला है तो घर को
0: जी
1: बढ़िया
0: हाँ
1: लिपाई पोताई करना है करके।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और पूरा घर लीप कर पोत कर, और आंगन में भी गेरू और गोबर से पूरा लीप कर, और फिर वो खड़ी से कुछ सुंदर आकृतियां उस पर उकेरी जाती थी, जिसे अल्पना या मांडना कहते हैं।
1: जी, और
0: बहुत
1: मैं तो आपको पहले भी बताया हूँगा,
0: जी
1: शायद गांव का सरपंच भी रह चुका हूँ, तो
0: हाँ,
1: गांव को
0: आपने
1: पूरी
0: बताया
1: तरह
0: था
1: से काफी स्वच्छ और सुंदर बनाने का पूरा प्रयास किया हूँ।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये, और आपसे सीखने लायक, आपसे प्रेरणा लेने लायक बात है। और बहुत अच्छा लगा योगेश जी आपसे बात करके। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार। तो श्रोताओं, घर को सुंदर बनाने में यदि आप भी लगे हैं, तो इस बार आप क्या करने वाले हैं, किस तरह से अपने घर को सजाने वाले हैं, अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0734-405-4191। चलिए, अगला कॉल आता है, उससे पहले सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओं, हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं वो त्योहारों की क्या तैयारियां कर रहे हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: मैं प्रियंका तिवारी उज्जैन से ही बोल रही हूं।
0: प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूं। आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और ये फोनिंग प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा लगता है। अलग अलग लोगों से बात करने को मिलता है, सुनने को भी
0: जी बहुत हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हमें भी कई लोगों के विचार एक ही विषय पर जानने को मिलते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। प्रियंका जी, आज हम बात कर रहे हैं कि त्योहारों की तैयारी क्या चल रही है इस समय। जैसे कि अभी नवरात्रि चल रही है तो आपके घर में किस तरह से आप नवरात्रि मना रहे हैं, या आगे दिवाली आने वाली है तो उसकी क्या सफाइयां आपने शुरू कर दी है, उस बारे में।
1: अभी तो जैसे नवरात्रि का त्योहार चल रहा है तो 9 दिन माता के ही होते हैं, तो अभी ये समझिए आपकी भक्ति में समय निकल रहा है और माता की सेवा में, दूर दूर के दर्शन करने में। कहीं अब जैसे सुबह निकलते हैं तो कभी चामुंडा माता के दर्शन कर आए, क्योंकि अपन उज्जैन में ही रहते हैं तो यहाँ के स्थानीय माताओं के दर्शन करने का काम चल रहा है। और ये रहता है कि अभी त्योहार दिवाली आने वाली है, लेकिन चूंकि अभी माता जी का ही कार्य है तो उन्हें संपन्न करने के बाद में अगले ही दिनों से दिवाली की सफाई चालू हो जाएगी, तो उसकी तैयारी में लग जाएंगे। जैसे एक तरीके से ऐसा माना जाए कि हिंदू धर्म में त्योहार ही सब कुछ होते हैं। पहले पितरों के त्योहार गए तो उसकी तैयारी चलती रही, फिर नवरात्रि आई तो माता की तैयारी चल रही है, और अब जैसे ही माता जी जाएंगे उसके बाद महालक्ष्मी की तैयारी शुरू हो जाएगी।
0: बिल्कुल, आपने ये बात जी बहुत अच्छी कही प्रियंका जी, कि हमारे भारत देश में ये जो त्योहार है वो एक प्रकार से हमारी जिंदगी को चलाते हैं। बहुत सुचारू रूप से एक क्रम बना हुआ रहता है कि इसके बाद अब ये आएगा तो ये काम करना है, इसके बाद ये तो इसके बाद ये काम करना है। व्यक्ति हमेशा उन सारे त्योहारों की उमंगों और उत्साह में व्यस्त रहता है और मन हमेशा प्रसन्न रहता है।
1: बिल्कुल, मतलब ये समझ चाहिए आपके, आप फ्री नहीं है। हाँ, त्योहार ही आपका जीवन है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि वाकई में भारत के रहवासियों के लिए तो त्योहार ही जीवन है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा अभी आपने कहा कि दर्शनों का जो आप बना रहे हैं प्लान, तो आपने अभी तक कहाँ के दर्शन किए? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, उज्जैन के वासी हैं और उज्जैन में कई धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक माता जी के स्थान हैं।
1: जैसे स्थानीय रूप में हम जाते हैं चामुंडा माता के दर्शन, रोज कहीं ना कहीं जाने का क्रम चलता है। जैसे कालीबाड़ी का मंदिर है तो माँ काली के दर्शन करना, भूखी माता के दर्शन करना, चामुंडा माता के दर्शन करना, तो ऐसे क्रम से रोज कुछ ना कुछ चल रहा है। अब एक दिन 64 जोगनी माता के दर्शन किए।
0: कहाँ पर है ये 64 जोगनी माता, आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: इसी उज्जैन में ही, मतलब मैं मार्ग नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, जैसे

0: अच्छा,
1: अपन गाड़ी से जाओ तो स्थानीय रूप में सिर्फ दर्शन
0: सिटी में
1: पाती हूँ बाकी।
0: हाँ हाँ जी, अवतारपुरा में ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर है। और आपसे एक बात और मैम ये जानना चाहेंगे कि क्या आप नवरात्रि के व्रत करते हैं?
1: बिल्कुल, दोनों टाइम के व्रत करती हूँ मैं
0: जी।
1: और एक तरीके से आप ऐसा मानिए कि सुबह से शाम अपन भक्ति में ही रहते हैं माता के
0: जी,
1: तो 9 दिन बहुत अच्छा भी लगता है, एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आती है।
0: और ये
1: समझिए कि आप साल भर की एनर्जी एक ही समय में आपकी इकट्ठी हो जाती
0: बिल्कुल,
1: है।
0: आपने ये सही कहा कि व्रत करने से ये ना समझा जाए कि किसी तरह की कोई कमजोरी आ रही है, बल्कि ये समय शक्ति को प्राप्त करने का माना जाता है। और तो प्रियंका जी, थोड़ा सा एक ये जानना चाहेंगे कि व्रत जो आप कर रहे हैं तो इसमें आप किस तरह का फलाहार बना रहे हैं, क्या व्यंजन है जो फलाहार में आप उपयोग कर रहे हैं?
1: जैसे एक तो साबूदाने की खिचड़ी फिक्स ही होती है हमेशा
0: जी, बिल्कुल।
1: इसके अलावा साबूदाने के बड़े होते हैं, साबूदाने के भजिया होते हैं, इस तरह की अलग अलग डिफरेंट चल रहा है।
0: क्या बात है।
1: तो मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक बात कहना चाहती
0: हूँ। बिल्कुल, स्वागत है।
1: जैसे मैडम आप जो फोनिंग प्रोग्राम वगैरह करते हैं
0: तो
1: आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया रहता है आपका कार्यक्रम। और दूसरा, आपके यहाँ जो गोपाल भैया करते हैं गीत मुझे
0: हाँ
1: बहुत पसंद आते हैं
0: जी, बिल्कुल। तो हम उनसे जरूर कहेंगे,
1: बहुत बढ़िया
0: जी, बिल्कुल। उनको हम जरूर बताएंगे कि आपने उन्हें याद किया है, उनके बजाए हुए गीत आपको बहुत पसंद आते हैं।
1: हाँ, वो बहुत सुंदर गाने बजाते हैं, मतलब एक आप ऐसा मानिए कि आधा घंटे व्यक्ति एकदम बिल्कुल खुशी से वो हो जाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ
0: बहुत,
1: और आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी
0: नमस्कार। तो श्रोताओं, माता की भक्ति में सब डूबे हुए हैं और साथ ही कुछ फलाहार के व्यंजनों के नाम भी अब आपके कानों में पड़ चुके हैं। तो आप भी फ़ोन लगाकर हमें बता सकते हैं कि आप क्या तैयारियां कर रहे हैं, दिवाली पर क्या व्यंजन आप बनाने वाले हैं। तो चलिए फ़ोन लगाइए, हमारा फ़ोन नंबर है 0734054191, 0734054191। उससे पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: राजकुमार कुशवाहा मैडम, मैं चंद्रावती गंज से।
0: चंद्रावती गंज से राजकुमार जी आप बात कर रहे हैं, कैसे हैं राजकुमार जी?
1: बस बढ़िया है।
0: बढ़िया है, कैसा चल रहा है कामकाज?
1: कामकाज भी बढ़िया चल रहा है।
0: बढ़िया चल रहा है। राजकुमार जी, आज हम बात कर रहे हैं त्योहारों की तैयारियों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी ऑटोमोबाइल्स की दुकान है, क्या आपकी दुकान पर भी कुछ सफाई की कुछ तैयारियां हैं?
1: हाँ मैडम, ये जैसे श्राद्ध पक्ष खत्म होता है वैसे साफ सफाई शुरू हो जाती है। साफ सफाई करने के बाद में ये इधर नवरात्रा में मैडम साफ सफाई, उसके एक दिन पहले ही सारी साफ सफाई करके और दुकान की नई खरीदी करते हैं मैडम मुहूर्त देख के।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये आप हर साल का आपका ऐसा कोई नियम है?
1: जी मैडम, ये मेरे बाबूजी के समय से जो ऐसा होता है, तो वो अभी हम इस परंपरा को चला रहे हैं। दशहरे में भी खरीदी करते हैं, दशहरे पे जो हमारे सारे जो औजार है, हमारे पाने हैं, टूल्स है, सभी के हिसाब से इनकी पूजा भी होती है।
0: जी, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि एक परंपरा है जो कई सालों से चली आ रही है और उस बहाने हमारे काम समय पर हो जाते हैं, तो आप उसका निर्वहन अभी भी कर रहे हैं। राजकुमार जी, मैं आपसे ये और जानना चाहूंगी कि अभी नवरात्रि चल रही है, तो आपके शहर में कोई धार्मिक स्थल, कोई माता रानी का मंदिर ऐसा जो प्रसिद्ध हो, उसके बारे में आप बताएंगे?
1: माता रानी का मंदिर तो मैडम उज्जैन में ही है आपके, बाकी हमारे यहाँ तो मंदिर है। हाँ, एक माता जी का एक मंदिर है हमारे, बहुत पुराना है, अंबा माता, अंबे जी का मंदिर। वहाँ पे कार्यक्रम वगैरह होते हैं, गरबे होते हैं और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे।
0: जी जी,
1: हमारे यहाँ भी वैसे हर जगह हर पंडाल लगे हैं वैसे तो।
0: जी, और उज्जैन में तो 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ भी है, जहाँ पर कहा जाता है कि माता सती की दाहिनी कोहनी गिरी थी। और दर्शन, आप उज्जैन से ज्यादा दूर नहीं है तो दर्शन करने आप उज्जैन जरूर आ सकते हैं। और जी, बाकी अन्य तैयारियां आपके घर पर त्योहारों की कैसी चल रही है?
1: मैडम, जो रेगुलर होता है दीपावली के समय, दीपावली की तैयारी, दीपावली के पहले सारी तैयारी होती है साफ सफाई, फिर वो व्यंजनों की तैयारी हो जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने राजकुमार जी, व्यंजनों की तैयारी का समय भी बहुत जल्दी नजदीक आ रहा है, तो त्योहारों का उत्साह बना रहे और साथ ही जो हमारे लोकल के जो हमारे कारीगर हैं, मिट्टी के दिए वगैरह हम उनसे ही खरीदें, ये मैं और कहना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से। तो बहुत सारा धन्यवाद आपका आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए, समय की सीमा है, आज के लिए मैं आपसे अभी इजाजत चाहूंगी। नमस्कार
1: जी मैडम, धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, ये थे राजकुमार जी कछावा, जिन्होंने बताया कि एक परंपरा का निर्वाह वो कई वर्षों से कर रहे हैं। तो इस बार दिवाली की शॉपिंग लिस्ट में आपके लिए सबसे ऊपर क्या है, ये हमें आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के समापन की ओर। बातों ही बातों में वक्त का तो जैसे पता ही नहीं चला। तो श्रोताओं, जिनके कॉल्स हम आज नहीं ले पाए, उम्मीद है कि अगली बार उनसे ज़रूर बात होगी। आप सभी को आने वाले त्योहारों की बहुत सारी शुभकामनाएं, घर में खुशियां आएं और आपका हर दिन किसी त्यौहार से कम न हो, इसी मंगल कामना के साथ अपनी दोस्त रश्मि को दीजिए आज्ञा। अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए, सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

FM 102.5 MHz पर हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं। चलिए अब रुख करते हैं विविध भारती मुंबई की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग और आज इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। श्रोताओं, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि सीधे दिल में उतर जाती हैं। किशोर कुमार की आवाज भी ऐसी ही थी, जिसमें शरारत थी, शोक ही थी, रोमांस था और जुदाई का दर्द भी। वे गाते थे तो लगता था जैसे हर इंसान की अपनी कहानी को सुर मिल गए हो, है ना? आज उनकी पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं उस बेमिसाल फनकार को जिसने अपनी आवाज से हिंदी सिनेमा के संगीत को एक अलग पहचान दी। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुम रो फक्कड़ घूमू बन के घुमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का

झुमरू फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, बोल और संगीत किशोर कुमार का। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये गरबा गीत।

शिवांग माथुर और श्रद्धा श्री की आवाजों में अभी आपने सुना ये गरबा गीत। इसे लिखा ऋतिका ब्रह्म भट्ट ने और संगीत था शिवांग माथुर का।

ये गजल अभी आपने सुनी उर्दू मॉडर्न इस एल्बम से। अशोक खोसला की आवाज थी और इसे लिखा डॉक्टर राही मासूम रजा ने। जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: कभी तो नजर मिलाओ इस एल्बम का गीत अभी आपने सुना अदनान सामी और आशा भोसले की आवाजों में। रियाज उर रहमान सागर ने इसे लिखा, अदनान सामी का संगीत।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: रंग का रंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में पंडित

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आपने सुना चांद का टुकड़ा, इस फिल्म का ये गीत। इसे संगीतबद्ध किया महेश किशोर ने। साथियों, आपको बता दें कि आज के यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सुनेंगे किशोर कुमार की अलग अलग अदाओं में गायकी के कुछ गीत। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे यानी कि विविध भारती के साथ।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, इस एल्बम का गीत सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाजों में। आवाज में गीत और संगीत ललित सेन का।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं जय बजरंगबली इस एल्बम का ये भजन शबाब सबरी की आवाज। मनीष व्यास ने इसे लिखा है, अभिजीत गढ़वे का संगीत।

इस भजन के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत है ललित का और एल्बम का नाम याद पिया की आने लगी।

जिंदगी की जबान इस एल्बम से अभी आपने सुनी ये गजल, आवाज पद्मश्री पद्मजा फेनानी जोगलेकर की। संदीप गुप्ते ने इसे लिखा और महेश खानोलकर ने इसकी धुन बनाई। इसी के साथ आज के रंग तरंग कार्यक्रम से अब दीजिए नेहा अगरकर देसाई को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
1: इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, ये अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोग

0: लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद से स्टार्टअप के लिए भारत में काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में ट्रैकिंग और पुल ढहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा है कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 433 अंक की वृद्धि के साथ 72,357 पर था, जबकि निफ्टी 22,490 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। स्वीकारें नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।

साथियों, आप समझ ही गए होंगे इस धुन को सुनकर कि आज हम क्या बातचीत करने वाले हैं। साथियों, किशोर कुमार एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दिल में संगीत की लहरें उठने लगती हैं। कभी उनकी आवाज हमें हंसाती है, कभी प्यार के खूबसूरत एहसासों में ले जाती है, तो कभी आंखें नम कर देती है और कभी ऐसा सुकून भी देती है जैसे भागदौड़ की जिंदगी में कुछ पल ठहरने का बहाना मिल गया हो। आज का ये सफर किशोरदा के इन्हीं अलग अलग रंगों के नाम है। तो आइए सुरों के इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं नमक हलाल फिल्म का ये गीत।

अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में मस्ती भरे गीतों के साथ। साथियों, किशोरदा की आवाज में एक ऐसी शरारत थी जो उदास चेहरे पर भी मुस्कान ले आए। उनके गानों में कभी बेफिक्री, कभी नटखटपन, तो कभी ऐसी मस्ती होती थी कि पैर अपने आप थिरकने लगे। तो चलिए जिंदगी की फिक्रों को कुछ देर किनारे रखकर माहौल को थोड़ा मस्ती भरा बनाते हैं और आइए सुनते हैं डॉन फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की, अनजान की रचना और धुन बनाई आनंद जी कल्याण जी ने।
1: और भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

0: छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: कटी पतंग फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, आवाज किशोर कुमार की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: और आइए अब आपको सुनवाते हैं आराधना। इस फिल्म का गीत आवाज किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: रहना।
1: साथियों, प्यार के एहसास को शब्दों में बयां करना आसान नहीं, लेकिन किशोरदा ने अपनी आवाज से इसे बेहद खूबसूरत बना दिया। कभी पहली मोहब्बत की झिझक, कभी किसी का इंतजार, तो कभी दिल की अनकही बातें, उनके रोमांटिक गीत हर एहसास को अपना सा बना देते हैं।

0: की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर कहानी का अंत खुशियों से हो ये जरूरी नहीं। किशोरदा ने अपनी आवाज में बिछड़ने की कसक, अधूरी मोहब्बत और तन्हाई के दर्द को कुछ इस तरह पिरोया कि हर गीत दिल की कहानी लगने लगता है। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ नगमे जो अनगहे जज्बातों को आवाज देते हैं।

अमर प्रेम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आवाज किशोर कुमार की, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं अमानुष फिल्म का गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। इंदिवर की रचना है ये और श्यामल मित्रा ने इसे संगीतबद्ध किया है।

आंधी फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गुलजार ने इसे शब्दबद्ध किया है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कह रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है।

कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर बस आंखें बंद करने और उनमें खो जाने का मन करता है। किशोरदा की आवाज में एक ऐसा अपनापन और ठहराव था जो मन की हलचल को धीमा कर देता है। तो आइए अब सुनते हैं ये ऐसा ही एक गीत जो दिल को सुकून और मन को राहत देता है। घर फिल्म का ये गीत है, आवाज किशोर कुमार की, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

तो साथियों, आज के संगीतमय सफर में हमने किशोर कुमार की आवाज के कई रंग महसूस किए। कहीं मस्ती थी, कहीं मोहब्बत, कहीं दर्द और कहीं दिल को छू लेने वाला सुकून। यही तो खासियत थी किशोरदा की, वे हर एहसास को अपना बना लेते थे और फिर उसे हमारे दिलों तक पहुंचा देते थे। उनकी आवाज आज हमारे बीच भले ही पहले की तरह मौजूद ना हो, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। किशोरदा को सुरों भरा नमन। और आज के इस कार्यक्रम से अब नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार करें नेहा गरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, आज का दिन हिंदी सिनेमा की दो अनमोल शख्सियतों की याद दिलाता है। आज अशोक कुमार जी की जयंती है, जिन्होंने अपने सहज अभिनय से भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। वहीं किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि हमें उनकी आवाज के उस जादू की याद दिलाती है जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इन्हीं यादों के साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो

0: कभी पटरियों पर दौड़ता है तो कभी जिंदगी के रास्तों पर चलता है। साथियों, इबारत आपने फेसबुक पर पढ़ी ली होगी और हमारे सभी श्रोता साथी फेसबुक पर हमसे कमेंट्स द्वारा जुड़ भी गए होंगे। यदि कोई छूट गया है तो आइए उनके लिए एक बार इबारत फिर पढ़ देते हैं। कहते हैं, जिंदगी भी एक रेलगाड़ी के सफर जैसी है, जहां कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ रास्ते में मिलते हैं और कुछ किसी स्टेशन पर उतर जाते हैं। कभी सफर सुहाना होता है तो कभी मुश्किलों की सुरंगें सामने आती हैं, लेकिन जैसे हर सुरंग के बाद रोशनी आती है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद उम्मीद की किरण जरूर आती है। हम अक्सर मंजिल की चिंता में सफर का आनंद लेना भूल जाते हैं। याद रखिए, हर मुसाफिर की मंजिल अलग हो सकती है, लेकिन सफर में मिली यादें हमेशा साथ रहती हैं। इसलिए जिंदगी की इस रेलगाड़ी में मंजिल तक पहुंचने की जल्दी मत कीजिए। सफर को भी मुस्कुराकर जीना सीखिए, क्योंकि खूबसूरत यादें अक्सर रास्तों में ही बनती हैं। और आइए इसी के साथ सुनते हैं ये इस कार्यक्रम का आज का पहला गीत, अशोक कुमार की आवाज में। आशीर्वाद फिल्म से ये गीत है, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत।
1: आओ बच्चों खेल दिखाए, छुक छुक करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए, सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ तुम।

आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर, सब पैसेंजर रेडी, एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धड़क धड़क लोहे की सड़क धड़क धड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान।

मंगल की हार, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मानवा खंडवा खंडवा मानवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, मछलीपट्टनम दिल्लीपट्टनम दिल्लीपट्टनम मछलीपट्टनम, ओंगोल नर्तिगोल नर्तिगोल ओंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक।

तो आप सभी ने इस गीत में आया हुआ वो शब्द तो पहचान ही लिया होगा। जी हाँ, वो शब्द है रेलगाड़ी। अशोक कुमार का गाया ये गीत था। एक साथी ने लिखा है, आज ट्रेन के सफर की बात है तो जिंदगी हमेशा सफर पर ही रहती है। कभी सुरीला सफर बन जाती है, कभी खट्टा तो कभी मीठा।

आज मैं ट्रेन से नहीं गाड़ी से सफर कर रही हूँ, इसलिए आज प्रोग्राम नहीं सुन पाऊंगी। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जिस सफर पर हैं वहां पर हमारा जो विविध भारती है न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप दिन रात लगातार कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, तो आप वहां पर सुन सकती हैं। तो कार्यक्रम को मिस मत कीजिए, इसका आनंद लीजिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, शब्द पहचानिएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि इस गीत का वो शब्द कौन सा है। कालिया फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, राहुल देव बर्मन का संगीत।

अंदाज में पिरोया गया है। इस मासूम और ऊर्जावान गीत को हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने लिखा और वसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी ने लिखा है, किशोरदा आप भी तो जिंदगी के इस सफर के ऐसे मुसाफिर हैं जो अपनी देह से भले ही दूर चले गए मगर अपनी आवाज के रूप में हर दिल में ठहर गए। वक्त की रेलगाड़ी आगे बढ़ती रही, पीढ़ियां बदलती रहीं, कितने ही स्टेशन पीछे छूट गए लेकिन आपके गीतों का कारवा आज भी उसी शिद्दत से हमारे साथ चल रहा है। आपकी आवाज सुनकर लगता है जैसे कोई बिछड़ा हुआ अपना फिर लौट आया हो, जैसे यादों की किसी पुराने स्टेशन पर जिंदगी कुछ पल के लिए ठहर गई हो। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत और पहचानिएगा इस गीत का वो कौन सा शब्द है जो हमारी आज की इबारत में शामिल है। फिल्म का नाम है राम बलराम। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है। बोल है आनंद बख्शी के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना, इससे पहले जो गीत बजा उसमें शब्द था रास्ता। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक साथ ही लिखते हैं, सफर बैलगाड़ी का हो या हवाई जहाज का या जिंदगी का, हिचकोले तो लगते ही हैं लेकिन हमेशा तो नहीं, इसलिए सुहाने सफर का आनंद भी लें तो जीवन के झटके भी हंसते हंसते लें। एक साथ ही लिखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी खूबसूरत सफर पर होते हैं तो ऐसी ऐसी मीठी मधुर और मधुर अनुभूति होती है जिन्हें हम कभी भी भूलना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि सफर कभी खत्म ही ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब सफर पर हमें बहुत अच्छे बातूनी लोग मिल जाते हैं या फिर हम जैसी सोच रखते हैं उस तरह की सोच रखने वाले लोग मिल जाते हैं तो बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर सफर कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, लगता है ये सफर थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला गीत आपको सुनवाते हैं शोले फिल्म से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत, और आपको बताना है इस शब्द में छुपा, क्षमा कीजिए, इस गीत में छुपा वो शब्द।

बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने, शब्द था स्टेशन, जो इस गीत में शामिल था और हमारी इबारत में भी। एक साथी ने लिखा है, यादगार सफर का आनंद लिया जब ट्रेन गुजर रही थी सुरंग से, वो भी सबसे लंबी, करीब 14 किलोमीटर लंबाई से गुजरना हुआ। अगस्त 2026 में जब वंदे भारत ट्रेन में श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से श्रीनगर स्टेशन की ओर वापसी में मेरी धर्मपत्नी और मैंने सफर किया था। बाबा अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के दर्शन लिए, रास्ते में चेनाब नदी के ऊपर सबसे ऊंची ब्रिज से भी ट्रेन गुजर रही थी। कई सुरंगों और ब्रिजेस से ट्रेन गुजर रही थी जिनको देखकर हम भी आनंदित हो रहे थे। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं श्रोताओं जो हमारी जहन में बस जाती हैं, हमें याद हो जाता है पल पल कि कैसे गुजरा था और कितना खूबसूरत था। चलिए इस कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

अंदाज फिल्म का ये गीत था किशोर कुमार की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। साथियों, एक साथी लिख रहे हैं कि रेलगाड़ी का सफर बेहद रोमांचक, आरामदायक और यादगार अनुभव माना जाता है। खिड़की के पास बैठकर बाहर बदलते नजारे, खेत खलिहान, पहाड़, नदियां और छोटे छोटे स्टेशंस को देखना मन को सुकून देता है। जी हाँ, ये तो एक बड़ा ही खूबसूरत एहसास है जिसे जब तक खुद अनुभव ना किया जाए तब तक उसमें कुछ आनंद ही नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात लिखी है आपने। एक साथ ही लिखते हैं, जीवन को समझने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक रेलगाड़ी के सफर से बखूबी समझा जा सकता है। हम सभी इस संसार रूपी स्टेशन पर आते हैं, जीवन की गाड़ी में सवार होते हैं और अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलते हैं। ये यात्रा केवल एक दूरी तय करना नहीं बल्कि अनुभवों का एक विशाल संग्रह है। और आप सभी ने ये भी बिल्कुल सही पहचाना है, इस गीत में शब्द था सुहाना। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई। शब्द रचना शैलेंद्र की, शंकर जयकिशन की धुन।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेंद्र मुलकलवार।

0: सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: तो इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसमें शब्द था रोशनी। साथियों, एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली नेहा जी और सभी गुणी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। किशोर दा हमारे ही शहर खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मुंबई में उनके निधन के बाद उनकी इच्छानुसार उन्हें खंडवा लाया गया था, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। अब ये तो कहना चाहिए कि एक ऐसा अवसर था जो आप उस शहर के थे और इसलिए इसका आप इसमें शामिल हो सकें, और बड़ी मुश्किल से कभी ऐसे अवसर मिलते हैं जहां हम किसी ऐसी महान हस्ती की यात्रा में शामिल हो पाते हैं। और किशोर कुमार जी के भी कुछ जो उनके साक्षात्कार हुए उनकी बातों में हमें कई जगह पता चलता है कि उन्हें अपने शहर खंडवा से बेहद प्रेम था और उनकी हर बात में ये बात झलकती थी कि वे वापस खंडवा आना चाहते थे। आइए अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला कमेंट हमें किया है एक साथी ने, लिखा है, मेरा सबसे लंबा सफर था जब बेटे की बारात लेकर कटक से अल्मोड़ा जाना था। राजधानी एक्सप्रेस से कटक से दिल्ली करीब 24 घंटा, फिर 12 घंटे बस द्वारा दिल्ली से अल्मोड़ा। हम 35 बाराती खूब मौज मस्ती करते गए और वापस उसी रास्ते आए। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी, जिंदगी के इस सफर में मेरे बचपन से आज तक जो विश्वसनीय साथी रहा है वो है विविध भारती मुंबई, जिसके प्रोग्राम्स जो मैं रेडियो पर सुनते हुए अपने जीवन के सफर को सुरीला बनाता रहा हूं और आगे भी जितनी सांसें मिली हैं तब तक बनाता रहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप सुनते रहिए विविध भारती, और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत तलाक फिल्म से। आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजें, प्रदीप ने इसे लिखा है, श्री राम चंद्र का संगीत। शब्द आपको पहचानना है कौन सा है।

आपने शब्द बिल्कुल सही पहचाना है, ये शब्द था किरण। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का सफर एक खूबसूरत नदी की तरह है जो कई मोड़ों और उतार चढ़ावों से होकर गुजरती है। इस रास्ते में कई लोग लहरों की तरह मिलते हैं और कुछ यादें बनकर पीछे छूट जाते हैं। कभी मुश्किलें चट्टान बनकर सामने आती हैं तो कभी खुशियों के झरने सुकून देते हैं। हम अक्सर किनारे यानी कि मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में बहते पानी के आनंद को भूल जाते हैं। मंजिल तो तय है लेकिन असली सुकून हर पल को मुस्कुराकर जीने और इस सफर में यादें बटोरने में है। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है परिचय, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: मुसाफिर शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और एक साथी ने लिखा है, एक बार रेल से सफर के दौरान हमारे कोच में आग लग गई थी। बाहर से लोग चिल्ला रहे थे कि गेट खोलो। मेरे मामा जी जो मुझे लिवाने आए थे बोले सब अंदर आना चाहते हैं, चुपचाप सो जाओ। इतने में मुझे खिड़की के पास आग की लपटें दिखाई दी। मैंने दौड़कर गेट खोल दिया, सब सुरक्षित बच गए। पर आज भी याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, ये बात सुनकर तो हमें भी रोंगटे खड़े हो गए हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ ने उस घटना को टाल दिया कह सकते हैं। तो ये सूझबूझ कभी कभार बहुत जरूरी होती है। एक साथी ने लिखा है, मुझे तो रेलगाड़ी की यात्रा इतनी अच्छी लगती है कि मैं हवाई यात्रा को छोड़कर रेलगाड़ी की यात्रा करना पसंद करती हूँ। मेरे ऑफिस से मुझे बीकानेर से मुंबई तक का हवाई यात्रा का अवसर मिलता है, लेकिन मैं रेलगाड़ी से ही जाती हूँ, तो सब मेरे कलीग्स और मेरे परिवार वाले मेरी हंसी भी उड़ाते हैं कि हवाई यात्रा छोड़कर आप रेलगाड़ी में जाती हैं। रेलगाड़ी से खिड़की से झांक कर एक एक स्टेशन देखना, धरती से धरती तक का मिलन, धरती से आकाश का क्षितिज पर मिलन, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक साथी ने लिखा है, मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन से जब भोपाल की तरफ चलते हैं तो ट्रेन बहुत सारी सुरंगों और हरे भरे जंगलों के बीच से गुजरती है। वो जंगल की छटा बरसात के समय बहुत ही रोमांचक होती है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज, साथ दिया है मोहम्मद रफी ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। पहचानिए शब्द।

याद शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का सफर बहुत खूबसूरत है, इसमें कभी खुशी मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है, कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी मुश्किलें हमारा हौसला परखती हैं, लेकिन यही उतार चढ़ाव जिंदगी को जीने का सही मतलब सिखाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का ये सफर वाकई बहुत ही अजीब है, बंद मुट्ठी आए थे, खुले हाथ जाना है, जो धन मान सम्मान कमाया वो छोड़कर एक दिन चले जाना है, न साथ लाए थे न साथ आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए हमें जीवन में हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए, हमें हमेशा ये लगना चाहिए कि हमें जो मिला है वो काफी है, यानी कि जितना मिला जैसा मिला वो अच्छा है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है।

लिख रहे हैं, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, बस सुरीला सफर का भी थोड़ा सा सफर बाकी है, मगर हम सोच रहे हैं काश सुरीला सफर का सफर और बढ़ जाए। गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो दोस्तों, रेलगाड़ी की तरह जिंदगी का सफर भी चलता रहता है। कुछ यादें और कुछ लोग हमेशा साथ रह जाते हैं। आज किशोर दा और दादा मुनि को याद करते हुए इसी खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। अब दीजिए आज्ञा नेहा अगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मिस्टर नटवरलाल फिल्म का ये गाना। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और साथियों की हैं, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन का संगीत है।
1: अरे हे ऊंची ऊंची बातों से किसी का

मिस्टर नटवरलाल के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरगम का एक गाना। आवाज़ें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को समावेशी तकनीक का उदाहरण बताया। उन्होंने विदेशी मेहमानों से इसे आजमाने की अपील की और कहा कि देश में सड़क किनारे सामान बेचने वाले से लेकर कार शोरूम तक सभी एक ही डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री मोदी ने बताया कि वर्ष 2014 से पहले देश में कुछ सौ स्टार्टअप थे, जबकि अब इनकी संख्या 2.5 लाख से ज्यादा हो गई है। इनमें करीब आधे छोटे शहरों और कस्बों से बिलोंग करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनके अनुभव से उत्तराखंड की प्रगति को फायदा मिलेगा। डॉ. बिसेन सिवनी जिले के रहने वाले हैं और 4 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2003 से 2005 तक प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। वे वर्ष 2019 में बालाघाट से सांसद चुने गए थे और 2024 तक इस पद पर रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 1 सप्ताह के भीतर उच्च स्तरीय संयुक्त कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस कमेटी में केंद्र और राज्य सरकारों, किसान संगठनों, शुगर मिलों के प्रतिनिधियों और वैज्ञानिकों को शामिल किया जाएगा। ये कमेटी गन्ने की कटाई, रिकवरी, वजन और लैब जांच से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा करेगी। इंदौर में ताज विवांता होटल के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इससे इंदौर और मालवा क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और नए निवेश से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ को देखते हुए ये होटल काफी अहम साबित होगा।
1: इंदौर और मालवा को ये बड़ी सौगात मिली। मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जब सिंहस्थ सामने है 2028, ऐसे में इंदौर जैन के पास में होने के कारण से ये अत्यंत महत्व का स्थान भी है और ऐसे में भी व्यापारिक गतिविधि, कारपोरेट जगत की मीटिंग, काफी कई प्रकार के कामों के लिए एक स्टार होटल की जो आवश्यकता होना चाहिए, आज यहाँ ये होटल की सौगात मिली है। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से मालवा मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में बदला है। ऐसे समय में हमारे MR10 के पास की सौगात निश्चित रूप से नया माइलस्टोन होगी।
0: खंडवा में आज अभिनेता रघुवीर यादव को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित 2 दिवसीय समारोह में उन्हें अभिनय के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान दिया जाएगा। यह कार्यक्रम पुलिस ग्राउंड में शाम

7 बजे से शुरू होगा। सम्मान समारोह के बाद गायक सुदेश भोसले और उनके साथी गीत संगीत की प्रस्तुति देंगे। भोपाल में आयोजित एमपी ऑनलाइन आइडिया एंड इनोवेशन हैकाथॉन के समापन समारोह में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि युवाओं को उद्योगपतियों और निवेशकों से जोड़ना चाहिए।

करीब 1,92,000 फॉर्म भी शामिल हैं। पात्र नागरिकों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में अलग अलग जगह शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के जरिए लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं नर्मदापुरम में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए जिले में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की अनदेखी पर L1 अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का नोटिस जारी किया गया है और रोजाना शाम को विभागीय समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। शिवपुरी में फसलों की कटाई के बाद अवशेष यानी नरवाई को जलाने पर कलेक्टर ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। और झाबुआ में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में आदर्श महाविद्यालय की टीम विजेता रही। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन के भारत दौरे पर। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
2: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते 1 दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के, कृपया इसे फिर से सुन ले, भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
0: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैनजोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यह मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलीचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध समावेशी नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में यह बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए एक दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम दिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
3: असम में नॉर्थ इसमें सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई।
2: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से ओडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में

आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। IMF ने 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए ICC महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपने ट्यून किया है अपना सबसे पसंदीदा चैनल मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम हाउस नंबर 44। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है और सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: कैसी बंसिया बजाई श्यामा सुध बिस राई तरे रे तरे रे तरे रे रे रे
2: भूल गया यार
1: तरे रे तरे रे तरे रे रे रे
3: ऊंचे सुर में गाए जा मस्ती में लहराए जा दुनिया।

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा? हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा,

0: दे बाटे के बूट पर। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाद

0: नदी की है जो कि डैम फूल है। हाँ, दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
0: ऊंचे

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म उड़न खटोला से, आवाज लता मंगेशकर की थी। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में नई दिल्ली फिल्म का ये गीत। शैलेंद्र की रचना है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री 420। इस फिल्म का गीत आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश की। शैलेंद्र ने इस गीत को रचा है और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारों।
1: सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं एक झलक। मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म का गीत, गीता दत्त और साथियों की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत ओपी नैयर का।

इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: रही सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है मंजरी जी? खूब गरबा दांडिया खेल कर आ रही हैं ऐसा लग रहा है, मतलब रात को।
2: जी बिल्कुल, जश्न ही ऐसा है कि त्योहार का समय चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, तो ऐसे में तो शुरू हो गई है सब जगह पे डांडिया खेलना, गरबा खेलना।
1: और जुनून सा होता है कि बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा, अरे हमें तो नहीं आता है और हमें तो पैरों में दिक्कत है, तकलीफ है, हम नहीं करेंगे, लेकिन जब वो
2: ये 9 दिन आते हैं
1: सखियों और सखाओं के साथ वो मैदान में उतरती हैं तो बिल्कुल शुरू हो जाते हैं, फिर जुनून छा जाता है, फिर तो समय का भी ख्याल नहीं रहता है। इसका स्वरूप थोड़ा बदल रहा है ना
2: जी,
1: बल्कि जो पहले था गरबा दांडिया का जो स्वरूप डांस का तरीका था, अब उसमें बहुत सारी मिलावट भी हो गई है। तो हमारे श्रोता इस बारे में क्या सोचते हैं, हम चाहते हैं कि वो बताएं अपनी बातें।
2: बिल्कुल, और मुहावरों की दुनिया में अपना उल्लू सीधा करना, इसके बारे में भी हमारे साथियों ने संदेश भेजे हैं और भी बातें करेंगे वो।
1: और मंजरी जी, माँ की अलमारी में बहुत कुछ छिपा होता है ना, हम याद होगा बचपन

0: कि जब माँ बड़ा सा बक्सा खोलकर बैठती थी तो हम सब घेर के बैठ जाते थे, भाई
1: बिल्कुल
0: बहन पूरे परिवार के सदस्य, और देखते थे कि इसमें क्या है। उनके पुराने पुराने कुछ गहने जेवर और कुछ पुरानी चीजें, कुछ छोटा सा पाउच, कुछ पर्स, और उसमें न जाने क्या क्या रहता था, और पुराने कपड़े निकाल के देखना, फिर धूप दिखाना रख के बड़े से चारपाई पर। तो ये सब बड़ी अजीब सी बातें थी और अब जैसे खत्म हो रही है, लेकिन माँ की अलमारी में एक कुछ और भी छुपा होता था।
1: बिल्कुल, उनकी यादें, बहुत सारे एल्बम होते थे, और जो आपने बोला ना पोटली होती थी, दुर्जनिया होती थी, और एक काजल लगाने वाली चांदी की होती थी, लंबी सी डंडी होती
0: चांदी
1: थी,
0: की सुपारी भी
1: हाँ,
0: होती थी,
1: चांदी की सुपारी,
0: पायल, अंगूठी,
1: बिछिया तो कितनी सारी निकलती थी उसमें, मतलब वो
0: लेकिन
1: टूटी फूटी भी, साबुत भी,
0: उन्हीं सबके बीच जो छूटा रहता था उनका सपना,
1: बिल्कुल
0: उनका अधूरा सपना, क्योंकि एक जमाना था जब माँ के हिस्से में सिर्फ त्याग और बलिदान आता था, कि वो त्याग की मूर्ति जो होती थी वो माँ सबसे अच्छी माँ कहलाती थी।
1: सही बात
0: है ना कि कितना कुछ सब पूरे परिवार के लिए करना, लेकिन खुद के लिए
1: आपने
0: कुछ नहीं
1: बिल्कुल
0: करना।
1: यादों को एकदम ताजा कर दिया है कि हम उस दौर में चले गए, उनके अलमारी तक पहुंच गए।
0: तो आपके साथ साथ, मतलब हम सब के साथ साथ, हमारे श्रोता भी यादों की अलमारी खोले और माँ के जो अधूरे सपने, माँ की अलमारी में छिपे उनके अधूरे सपने, इस बारे में हमारे श्रोता टिप्पणी करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
1: और सखी विशेष में हम बात करने वाले महिला उद्यमी अंकिता गावा के बारे में, जो सोशल समोसा और फिबी की संस्थापक भी हैं। और आज क्योंकि शरदीय नवरात्र का पर्व है तो हमारे सभी साथियों ने बधाइयां भी भेजी हैं, और आज माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, लोग हवन करते हैं, अच्छे श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, देवी की आराधना करते हैं और भक्ति में डूब जाते हैं।
0: सुनते हैं ये गीत।

0: कि ये चित्रगुप्त के स्वर में था। हम संगीतकार के रूप में चित्रगुप्त को जानते हैं, बहुत कम श्रोता जानते हैं कि उन्होंने गाया भी है, तो ये उन्हीं के स्वर में था। रमेश सी पांडे का गीत था और एस एन त्रिपाठी का संगीत था।
1: क्या बात है। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष में महिला उद्यमी अंकिता गाबा के बारे में, और जिसके आज के समय में महिलाएं न केवल स्टार्टअप की शुरुआत कर रही हैं बल्कि कंपनी भी संभाल रही, ममता जी, और बल्कि हजारों लाखों लोगों को नौकरियां देकर उनका नेतृत्व भी कर रही हैं। और आज एक ऐसी महिला की सफलता और मेहनत की कहानी लेकर हम आए हैं, और जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि इससे ज्यादा स्टार्टअप्स की नींव रखी और उन्हें सफल भी बनाया। अंकिता गाबा जो एक इंटरनेट उद्यमी और सफल बिजनेस वुमेन है।
0: ये एक ऐसा नाम है मंजरी जी जिन्हें इंटरनेट उद्यमी का खिताब भी मिल चुका है। उन्होंने सोशल समोसा
1: और सुपर माउस,
0: हाँ, फीवी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की नींव रखी। और 4 अप्रैल 1985 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी अंकिता गाबा बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल आया करती थी। वे अपने जीवन में कुछ अलग और नया करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने विल्सन कॉलेज मुंबई से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया और बाद में उन्होंने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA की डिग्री भी हासिल की।
1: बिल्कुल। और पढ़ाई के दौरान ही साल 2007 में अंकिता गाबा ने भारतीय सोशल मीडिया एजेंसी सुपर माउस की नींव रखी, जिसके बाद साल 2010 तक इसके CEO के तौर पर काम किया। इसके साथ ही अंकिता ने साल 2008 में इंडस्ट्री में भी करियर की शुरुआत की और उन्होंने टी सीरीज के साथ ही कई प्रसिद्ध हस्तियों के लिए PR मैनेजमेंट का काम भी किया इन्होंने।
0: और 2011 में उन्होंने अन्य संस्थापकों के साथ मिलकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल समोसा की नींव रखी। इस पोर्टल पर सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं और ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया विज्ञापन मार्केटिंग अभियानों और केस स्टडीज से जुड़े आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं।
1: और साल 2015 में इस पोर्टल को प्राइवेट इन्वेस्टर नाम की कंपनी को बेच दिया गया था। इस समय तक ये कंपनी 3 से 4 करोड़ की लगभग बन चुकी थी और इसके बाद साल 2015 में गेट एवेंजलाइज की को फाउंडर बनी और एक साल बाद उन्होंने 2016 में आइजेनेरियो में पार्टनर एंड बिजनेस हेड के रूप में भी काम की शुरुआत की। यहां लगभग 2 साल तक काम करने के बाद ओरो वेल्थ में मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट बनी और उसके बाद मनी फ्रंट की मार्केटिंग हेड और महिला बनी। वेबसाइट की कंटेंट एंड कम्युनिटी हेड के रूप में भी आपने काम किया।
0: और 2023 में अंकिता गाबा ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर फीवी की स्थापना की। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से जुड़ी खबरें दी जाती हैं। इस पोर्टल को पूरी तरह से सोशल मीडिया से जो प्रभावित होते हैं उन्हें समर्पित किया गया है।
1: जी। और आज अंकिता गाबा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ कर दम पर एक नहीं बल्कि कई स्टार्टअप की शुरुआत करके उन्होंने उसे सफल बनाया। और अंकिता गाबा के पुरस्कार उपलब्धियों की बात करें तो सोशल समोसा वेबसाइट को वेब समिट 2013 के टॉप 10 स्टार्टअप में जगह मिल चुकी है और एक्सचेंज 4 मीडिया द्वारा IDMA 2013 के लिए सोशल समोसा को टॉप 5 डिजिटल स्टार्टअप में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही 2013 में उन्हें सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है
0: और वैश्विक शीर्ष 100 सोशल मीडिया एजेंसियां और सलाहकार के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। और अंकिता गाबा सोशल मीडिया के क्षेत्र में अपने एक्सपीरियंस और नए नए आइडियाज साझा करती हैं और केवल स्टार्टअप्स की ही शुरुआत नहीं की बल्कि कई लोगों को वो नौकरी भी दे चुकी हैं इसके माध्यम से। उनकी सफलता ये सीख देती है कि एक छोटा सा इनोवेटिव आइडिया के दम पर कैसे बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आज अंकिता गाबा कई महिलाओं को प्रेरणा दे रही हैं। और अब सुनवाते हैं एक गाना।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और ये संदेश हमने सुनवाए अपने श्रोता।

0: श्रोताओं को। और हमने अपने श्रोताओं से कहा था कि गरबा और दाढ़िया का स्वरूप बदल रहा, तो उसमें अपने उद्गार लिखे। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गरबा दाढ़िया के बदलते रूप में इतना ही कहना है कि घर मोहल्ले के चौराहे से पारंपरिक भक्ति अनुष्ठान से निकलकर अब कमर्शियल ग्लोबल रूप ले चुका है, जिसमें भक्ति भाव कम है और टिकट ज्यादा होता है।
1: बिल्कुल सही बात लिखी है, क्योंकि जब हम जाते हैं देखने तो वहां पर बहुत ज्यादा पैसे उसके टिकट के बढ़ा दिए गए, और साथ साथ वेशभूषाओं पर भी बहुत सारा खर्चा होता है। देखा जाए बाजार में भरे पड़े हैं सामान और लोग खरीद भी रहे हैं, ऐसा नहीं, तो खर्चा भी बहुत तेजी से होता है।
0: दोस्ती भी यहाँ पर बहुत परवान चढ़ती है, खासतौर से उसमें कई बार गलत रिश्ते भी पनप जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लड़के लड़कियों के बीच, कम उम्र के लड़के कम उम्र की लड़कियों को, जहाँ पर बहुत गलत सही का फर्क नहीं पता होता है, उनके बीच एक रिश्ता एक नाता तय होता है, तो वो रात भर गरबा के बहाने निकल के बाहर जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, वो भी ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल, उससे वो गलत ही प्रभाव पड़ता है, बाद में पता चलता है कि दोस्ती हुई और बाद में दोस्ती में दरारें आ रही, तो ये सब चीजें बहुत हो रही हैं। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि पहले के जमाने में गरबा गांव के मैदान में एक ही जगह सब मिलकर करते थे, अब तो हर जगह होने लगा है। पहले कम आवाज होता था, अब बड़े बड़े स्पीकर आ गए और शांति सुकून तो गायब ही हो गए। पहले चनिया चोली और केडियो ड्रेस थे, अब वो ड्रेस तो है पर साथ में अंग प्रदर्शन भी होने लगा है। कुल मिला के पहले जो भक्ति भाव था वो अब मतलब कहना चाहिए अच्छा नहीं लगता है, ऐसी चीजें पहनने में दिखावे में हो गई हैं। और मेरी बात करूं तो पहले मैं भी गरबा करने जाता था, पर अब सिर्फ देखता हूं, गरबा करने का मन नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि आज के फैशन के दौर में इतनी चीजें निकल आई हैं, डिजाइनर चीजें आ गई हैं, कपड़े आ गए, तो लड़कियां उसकी तरफ भागी जा रही हैं।
0: पूरा बाजार भरा होता है।
1: बिल्कुल,
0: इस समय बाजार में जाए तो वही लहंगा चानिया चोली और घाघरा मिलता है, और जैसे होड़ सी मची हुई है कि हम उससे ज्यादा अच्छा पहन लें।
1: बिल्कुल,
0: और रंगों के हिसाब से जो कपड़े पहने जाते हैं उसमें लोगों को और दिक्कतें आती है कि वो एक दिन पहना गया और फिर अगले गरबा में ही काम आता है, तब तक पता चला कि आप शहर छोड़ चुके होते हैं, आपका करियर बन चुका है, वगैरह वगैरह।
1: और बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी भी मिल रही है जो सिल्वर कोटेड होती है, नकली ज्वेलरी जो है, लेकिन उसको पहनने से कई बार इन्फेक्शन का भी वो हो जाता है, लेकिन फैशन है, पहनना है तो सब पहनते।
0: इसका जो उद्देश्य है मौज मस्ती और एक दूसरे से मेल मुलाकात, एक दूसरे से स्नेह प्रेम का रिश्ता वो बना रहे, बस ये उद्देश्य होना चाहिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि होली और दिवाली के अलावा जो पर्व सिनेमाई संगीत में सबसे अव्वल नंबर पर है वो है गरबा। हालांकि मैंने आज तक गरबा नहीं खेला, मगर अपने आसपास के माहौल को देखती हूं तो लगता है कि गरबा के साथ जिंदगी की रंगत कुछ और ही हो गई है। गरबा बस गीतों के सहारे धूमधड़ाका ही रह गया है। जीवन में आने वाले खुशी के छोटे छोटे पल को उत्सव में बदल देने की यह परंपरा बहुत पुरानी है। यह हमें ऐसी दुनिया में खो जाने का मौका देता है जहां खुशियां होती हैं और अपनों के साथ। गरबा नृत्य में हावी होता रिमिक्स कल्चर जीवन शैली में बदलाव की वजह से महज शोर और दिखावा ज्यादा है। अब तो उसमें बाकायदा भांगड़ा पॉप सब कुछ
1: सब चीज मिक्स हो गया है। बिल्कुल,
0: और बहुत तेज संगीत, अब तो जो प्रतिबंध है कि आपको रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद कर देना है, लोग उसका भी उल्लंघन करते हैं, तो नियमों का उल्लंघन कम से कम ना करें।
1: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, गरबा और डांडिया का ये बदलता स्वरूप ये साबित करता है कि हमारी संस्कृति आधुनिक समय के साथ खुद को ढालने में सक्षम है। हालांकि आधुनिकता की चकाचौंध में हमें अपनी मूल परंपराओं और जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, ताकि इस पवित्र उत्सव की असल आत्मा हमेशा जीवित रहे। बिल्कुल सही बात लिखी है, हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हम सुनते हैं एक गीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। मंजरी जी कहाँ गुम हो गई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर ढूंढ रही टिप्पणियां। एक अच्छी खबर सुनिए,
1: बिल्कुल बताइए।
0: वो ये कि एक महिला को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है। वो महिला है नवनीतम नवी पिल्ले। ये भारतीय मूल की दक्षिणी अफ्रीकी जज और यूएन मानवाधिकार की प्रमुख रही हैं। इन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। मतलब मिला क्या, चुना गया है अभी, और वो तो बाकायदा घोषित हुआ है और जब ये सम्मानित किया जाएगा आगे चलकर
1: जी। और उन्होंने युद्ध अपराध और नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाने के लिए आवाज उठाई, प्रयास किया। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने की ओर प्रयास किया। इसके लिए आप सम्मानित की गई।
0: और इसके इनके बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी दे दें। 1890 के दशक में नवी के ग्रैंड पेरेंट्स बंधुआ मजदूर के रूप में गन्ने के खेतों में काम किया करते थे। मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की थी। दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1941 को डरबन में इनका जन्म हुआ। और पिता बस चलाते थे, यानी बस के ड्राइवर थे। उनका बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा
1: जी। और वे दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला जज बनी। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से डॉक्टर ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस की डिग्री प्राप्त करी। वे रवांडा के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ICTR की अध्यक्ष रही। इसके बाद वे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की जज भी रही।
0: और इन्होंने 2008 से 2014 तक UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के रूप में कार्य किया। और इनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें हम विविध भारती परिवार की ओर से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। अब क्या इरादा है,
1: गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: बोलने की ढूंढने की कोशिश की आपने?
1: बिल्कुल बहुत की, क्योंकि अक्सर
0: जब सिर्फ वो अंगूठी और रिसीवर लेके पहनने की कोशिश की।
1: नहीं नहीं नहीं, मेरा तो जब वो खोल के, माँ जब बक्सा खोल के बैठती थी तो बस उनकी जो शादी का जो लहंगे की ओढ़नी थी तो वो बस हम बच्चे निकाल लिया करते थे, तो उसको मैं साड़ी की तरह लपेट के घूंघट काट के डोलती थी कमरे में।
0: माँ की साड़ी पहनने का भी एक अलग सुख।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कद छोटे होने के कारण माँ की साड़ी आती नहीं थी तो उसको दोहरा करके
1: साड़ी पहनते
0: थे। साड़ी पहननी नहीं आती थी तो लपेट के आईने के सामने देखना और अलग अलग रूप रंग में जैसे जैसे माँ तैयार होती थी,
1: और माँ की माथे की बिंदी निकाल के अपनी लगा लेना, ये भी बड़ा शौक होता था।
0: तो लेकिन उनके सपनों के बारे में, तब जब हम छोटे थे तो माँ के सपनों के बारे में सोचने के लिए हम वहाँ पहुँच भी नहीं सकते थे, उनके भीतर उनके मन में क्या चल रहा होता है वो सब के बारे में, पूरे परिवार के बारे में सोचती थी, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता। ये हर घर की कहानी है,
1: ये अब जाके हम लोग सोच पाते कि उस समय उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी थी अपने चीजों को बताने समेटने के लिए।
0: बिल्कुल, और वहां माँ की अलमारी खुलती है, वहां जो उनकी जिंदगी की बहुत सारी यादें, उनके बहुत सारे अधूरे किस्से छिपे होते थे, वहां कपड़े और पुरानी साड़ियों की तह में उनकी खुशबू बसी होती थी और उनकी जिंदगी के बहुत सारे अधूरे किस्से भी छिपे होते थे जो गाहे बगाहे वो बताया भी करती थी अपने बचपन की यादें कि क्या हुआ था उनके बचपन में, उनके लिए कोई स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने खुद पढ़ाई की, ऐसी तमाम बातें माँ के, हम सबके माँ के, और लगभग सबकी माएं एक जैसी होती थी
1: क्योंकि वो सारी यादें जुड़ जाती हैं। और उन समय उनकी गोटे वाली साड़ी जब हम लोग देखते थे तो माँ, मतलब माँ का यही होता था कि भाई ये शादी में बनवाई थी, पापा से लड़ाई लड़ करके कितना खर्चा किया था इस पर पापा बोले थे, और अक्सर माँ ये किस्सा बताया करती थी। और अच्छे कपड़ों की वो अलमारी अलग से रखती थी जिससे वो खास मौके पर पहनने का सपना देखा करती थी, तो इस तरह की यादें होती हैं कि, और किसी भी पुराने डिब्बे में बचा रखी हुई चिट्ठियां, तस्वीरें या छोटी छोटी चीजें वो माँ उसको दिखाकर अपनी चीजें बताया करती थी कि उन्हें क्या अच्छा लगता है।
0: अब देखिए ना, हमारे श्रोता भी इन यादों में बिल्कुल खो गए हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद कि माँ अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुनती थी और बुनकर वो अक्सर उपहार में दे देती थी। अंतिम समय में उनकी सलाइयों पर वर्धमान की पिंक कलर की ऊन का एक स्वेटर था, उसे अधूरे स्वेटर को मैंने करीब 10 साल तक संभाल के रखा। अंततः मेरा मन हुआ कि मैं इसको पूरा करूं और मैंने उस ऊन का इस्तेमाल करके खूब सुंदर सी जैकेट बनाई। और तो हमें एक बात याद है कि जब स्वेटर की बात की है तो ऊन का गोला बनाने के लिए बैठा करती थी माँ और घर की जो अन्य सदस्य होते थे सबको, और हमें, हम सबको ऊन का गोला बनाने के लिए थमा दिया जाता था कि आप भी बनाओ, और वो ऊन पूरा उसका एक गुम्फा बन जाता था, संभलता नहीं था
1: और कई बार तो फिसल जाए अगर गोला बना भी रहे तो छोटे छोटे हाथों से फिसल गया तो दूर तक चला गया
0: वो धागा, फिर धागे के पीछे पीछे भागता रहा,
1: फिर माँ ने बड़ा उलझा भी देते थे, गांठ पड़ गई, फिर माँ कह रही तुम रहने दो, तो लेकिन
0: और बड़ा मजा आता था। खास तरह की कलाकारी भी होती थी उसमें, तरह तरह की, जैसे एक सुपारी का आकार या फिर संतरे का आकार,
1: नहीं उसको अंगूठे और छंगुनिया में ऐसे करके तिकल्ला नहीं होता है जैसे, उस तरह से वो लपेटा जाता था तो वो भी छोटे छोटे हाथों में कितना लपटेगा तो वो भी बड़ा मजेदार है।
0: श्रोता देख नहीं सकते नहीं तो हम ये जो अभी आपने
1: एक्शन किया
0: ये दिखा सकते थे, मंजू जी बाकायदा वो हाथ ऐसे हिला के दिखा रहे हैं।
1: हमारे श्रोता बहुत समझदार है, वो सब जान गए कि तिकल्ला बोला है तो वो समझ गए होंगे। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी में सिर्फ साड़ियां ही नहीं, उसके उनके अधूरे सपने भी तह करके रखे होते थे जो उन्होंने शायद विवाह के पहले खुद के लिए संजोए हों। एक तह में वो लाल जोड़ा जो उन्होंने अपनी विवाह के बाद कभी खुलकर पहना ही नहीं, दूसरी तह में वो किताब जिसे वो पढ़ना चाहती थी पर चूल्हे चौकी की जिम्मेदारियों में वक्त नहीं मिला, और सबसे नीचे दबी वो डिबिया जिसमें मेले से लाई बिंदिया आज भी वैसी की वैसी पड़ी है। उनके अपने सारे रंग हमारे भविष्य को संवारने में घोल दिए और खुद एक फीकी सी साड़ी में सिमट गई। अलमारी खोलो तो आज भी उसमें से ममता के साथ साथ एक अनकही उदासी की महक आती है कि काश किसी दिन हमने पूछा तो होता माँ तुम्हारा सपना क्या था। बहुत ही, मतलब दिल भर आया ऐसी बातों को सुन करके।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पुराने जमाने की माँ के लिए अलमारी यानी सिर्फ कपड़ों की या गहनों की राशि, वो तो है उनके त्याग की निशानी और अधूरे सपनों की कहानी, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। सामाजिक वैचारिक अनास्था के कारण खुद की इच्छाएं दबाकर कुटुंब के लिए वो त्याग की मूरत बन जाती थी, परंतु उन्हीं के ममता भरी सजग छाया में पली आज की आधुनिक

0: माताएं ऐसी नहीं हैं। बड़ी समझदारी से परिवार और बच्चों को संजोते हुए वे खुद के सपने और कर्तव्य पूरी करती नजर आ रही हैं। दरअसल इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अगर हम उन परंपराओं से आगे नहीं बढ़ेंगे तो वे पीछे रह जाएंगे। आपको अगर आगे बढ़ना है और लड़कियों को खासतौर से आगे बढ़ाना है, उन्हें भी समानता से उनके हक के बारे में सोचना है, तो फिर उन परंपराओं से तो आगे निकलना होगा।
1: बिल्कुल।
0: अब कहने का ये मतलब नहीं है कि माँ की जो अच्छाइयां थी उसको आप हटा के दूर रख दीजिए।
1: जी, उनको तो रखना ही अपने पास। और हमारे साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी सिर्फ कपड़ों या कागजों का बक्सा नहीं होती थी, वो उनसे उन अनकहे अधूरी इच्छाओं का संग्रहालय होती थी जिन्हें उसने परिवार की खुशियों के पीछे कहीं छुपा दिया होता है। उसके ये अधूरे सपने किसी मलाल की तरह नहीं होती बल्कि उस त्याग की मिसाल होते हैं जो उसने हंसते हंसते खुद पर ओढ़ लिया। उसने अपनी दुनिया को अपने बच्चों और परिवार की खुशियों के इर्द गिर्द बुन लिया और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को उन परतों में हमेशा के लिए छुपा दिया। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उनकी और घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच ना जाने कितनी बार अपने सपनों को वो चुपचाप तह करके रख दिया करती हैं और बच्चों की खुशी, पति की जरूरतें और घर की जिम्मेदारियां उनके अपने अरमानों से आगे निकलती रहती और उनकी अलमारी की हर तह जैसे कहती कि मैंने भी कभी अपने लिए कुछ सोचा था। और कभी अगर ममता जी उस अलमारी को ध्यान से खोलिएगा तो देखें माँ के कितने सपने उसमें मिल जाएंगे और जिसमें उनके कोई कभी शब्द नहीं उन्होंने दिए, और अगर मिल जाए तो उसे पूरा करने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए क्योंकि माँ के सपनों को उम्र नहीं बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए होता है। और कई बार होता है कि जब उनकी अलमारी देखो तो उसमें बहुत सारे रुमाल दिख जाते हैं तह रख के, उनकी कढ़ाई के धागे दिख जाएंगे, सुई का डब्बा दिख जाएगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें माँ की उस अलमारी में दिख जाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और उनके उसके साथ साथ कुछ कागजों के बीच रसीद भी मिल जाती है, जो चीज़ें उन्होंने उस समय खरीदी होंगी वो भी दबी पड़ी हैं, कुछ पन्ने फट गए उनके रसीदों के, लेकिन फिर भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और इसके साथ साथ अपने बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े, झबले, टोपी, मोजा, ये सब भी उनकी अलमारी में खूब दिख जाता है। और जब क्या कहते हैं कि उनकी तस्वीर का जो एक पोटली होती है या एल्बम होता है उसमें भी ना जाने कितने समय के लोगों के परिवार के सदस्यों की फोटोग्राफ्स मिलती हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कितना संभाल के उन्होंने उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को रखा हुआ है।
0: और वो प्रिंट करने का जमाना भी था कि प्रिंट करवा के सहेज के रखा भी जाता था, कहीं एल्बम में लगाया जाता था या लिफाफे में करके। अब एक गाना सुन लेते हैं और बातें करते हैं।

0: भाई, माँ की अलमारी में जो छुपे उनके अधूरे सपने थे, इसी तरह चांद सितारों के माध्यम से, सूरज के माध्यम से, कुदरत के माध्यम से पूरे होते थे। वो अपने सपनों को इन्हीं तरीके से, कभी चांद की कहानी, कभी कोई कहानी सुनाकर अपने सपने पूरे कर लेते थे। तो सपन कहानियों के माध्यम से उनके सपने मुकम्मल हो जाते थे।
1: और ममता जी, कई घरों में उनके पास अलमारियां होती थी, माँ की दीवार वाली अलमारी होती थी, कई बार वैसी लकड़ी की पुरानी जो नक्काशीदार अलमारियां होती थी, और कई बार उनके बक्से या कोठरी में बहुत सारी चीजें होती थी, इस तरह से भी रखती थी वो।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि माँ की अलमारी में पुरानी फोटो, डायरी, कॉपी और बहुत सारी यादगार चीजें रखी हुई थी। उन कॉपियों में उन्हें कुकिंग टिप्स, फिल्मों के मनपसंद गाने लिखे हुए होते थे। और एक हमारी सखी, इन्होंने लिखा है कि बहुत सुंदर बातचीत चल रही है, वो जो अंगूठे और उंगली में लपेटने की बात कर रही है मंजरी जी, ऐसे लपेटा हमने लोगों को, हम लोगों के भाई पतंग उड़ाने के समय जब मांझा लपेटा करते थे। भाई ये तो हमने भी ये काम किया है,
1: मांझा लपेटना भी तिकल्ला जैसा बनाते थे,
0: पतंग उड़ा रहे हैं और मांझा पकड़ो आप, संभालो, और उंगली कट जाती थी।
1: जैसे वो जब पूरा लपेट के निकलता था ना ममता जी, तो उसका शेप जो गुल्ली डंडा खेलते थे ना, वो जो गुल्ली होती थी वैसा बन जाता था। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मेरे माता जी ने एक बार अलमारी में एक पोटली निकाली थी, हम तीनों भाई बहन उसको बड़े अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा। उस पोटली में पुराने सिक्के थे और हमारे जन्म से पहले के, और बहुत रेयर अलभ्य थे कुछ सिक्के और कुछ तांबे के, कोई हॉल वाले तो कोई पुराने गोल, मतलब एक गोल छेद वाला सिक्का, और पुराने गोल नहीं होते थे, और राजा महाराजा के मुख्य उसमें छापे बने हुए थे। वे सिक्के उनके नहीं, हमारे सपने पूरा करने के लिए रखे होंगे, मतलब वो सिक्के।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी सेंट बनाया करते थे, मेरी मम्मी की बड़ी बड़ी लोहे के संदूक में से आज भी उनकी खाली छोटी छोटी शीशियों से उनकी खुशबू

0: संदूक में से आती है जब भी वो संदूक खोले जाते हैं, जबकि वो सेंट नाना जी ने आज से कम 70-75 सालों पहले बनाए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे माता जी ने एक बार अलमारी में से कोई एक पोटली निकाली थी। हम तीनों भाई बहन इसे अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा। उस पोटली में पुराने सिक्के थे, और जो आपने बताया कि सिक्के, तो इस तरह की बातें। और एक श्रोता ने लिखा है कि उन दिनों की माँ की अलमारी कहाँ हुआ करती थी भाई, हमने तो माँ की काठ की पेटी या फिर बक्सा देखा था जिसे वही छू सकता था जो बच्चा उनके समीप रहते हुए उनका प्रिय होता था, और मैं उन बच्चों में नहीं आ पाया था। और बिल्कुल ताला बंद होता था उस बक्से में, और चाबी कहीं छुपा के रखी।
1: इसीलिए तो मैंने बोला ना कि सब चीजें सब क्या नहीं होती थी।
0: हाँ, एक श्रोता लिख रहे हैं कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद है, माँ के अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुना करती थी, और हम स्वेटर की बातें कर चुके हैं।
1: बिल्कुल, और जब स्वेटर बिनती थी तो हमने देखा ही था कि किस तरह से वो बिना करते थे। और माँ की बहुत सारी चीजें भी होती थी घर गृहस्थी की, जिन्हें हम सोच सकते हैं कि वो भी कभी कभी उसमें चीजें दिख जाती थी उनके बक्से में रखी हुई संभाल करके।
0: अब हम मुहावरों की बातें कर लेते हैं मंजरी जी, तो बताइए आपको कितने मुहावरे याद हैं? आज जो मुहावरा हमने दिया है वो याद है कि नहीं?
1: हाँ अपना उल्लू सीधा करना। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे को इस बात से बताना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ स्थलों में, अन्य पूजा स्थलों में, जहाँ श्रद्धालुओं में भक्ति भावना होनी चाहिए, अत्यंत भीड़ भाड़ में भी कुछ लोग बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी धक्का देते हुए पहले दर्शन करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, जो कि भक्ति भावना के विपरीत है। और इस तरह की बातें हमारे बहुत साथियों ने लिख करके भेजी हैं।
0: तो हम अच्छा मंजरी जी, आप तो मुहावरों की बातें बता रही हैं और शुरुआत तो हम कर चुके हैं, लेकिन अभी ये माँ की अलमारी की बात तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, उसमें से कपड़े सपने निकलते ही आ रहे हैं। अब हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है, अभी कमेंट लिखा है, हमें लगता है कि इस विषय पर बातें करना हमारी सखियों को बहुत मन भाया है। लिखा है कि अलमारी में उनकी साड़ियां इतने करीने से मलमल के कपड़े में लपेटी हुई रखी रहती हैं, जैसे कितनी अनमोल धरोहर है उनकी। साड़ियों में तो उनको बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है। एक किनारे में उनकी छोटी सी पैकेट बना रहता है, छोटा सा पैकेट बना रहता है, जिसमें उनकी पुरानी तस्वीर, पुराने एल्बम और न जाने क्या क्या सहेजा हुआ रखा रहता है। काफी सारी डायरी जो उनको लिखने का शौक है, कुछ कुछ लिखती रहती हैं, वो भी उनकी अलमारी में सजी रहती है। पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, सब कुछ एक पेंसिल बॉक्स में करके रखा हुआ है। कभी उनको पेंसिल चाहिए तो वो भी वर्क पहली भरने के लिए, और कभी गलत हुआ तो रबर भी चाहिए, शार्पनर भी चाहिए, वो सब संभाल के अपने पास रखती हैं। क्या बात है भाई, हमें लगता है कि जो माँ की अलमारी की यादें हैं वो अंतहीन हैं। अब एक हमारी सखी ने लिखा है कि मम्मी की अलमारी और यादें शब्द नहीं है बयां करने के लिए, अब तो हमारे पास भी जैसे शब्द खत्म होने को हैं। और डायरी और कॉपी, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि उनके अलमारी में, उनके बक्से में एक डायरी होती थी, और कुछ डायरी में ये भी लिखा होता था कि किसको कितना दिया गया,
1: खर्चे का हिसाब,
0: खर्च का हिसाब, और तोहफे के रूप में, जैसे शादी विवाह में शगुन के तौर पर देते हैं, तो फलाने को इतना रुपया दिया गया और उनको इतना रुपया दिया जाना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में किसी मेले में जाती थी तो वो भी डायरी में दिखता था कि यहाँ पे ये पानी की बताशे, दही बड़ा, चटनी, आलू की टिक्की खाई और इतने पैसे ले गए थे, इतने पैसे बचे, मतलब ये सब चीजें छोटी छोटी भी वो लिख के रखती थी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम उनकी यादों को साझा करते हैं, ताजा करते हैं।
0: अक्सर मुहावरों और लोकोक्तियों में बात करती थी।
1: बिल्कुल, जैसे कुछ काम करने का मन नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं तो बस कुछ ना कुछ अपना बोल दिया उन्होंने, अपनी मुहावरे कहा थे।
0: तो आज का विषय भी मुहावरा है जी। तो मुहावरे में हमने रखा है कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपने आप अपना काम निकाल के आगे बढ़ जाए। और हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये पुराना और प्रसिद्ध मुहावरा है, इसका अर्थ है अपना काम सिद्ध कर लेना। और ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जिंदगी में जो अपना काम सीधा करके आगे निकल जाते हैं।
1: बिल्कुल, और एक लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया अपना उल्लू सीधा करना, भाई इस नेक कार्य में तो प्रायः सभी लोग लगे हुए हैं, ऐसा करते रहना कोई बुरी बात नहीं, बशर्ते उससे किसी का दिल ना दुखे, लिखते हैं हमारे साथी। और एक लिखते हैं कि इस मुहावरे को इस बात से बताना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ, अच्छा ये चीज तो मैंने पढ़ी है कि दर्शन करने जाते हैं ये वाली बात, और एक लिखते हैं कि उल्लू सीधा करने वाले मुहावरे पर

0: ये गीत फिट बैठता है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अपना काम निकल गया, फायदा हो गया, फिर कौन तू कौन मैं, सावधान ऐसे लोगों से जो दूसरों को उल्लू बनाते हैं। कई बार हो भी जाता है तो बड़ा मन दुखता है कि कैसी लोगों की प्रवृत्ति होती जा रही है, जो सिर्फ मतलब के लिए ही साथ में खड़े होते हैं, उनका मतलब निकल गया तो आपको पूछेंगे भी नहीं, पलट कर आपको देखेंगे भी नहीं। मुसीबत के समय तो आप ये उम्मीद ही मत करिए कि वो आपका साथ देंगे। तो अगर आप एक बार धोखा खा जाएं तो हमेशा के लिए उसको अपना बना लें। किस तरह
1: पर ऐसा करना नहीं चाहिए कि अपना मतलब सिद्ध करके आगे बढ़ के और सामने वाले की मदद ना करें। और मंजरी जी, आज आपदा जोखिम नवीनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आज के दिन को याद किया जाता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक करना, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा और भूस्खलन जैसी आपदाएं बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन आपदाओं को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन सावधानी और तैयारी से नुकसान कम किया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसकी सतर्कता की ओर ध्यान दिलाना इसका उद्देश्य है।
0: बिल्कुल, और हमें घर, स्कूल और कार्यालयों में सुरक्षा के उपायों को जानकारी देनी चाहिए, रखनी भी चाहिए। और आपातकालीन जो नंबर होते हैं उनको लिखकर जरूर आप रखें, कभी भी यह मुसीबत पड़े तो आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। सरकार और आम लोगों को मिलकर आपदा से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। जागरूकता और सही तैयारी से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस दिवस का संदेश है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और आपदा के लिए पहले से तैयार रहें।
1: और अब सुनते हैं ये गाना।

0: अभिमान फिल्म का ये गाना था और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोली बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। यह है दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत, जिसका नाम है, उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा, अब बात करते हैं उस सीरीज की जहाँ से आपको नाम मिला विकास का, इस किरदार का। तो ये पंचायत के साथ जुड़ना कैसे हुआ, क्योंकि शायद दिलचस्प बात ये है कि आप बहुत ज्यादा सीरियसली इसका ऑडिशन नहीं दिया था या यूं ही हो गया, कुछ तो मजेदार किस्सा है इसके साथ जुड़ा हुआ। पंचायत के साथ कैसे जुड़े आप?
2: देखिए, जब मुंबई में ऑडिशन का सिलसिला शुरू हुआ मेरा, तो जैसा मैंने कहा कि रोज सुबह, कई बार तो बहुत लंबे टाइम तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि मैं मुंबई आ गया हूं। सोया हुआ हूं, नींद खुली, मैंने कहा अरे मैं मुंबई में हूं, यकीन ही नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि बचपन से मुझे मुंबई जाना था, बचपन से ही सपना देखा था मैंने। इस कदर दीवानगी थी मुंबई आने का कि अगर मैं किसी ट्रेन में देख लूं कि पटना टू बांद्रा, मुझे लगता था कि जाकर के उस बॉगी को एक बार प्रणाम कर लें,
1: अच्छा
2: उसको छू लें, क्योंकि ये मुंबई जा रहा है। और जब मैं मुंबई आ गया तो रात में कभी चौंक के उठ जाता था कि सच में मैं मुंबई आ गया, मैं मुंबई में हूं अभी, ये यकीन नहीं होता था मुझे। और जब मुझे ये लगता कि जब तुम मुंबई आ गए हो तो तुम सोए हुए क्यों हो भाई, उठो ना, जाओ ना ऑडिशन देने के लिए, करो ना वो काम जो तुम चाहते हो। तो बहुत ही सुबह उठ के थोड़ा गले के लिए कुछ रियाज कर लेता था, चूंकि थिएटर बैकग्राउंड से आया था मैं,
1: बिल्कुल,
2: और वही चावल दाल, कभी चना मूंग खा के, या सत्तू, सत्तू मेरा बहुत ही गो टू फूड है, अभी भी यकीन माने मैं सत्तू पी के आया हूँ।
1: अच्छा
2: जी। तो उस टाइम में भी ये सब सत्तू या चावल दाल खा के मैं निकल जाता था ऑडिशन के लिए
1: जी।
2: और कई बार मुंबई की तो आप जानते ही हैं उमस, इधर तो आप गर्मी भी ज्यादा होने लगी है, बट ये सब चीज फर्क नहीं पड़ता था, ना तो उस समय सनस्क्रीन था ना तो कुछ था, बस जुनून था जिसकी वजह से पूरा शरीर चमक रहा था, है ना,
1: बिल्कुल आपकी बातों में झलक रहा है।
2: हाँ जी। और मैं निकलता जहां मुझे मिल जाए पानी पीने का, पसीने सुखाने का, वो सब चीज मैं कर लेता था। ऑडिशन जब भी मैं कहीं जाऊं और दिन में अगर एक भी ऑडिशन हो जाए तो ऐसा लगता था आज का दिन सफल हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि जब सामने कैमरा होता था तो मुझे लगता मैं क्या कर दूं। कई बार स्क्रिप्ट हम घर से अपना कुछ मोनोलॉग तैयार करके ले जाते थे
1: जी।
2: और सामने रिकॉर्ड करने वाला अगर उसको मजा आ रहा है तो हम उसी में इम्प्रोवाइज करने लगते थे,
1: बिल्कुल,
2: किसी तरह इसको मैं इंप्रेस कर दूं अपने एक्ट से।

0: ये फितूर, ये दीवानगी, ये पागलपन मेरे सर पे सवार हो गया था और ये चलता रहा मैं। बट उस समय एक चीज मेरे ध्यान में था कि ऑडिशन दो और भूल जाओ। क्यों? क्योंकि यहां लोड बढ़ जाता था दिमाग पे कि भाई मैंने बड़ा अच्छा ऑडिशन दिया, कॉल नहीं आया, पता नहीं क्या होगा। तो अपन ऑडिशन दे दे के भूल जाते थे।
1: तो पंचायत का ऑडिशन भी आपने दे के भूल गए या किस तरह से यहां तक?
0: पंचायत का ऑडिशन में ये हुआ कि तब तक 1.5 साल हो चुके थे मुंबई में।
1: अच्छा,
0: साल 1.5 साल। और मेरे कुछ दोस्त, मेरे नहीं मतलब मेरे रूममेट के एक दोस्त, वो उनकी महफिल जमती थी मेरे घर पे। तो अंकित फ्लैटमेट हुआ करता था
1: जी।
0: फ्लैटमेट क्या, हम लोग समझिए कि रैन बसेरा ही था वो। एक साथ 6-7-8 लोग रह रहे हैं।
1: अच्छा।
0: और कमाल की बात ये थी कि 7-8 लोगों के लिए मैं ही रोटी बेलता था।
1: अच्छा, रोटी का काम आपको सौंपा गया था?
0: नहीं नहीं, सौंपा क्या गया था, कोई कुछ करते ही नहीं थे। अच्छा। और मुझे ये था कि इस समय पे मुझे बाहर जाना है, ऑडिशन देना है, समय पे सो जाना है। तो वो सब इंतजार करते रहते थे कि चंदन आएगा तो खाने को मिलेगा। तो उन सब के लिए मैं रोटी बनाता, और बाद में फिर मैं टिक्कर बनाने लगा।
1: अच्छा,
0: टिक्कर जो रोटी का बहुत मोटा रूप।
1: अच्छा, छोटा और मोटा रूप। छोटा और मोटा रूप।
0: हाँ जी।
1: अच्छा।
0: बहुत मोटा मोटा मैं, चूंकि मुझे बड़ा मुश्किल हो गया था वो
1: जी।
0: मतलब 1-1 घंटे तक रोटी बेलना, तो मैं बहुत
1: जी,
0: मोटा
1: जी।
0: मोटा बनाने लगा। खैर, तो हाँ महफिल जमती और फिर लोग आते हैं, तो उसमें से एक मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त बन गया लतिन। तो उन्होंने कहा कि यार चंदन तुम कल आ जाओ ऑफिस में, तुम्हारा हम इंट्रोडक्शन करवा देंगे। मैंने कहा अरे वाह, बहुत सही, इतने साल से आज तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है कास्टिंग वे में। तो उसने बुलाया, अगले दिन हम पहुंच गए वहां। कमाल की बात ये थी कि पंचायत सारे कैरेक्टर लॉक हो चुके थे।
1: अच्छा।
0: सिर्फ दो कैरेक्टर बचा हुआ था, एक एक दिन का वो काम था, एक इलेक्ट्रीशियन का और एक दूल्हे का। बोला देख दूल्हा तो तू लग नहीं रहा, इलेक्ट्रीशियन बन जा, उसका ऑडिशन है। उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, बोला ये करके थोड़ा सा तैयारी कर लो और आ जा। मैंने कहा ठीक है, एक दो बार पढ़ा और फिर मैंने वो ऑडिशन देखे, फिर वही बातें भूल जाओ। भूल गया फिर अपने दूसरे ऑडिशन की तैयारी घूम घूम के कि यस, ऐसा दरवाजा नॉक करता था कि भाई सर कुछ है क्या मेरे लिए, कुछ है क्या मेरे लिए, ये फिर शुरू हो गया मेरा। उस समय चंदन चंदन कुमार जो हमारे पंचायत के राइटर है और दीपक मिश्रा जो हमारे पंचायत के डायरेक्टर है, तो इन्होंने देखा मेरा ऑडिशन और उन्होंने उसी समय डिसाइड किया कि यार इस लड़के से अपन कुछ और करवाते हैं, बहुत सही लग रहा है। तब तक विकास के लिए कोई और कैरेक्टर लॉक हो चुका था।
1: अच्छा।
0: तो उनके मन में आया क्यों ना हम विकास एक बार ट्राई करें इसे। तो आया विकास का ऑडिशन मेरे पास, मुझे लगा कि यार ये क्या ही मतलब काम है, वन डे टू डे करता हूँ, इन्होंने पैरेलल लीड कैरेक्टर मुझे ऑफर कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, मतलब हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपना तो चल ही रहा है, रोज भटकेंगे फिर से। और मैं एकदम कफन बांध के आया था अगले 20-25-30 सालों के लिए।
1: अच्छा।
0: ये नहीं कि मुझे फट से काम, नहीं, बहुत समय, बुढ़ापा तक, वो सोच के आया था मैं। बट आ गया पंचायत का ऑडिशन और अगले दिन चला गया ऑडिशन के लिए, दिया ऑडिशन। हाँ, दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं।
1: अच्छा।
0: तो रामनगर में उनका ऑफिस आ गया मैं मिलने के लिए। यकीन मानिए मुझे उस समय तक मैं टीवीएफ जानता भी नहीं था।
1: अच्छा।
0: कुछ वीडियो मैंने जरूर देखे थे बट जानता नहीं था मैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है।
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: क्या बात है, क्या बात है, इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिलना ही बहुत बड़ी बात है।
0: हाँ जी।
1: इसी बात पर कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
0: अरे वाह, मैं इस वक्त जो मुझे याद आ रहा है, जब मैं स्कूल शुरू किया था ना तो अक्सर फिल्म का एक गाना बहुत उस समय, आजकल तो वायरल कहते हैं, उस समय तो लोकप्रिय कहा करते थे,
1: पॉपुलर।
0: हाँ जी,
1: बहुत
0: हाँ जी,
1: पॉपुलर।
0: तो एक बार आजा आजा अक्सर फिल्म का गाना है
1: जी,
0: इमरान हाशमी
1: सुनवाते हैं,
0: उनका दौर था ये,
1: सुनवाते हैं।
0: हाँ जी,
1: बिल्कुल
0: जी।

0: पंचायत की बात चलिए तो हम आते हैं कि आपके किरदार पर, उस किरदार के लिए कुछ तैयारी की आपने, जैसे मैनरिज्म कुछ है उसके, उसकी बोली किस तरह से बोलेगा, इसके पीछे कुछ तैयारी हुई, वर्कशॉप हुई, किस तरह से ये क्योंकि बहुत पसंद किया जाने वाला किरदार है, जिस हिसाब
1: बिल्कुल
0: से वो स्लो बड़े आराम से इत्मीनान से बोलता है चलता है, तो वो तैयारी कैसी हुई?
1: जी। तो जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो जैसा वो थिएटर में मुझे बताया गया था कि जितने बार स्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तो वो कैरेक्टर एक समय के बाद खुद से बोलने लगेगा कि मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, मैं
0: जी
1: ऐसा हूँ। तो पंचायत का जो विकास है वो स्क्रिप्ट से मैंने उठाया, मतलब
0: अच्छा
1: उसको जितना मैं पढ़ा, मतलब बहुत पढ़ा मैंने
0: जी
1: कि अगर ये प्रधान जी से इस तरह से बात कर रहा है, ये प्रहलाद चा से ऐसी बातें कर रहा, या सचिव से ऐसी बातें कर रहा, तो ये किस तरह का कैरेक्टर होगा, इसके अंदर कैसी एनर्जी होगी, ये सब कुछ आप जब बार बार बार बार स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, आपको सब कुछ मिल जाता है। इस एक स्क्रिप्ट में अगर आप बार बार पढ़ो तो उसमें सब कुछ रहता है।

0: भी हमेशा से रहा है
1: जी
0: कि लोगों को ये ना लगे कि अच्छा हेयर मेकअप करके अभी तैयार है तो अभी मुझे एक्टिंग करनी है। मैं जैसा हूं या जैसा मेरा कैरेक्टर है अपन उसी तरह से करेंगे। क्यों हम कैमरा लगते ही ये दिखाने लगते हैं कि देखो अब हम एक्टिंग करेंगे, अब तैयार हो जाओ हमें देखने के लिए। मुझे इससे परहेज शुरू से था। मुझे नहीं पता कि अच्छी एक्टिंग क्या होती है, आज तक मैं ढूंढ रहा हूं। लेकिन हाँ, मुझे बुरी एक्टिंग क्या होती है इस बात की समझ बहुत पहले हो गई थी।
1: और मुझे लगता है वो समझ होना बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं उनसे बचता था। और ये था कि क्या करना है ये तो एक्सप्लोर करो, ये बहुत महासागर है, ये पूरा खुला आकाश है, क्या करना है आप ढूंढो, लेकिन क्या नहीं करना है ये पहले
1: उस पहले पर पता होना चाहिए।
0: बिल्कुल पता होना चाहिए। तो विकास के साथ भी ऐसा ही किया मैंने
1: जी।
0: अपने गांव में जिस तरह से मैं देखता था कि लोग जिस तरह से खड़े होकर के, पांच लोग अगर पुलिया पे खड़े हैं या बैठे हैं और बात कर रहे हैं तो कितना, अगर बहुत इन्वॉल्व है, उस तरह की बातें हो रही हैं तो उनका हाथ पांव कैसे रहता है, एनर्जी कैसी होती है। मेरी ये पूरी कोशिश रही। आप देखना किसी भी फ्रेम में आपको नहीं लगेगा कि ये लड़का अलग किसी दूसरे शहर का है या ये लड़का विकास इस गांव का नहीं है। तो इन सब पे मेरा बहुत ही, मैं चाहता था कि घुस जाऊं। जैसे आप कोई शर्ट पहन लेते हो, कोई कोट पहन लेते हो और वो आपका हो जाता है, उसी तरह से विकास को मैंने पहन लिया।
1: बिल्कुल, और वो दिखता भी है। और इसके एक दो सीन है जिसकी मैं बात करना चाहूं। जैसे एक था जिसमें विकास वो बाइक पे बैठता है और पूरा पूरा पलंग उठा के सर पर और चल देता है। हाँ, तो इस तरह के जो सीन है ये कहीं इम्प्रोवाइज्ड है या स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे पहले से?
0: नहीं, ये जो बेसिकली जो खाट जो हम सर पे उठाते हैं, हाँ, तो स्क्रिप्ट में लिखा था।
1: अच्छा।
0: लेकिन पंचायत में एक बड़ी अच्छी बात यह है, हमारे क्रिएटर्स जो है दीपक सर, अरुणाव सर और चंदन सर जो राइटर है, ये अपने एक्टर को बड़ा खुला छोड़ देते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात अभी मतलब शुरू से ही उन्होंने कहा है कि देख ये यूनिवर्स है, हमने अपने सारे कैरेक्टर को इस यूनिवर्स में उतार दिया है। मैं ये इंसिडेंट या ये इवेंट मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है, बट ये होगा कैसे? आपको उस मोमेंट में, उस स्पेस में, उस एम्बियंस में जो समझ में आ रहा है आप करो। यही वजह है कि पंचायत में जितने कैरेक्टर हैं कई बार वो स्क्रिप्ट के बियॉन्ड चले जाते हैं और बहुत खूबसूरत चीज निकाल के ले आते हैं, है ना। और इसके लिए जरूरी है कि आप उस यूनिवर्स को समझें। अगर आप नहीं समझोगे ना तो ऐसा लगेगा एयर ड्रॉप किया हुआ ये कैरेक्टर है
1: जी,
0: सिर्फ स्क्रिप्ट बोल रहा है, सिर्फ वो लाइंस बोल रहा है, ऐसा लगेगा। तो ये छूट, ये लिबर्टी हमारे क्रिएटर्स ने हम लोगों को दिया है। और मुझे भी इम्प्रोवाइज करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार जब आप जो हमारे राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ सोचा है इस सीन को कि ऐसा रखेंगे, उनके अतिरिक्त आप कुछ कर देते हो, उनसे आगे कुछ बढ़ा देते हो अपने सीन को या अपने कैरेक्टर को, तो यकीन मानिए जब आप होटल जाते हो वापस, अपने फ्रेश होकर के नहा के अपने बेड पे आते हो तो बड़ी खुशी मिलती है आपको कि वाह मैंने सीन में,
1: संतोष मिलता है,
0: यस
1: आज क्या किया,
0: आज बड़ा अच्छा सीन किया
1: जी,
0: मैंने
1: जी, जी।
0: और बहुत ही खुशी खुशी आपको नींद आ जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह 4:30-5 बजे का अलार्म बजता है, फिर आप वही जुनून, वही पागलपन आपको काम आता है।
1: तो सेट पे कैसा माहौल है आपके को एक्टर से, ऑफ स्क्रीन भी कैसा माहौल है, किनके साथ मिलना जुलना तो लगा रहता होगा?
0: देखिए, एक तो बहुत ये है कि लोगों को लगता है कि बहुत हम लोग मिलते जुलते हैं, पर्दे पे इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन मुंबई बिल्कुल उल्टा है, किसी के पास भी समय नहीं है। और कई बार डर भी लगता है कि भाई कोई कहीं जाऊं पता नहीं क्या होगा, उसकी प्राइवेसी है, उसका क्या है। तो सेट पे तो हम लोग सब बहुत मिलजुल के, सब लोग, और ये सभी अभी इतने 8-9 साल का अनुभव है मेरा
1: जी।
0: सेट पे हम लोग जितनी केमिस्ट्री, और सिर्फ मैं किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, सभी प्रोजेक्ट में यही होता है कि
1: जी।
0: हम लोग सेट पे बहुत अच्छे रहते हैं और जैसे ही हमारा पैकअप होता है हम सब अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं, है ना। और ये कई बार सही भी होता है, कई बार मुझे गलत भी लगता है, बट ठीक है, मैं भी इस धारा में बह रहा हूं। किसी के पास समय नहीं होता कि वो मिले, पुराने दिनों को याद करे,
1: सिर्फ कभी किसी प्रोजेक्ट में अगर फिर से उनसे मुलाकात, तो मिलना अलग हो जाता है।
0: एक तो हम लोग का जो भी एक्टर होते हैं
1: जी,
0: उनका बहुत रिसीविंग नेचर होता है
1: जी।
0: मान लो कि अगर आपकी एनर्जी मुझसे नहीं भी मिल रही है, आप बहुत अलग ख्यालात के हैं, मैं अलग हूं, बट जब हमारा सीन होता है तो हमें अपनी एनर्जी को मैच करके और उस वक्त को बहुत अच्छे से अपने

0: कैरेक्टर को करना होता है
1: जी जी
0: है ना
1: जी बिल्कुल।
0: तो लोग लगा अरे क्या है, बहुत बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है इन लोगों में। तो ये हमारा जॉब का एक सबसे पहला एक स्टेप है ये।
1: अच्छा, पंचायत के बाद क्या फर्क आया है जब आप अभी वापस गांव जाते हैं मिलने जुलने परिवार से, दोस्तों से, पहले के चंदन में और अभी वो जिस तरह से बिहेव करते हैं या मिलते जुलते हैं, कुछ फर्क है दोस्तों के बीच या बाहर के लोगों के बीच?
0: देखिए, उनके नजर, उनका नजरिया बदला होगा मेरे लिए, ये तो मुझे ऐसा लगता भी है। बट मैं तो बिल्कुल भी अंदर से नहीं बदला हूं, मैं जैसा था वैसा ही हूं। पहले भी इसी तरह से मैं सोचता था, इतना ही कूल और कॉन्फिडेंस में रहता था जितना आज है। और कभी मुझे अभी कई बार ऐसा लगता है कि ये तो होना ही था मेरे लाइफ में
1: जी।
0: तो कई बार आश्चर्य नहीं होता मुझे।
1: लेकिन बाहर जो बाकी लोग मिलते हैं उनकी मेहमान नवाजी में कुछ फर्क आया?
0: बिल्कुल, कई बार तो उनको लगता है कि भाई ये चंदन तो अब, जैसे मुझे बहुत बुरा लगता है जब दोस्त लोग अजीब बिहेव करते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, उनको लगता है कि अरे इसको ऐसे मत बोलो, इसको ऐसे बैठाओ, इसके लिए थोड़ा पहले
1: कुछ
0: चंदन
1: बुरा
0: को
1: लग जाएगा।
0: हाँ, तो मुझे लगता है ओ हेलो, मैं वही चंदन हूँ भाई, ऐसा क्यों तुम बिहेव कर रहे हो?
1: अच्छा,
0: जैसा पहले थे वैसे ही रहो। तो लोगों का नजरिया बदला है, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी, जैसा मैं पहले था
1: अच्छा
0: आज भी वैसे ही हूँ। घर जाऊं या कहीं भी जाऊं
1: जी,
0: मैं वही कहा कि ये मेरा जॉब है अभिनय करना। लोगों को लगता है अरे ये तो पर्दे पे आ रहा है ये सब चीजें, बट ये मेरा जॉब है। और बहुत ही संजीदा और गंभीरता के साथ, जितना एक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर अपने काम करते हैं, उसी शिद्दत के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ हम लोग भी काम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपसे बहुत बेहतर हैं या ऐसा कुछ, कुछ भी नहीं। हाँ, बट कई बार होता है कि कैमरा देख करके लोगों को थोड़ा सा रोमांच फील होता है। मैं समझ सकता हूं कि वो अगर ऐसा सोचते हैं तो बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मेरा एक जॉब है, मैं बस एक जॉब कर रहा हूं। मुझसे बेहतर काम जो सरहद पे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर है वो, या जो प्रोफेसर है, टीचर है, वो मुझसे ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। उनका योगदान समाज में मुझसे कहीं ज्यादा है।
1: क्या बात है, बिल्कुल। सुनवाते आपके पसंद का एक गीत?
0: बिल्कुल सुनेंगे हम,
1: जरूर बताएं।
0: हर घड़ी बदल रही है
1: रूप
0: जिंदगी की,
1: बिल्कुल सुनवाते हैं
0: है ना।

0: अभी हम बात करते हैं गुलमोहर की।
1: वाह,
0: गुलमोहर में आपने काम किया और उसमें मनोज वाजपेयी जी के साथ काम किया, शर्मिला टैगोर जी भी स्क्रीन पर थी आपके साथ, उससे जुड़े कुछ खास अनुभव किससे आप सुनाना
1: यस,
0: चाहें,
1: यस, यस।
0: कैसा लगा उनके साथ काम करके और कैसा अनुभव रहा?
1: बिल्कुल, गुलमोहर मेरे फिल्मी करियर के लिए एक ऐसा है फिल्म जिसको मैं हमेशा याद रखूंगा। हालांकि जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया था तो मैंने मना ही कर दिया था।
0: अच्छा, क्यों?
1: हाँ, क्योंकि कैरेक्टर मुझे सही नहीं लग रहा था, यार मैं इस तरह का कैरेक्टर तो नहीं करूंगा। बट हमारे जो डायरेक्टर हैं राहुल चिटेला, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सुनो एक बार मुझसे मिलो, करना ना करना बात की बात है, पहले एक बार मिलो। मैं मिला और मुझे ये था कि अगर मैं जाऊंगा तो ये तो मना ही लेंगे, बट मैं बहुत जिद्दी रहूंगा अपने जिद पे कि भाई मुझे नहीं करना। और गया बांद्रा में उनके ऑफिस और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करना चाह रहे हो? मैंने कहा सर मैं ये गेट कीपर इस तरह का कैरेक्टर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे एक डर भी था कि अगर मैं इस तरह करूंगा तो लोग मुझे इसी तरह के कैरेक्टर देते रहेंगे,
0: टाइपकास्ट
1: कर देंगे, और अपन बहुत अंदर भरा हुआ है मामला तो फंसना नहीं है किसी एक कैरेक्टर में। उन्होंने कहा कि देख चंदन, करना तो तुम्हें ही है ये कैरेक्टर, हाँ बोलो ना बोलो, अब तुम ये बताओ कि इस कैरेक्टर को और कैसे, तू क्या क्या नहीं चाहता है इसमें
0: जी।
1: और इसमें हम और क्या कर सकते हैं। एक नया लड़का उस फिल्म में, इतने दिग्गज लोग, मनोज वाजपेयी सर, शर्मिला टैगोर, तलत अजीज, अमोल पालेकर, वहां पे मेरे जैसा लड़का एक बोल रहा है कि सुनो मैं पूरे फिल्म में कभी कुछ जो कॉस्ट्यूम है ना वो वर्दी वाला गेटकीपर का वो नहीं पहनूंगा, पूरे फिल्म में कुछ काम नहीं करूंगा मैं, कुछ उठाना हुआ कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो करोगे क्या? मैंने कहा मैं पढ़ाई करूंगा, मैं एक ऐसा लड़का जो गांव देहात से आया है दिल्ली में और इस शहर में वो इंग्लिश पढ़ना चाह रहा है, तो कुछ ऐसा कैरेक्टर रखते हैं। राहुल कमाल का, बहुत कमाल के इंसान, वो मेरी हर बात को मानते चले गए। उन्होंने बोला बस मैं यही चाह रहा हूं, यही करो।
0: अच्छा।
1: और पता नहीं क्यों मेरी सारी बातें उन्होंने मान ली और मैंने वो फिल्म किया।

0: और मुझे अब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं गुलमोहर में हूँ, क्योंकि पता नहीं इतने दिग्गज लोग के साथ फिर दोबारा कब काम करूँगा।
1: बिल्कुल.
0: और जैसे शर्मिला मैम, मुझे एक और घटना याद आ रही है कि एक तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था इस एक्शन, तो एक ऐसा
1: हाँ, एक
0: सीन
1: सीन
0: था
1: में.
0: वहाँ पर
1: जी
0: कुछ झड़प था, आपसी झड़प, उसमें मेरा को एक्टर उन्होंने मुझे पैर पे मार दिया था, तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। और मनोज सर को लगा कि मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ,
1: अच्छा.
0: जबकि मैं दर्द के मारे
1: जी
0: तड़प रहा था। तो एक पॉइंट के बाद जब मैं अपना लाइंस नहीं दिया उनको, तो वो आए और उनको लगा सच में ये कुछ तकलीफ में है, दर्द में है, और आकर उन्होंने फिर मुझे उठाया और तुरंत एम्बुलेंस ला के मुझे भेजा गया हॉस्पिटल। बट मुझे याद है कि शर्मिला मैम का जब रैपअप हो रहा था लास्ट डे उनका, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि अरे चंदन को बुलाओ, चंदन को बुलाओ। और उन्होंने केक कट करके वो एक छोटे से प्लेट में रख करके मेरा वेट कर रही थी कि
1: अच्छा.
0: मैं चंदन को खिलाऊंगी पहले, आई डोंट नो। और मुझे था कि भाई बड़े लोग हैं, अपना केक कट हो रहा है, मैं उधर कहीं स्पॉट बॉय लोग के साथ कहीं बैठ के अपना बैठा था, तो प्रोडक्शन भागा भागा है, अरे सर आपको उधर ढूंढा जा रहा है। मैंने कहा मुझे कौन ढूंढ रहा भाई, शर्मिला मैम। तो जब मैं वहां गया तो मैम ने वो प्लेट मुझे दी, अपने हाथों से खिलाया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब
1: जिन्हें
0: ये।
1: पर्दे पे बचपन से
0: हाँ
1: देखा
0: जी
1: और वो आज अपने हाथ से आपको केक खिला रहे हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्या बात है.
0: मैंने क्या, मेरे दादाजी ने भी उनकी फिल्में देखी होंगी, मेरे पिताजी ने भी देखी होगी,
1: जी जी
0: और
1: बिल्कुल.
0: मैं उनके साथ काम किया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
1: और मनोज वाजपेयी जी के साथ भी आपने स्क्रीन
0: हाँ
1: शेयर
0: जी हाँ
1: किया
0: जी
1: है,
0: हाँ जी।
1: उनसे क्या कुछ, कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा
0: एक तो
1: किस्सा.
0: हाँ मुझे एक सीन याद आ रहा है कि मैं और शांति, एक सीन चल रहा था, वो किचन में थी और फिर वो मेरे पास आती हैं, तो मनोज सर सीन चल रहा था, मनोज सर वहीं पे चेयर लगा करके बाहर बैठ गया, उस दिन उनका सीन भी नहीं था, तो मुझे लगा यार क्यों बैठे हुए हैं ये, मैं नया एक्टर हूँ, मैं मतलब इनसिक्योर हो जाऊंगा, मैं मतलब मुझे डर लग रहा था उनको देख के कि
1: जी
0: मैं जिनको भाई जो इतने कमाल के एक्टर हैं उनके सामने मुझे एक्टिंग करने के लिए बोल रहा है, नहीं प्लीज आप चले जाओ, मेरे मन में यही चल रहा था।
1: अच्छा.
0: और किसी तरह वो सीन बहुत अच्छा हो गया, और फिर जब सीन खत्म हुआ तो सर आए मेरे पास, उन्होंने कहा तू कहाँ से है, मैंने कहा सर मैं तो बिहार से हूँ। अरे बहुत सही, या थिएटर करते हो, मैंने कहा जी सर, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और उन्होंने ऐसे पीठ पे एक बार ऐसे थपथपा के वो चले गए। फिर तो हमारा पहला उनसे जो हम कह सकते हैं मुलाकात इस तरह से हुआ मनोज सर के साथ मेरा जी।
1: यहाँ पर आपकी पसंद का गीत कौन सा सुनवाना चाहेंगे आप?
0: इस वक्त मैं अपने पसंद का गाना सुनना चाहता हूं।
1: इश्क तो गले से लगा ले.

0: इतनी दिलचस्प बातें हो रही है आपके साथ।
1: हाँ जी।
0: और अब आते हैं हम चंपारण मटन करके एक शॉर्ट फिल्म थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: एफटीआई की फिल्म है ये।
0: हाँ हाँ।
1: रंजन इसके डायरेक्टर हैं और ये पहली ऐसी फिल्म है जो बज्जिका में बनी है। लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी, मैथिली है ना, लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भोजपुरी के अलावा भी कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। एक बड़ा खूबसूरत एक कहावत है बिहार में कि कोस कोस पे पानी बदले, तीन कोस पे बानी, है ना, मतलब हर
0: कोस पे भाषा।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: बोली बदलती।
1: हाँ जी। और बज्जिका मेरी मातृभाषा है, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरे घर में आज भी जब अगर आपके सामने मेरा फोन आ जाए तो मैं अपनी माता जी से, पिताजी से बज्जिका में ही बात करूंगा।
0: अच्छा।
1: तो इस भाषा में अगर मुझे मिले फिल्म करने के लिए तो मैं कैसे छोड़ सकता था। और ये एफटीआई की फिल्म थी, बहुत प्यारी फिल्म इन लोगों ने बनाई। हालांकि मैं उस समय लगातार शूट चल रहा था तो 15 दिन का एक गैप था। मैंने कहा इस बीच ये फिल्म हम शूट करेंगे, स्टूडेंट फिल्म है, मजे मजे में मैं चला गया था। क्योंकि एक आदत होती है ना कि आप ओटीटी के लिए काम कर रहे हो या फिल्म कर रहे हो और अचानक से एक स्टूडेंट फिल्म करने के लिए चले जाते हो जहाँ पे बहुत सारी चीज ना, आपको होटल अच्छा मिलेगा ना, वैनिटी मिलेगी,
0: कोई एक अलग तरह का अनुभव।
1: हाँ जी। बट मैं एफटीआई इसलिए चला गया था इस फिल्म को करने के लिए, उसके दो कारण थे। पहला कि थोड़ा सा मुझे ना एक ब्रेक चाहिए था, जो मेन स्ट्रीम में काम कर रहा हूँ उसे मुझे एक ब्रेक चाहिए था, मुझे कुछ मजे करके आ जाएंगे बच्चों के साथ। दूसरा कारण ये कि एफटीआई में मैंने बहुत पहले राइटिंग के लिए अप्लाई किया था, मुझे ये था कि एक्टिंग के लिए तो मेरा होगा नहीं तो क्यों ना अपन राइटिंग में चले जाएं। क्योंकि मैं उस समय दैनिक जागरण में जॉब करता था कंटेंट राइटर, तो मैं सोचा कि यहाँ पर भी राइटिंग करके यहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और फिर मैं पूरे दिन एक्टिंग वाले स्टूडेंट के साथ बैठा रहूंगा, उन्हीं के क्लास में बैठा रहूंगा, थोड़ी भगा देंगे क्लासरूम से, बैठूंगा वही एक्टिंग सीखता रहूंगा। बट उस समय मेरा वेटिंग एक रह गया राइटिंग में, और सच पूछिए तो अच्छा ही हुआ क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने कुछ पैसे कमाए थे मुंबई आने के लिए, तो उधर खर्च हो जाते हैं तो बेहतर है कि, तो ये दो कारण थे। और बड़ी अच्छी फिल्म उन लोगों ने बहुत प्यार से बनाया, सब बच्चे ही थे तो 6 या 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, बहुत शिद्दत से बहुत प्यार से हमने ये शूट किया और बहुत इम्प्रोवाइज भी किया हम लोगों ने। बट ऐसा हमने

0: सोचा नहीं था कि ये फिल्म स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो जाएगी और फाइनल राउंड से बाहर हो जाएगी। कहाँ, हम लोग गांव देहात में छोटे छोटे नाटक करते थे, ऑस्कर के लिए हमारी फिल्म नॉमिनेट हो जाएगी, ये किसने सोचा था?
1: बिल्कुल,
0: बट ठीक है, विधाता को जो मंजूर है अपन उस पथ पे चल रहे हैं।
1: हाँ, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म गई है।
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ ही आरजे बस्तर फिल्म,
0: हाँ जी,
1: उसके बारे में कुछ बताए, वो भी मेरे ख्याल से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गई।
0: बिल्कुल।
1: एक तरफ ये पंचायत जो मासेस के लिए, हाँ, है, और एक तरफ ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म, दोनों में काम करने का फर्क कितना है?
0: बहुत खूबसूरत सवाल है मैम ये। मैं इस तरह की फिल्म इसलिए करता हूँ ना, इससे मुझे सुकून और बहुत शांति मिलती है।
1: अच्छा।
0: बहुत प्यार मिलता है। आरजे बस्तर, मैं बस्तर में गया शूट करने के लिए, एकदम बिहार जंगल में, चारों तरफ धान की खेती है और बस्तर बहुत खूबसूरत जगह। जितना भी हम लोग बाहर सुनते हैं कि बस्तर में ये, बस्तर में पूरा बस्तर लाल रहता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई भय नहीं, बहुत ही सपोर्टिव लोग और बहुत प्यारे लोग। मैं पहली बार जीवन में आदिवासी भाइयों से मिला, इतना खातिरदारी करते हैं, ऐसा लगता है कि जान निकाल के रख देंगे आपके स्वागत के लिए।
1: अच्छा।
0: तो जब आरजे बस्तर में शूट कर रहा था तो एक तो कहानी बड़ी अच्छी, मनीष मानिकपुरी वहीं के रहने वाले हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर, वो आदिवासी लड़की की कहानी है जो रायपुर में काम करता है, दिहाड़ी मजदूर है, और उसको एक लड़की से प्यार है और अपने प्यार के खातिर वो किस तरह से किस हद तक जाता है। और चूंकि आदिवासी में ना वहाँ महिलाओं पुरुष में कोई ऐसा कुछ है नहीं, वो सब एक समान है, तो वहाँ की महिलाएं भी बहुत सशक्त होती हैं, सारे घर में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वही लेती हैं। तो इस फिल्म में भी यही है, जो हमारे अपोजिट हैं उनका ये है। अच्छा, उनको भी आरजे बनना है।
1: अच्छा।
0: और मैं पीछे पीछे हूँ, उनका कंधा थामे हूँ कि आपको जो बनना है बनो, मैं आपके साथ हूँ क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है। और अपने मोहब्बत के लिए उसका जो कैरेक्टर है रमेश, वो हद से गुजरने के लिए तैयार है। बहुत प्यारी कहानी।
1: चलिए, यहाँ पर आपके पसंद का एक गीत हम सुनवा देंगे अपने श्रोताओं को।
0: हाँ जी, हाँ जी।

0: अभी हाल फिलहाल आपकी फिल्म आई गांधारी और आखिरी राइड,
1: हाँ जी
0: ये
1: हाँ
0: कुछ
1: जी
0: अलग हटके रोल है जो अब तक आपने किया है,
1: हाँ जी
0: क्या
1: हाँ
0: अलग है, कैसा अनुभव रहा?
1: गांधारी तो मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि इसके डायरेक्टर देवाशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और मैंने इनको इनका काम जोरम में देख रखा है, और जैसा मैं चाहता था वैसी फिल्म बनी नहीं। और गांधारी करने का एकमात्र उद्देश्य ये भी है क्योंकि मैं थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहता था, है ना, तो मुझे लगा एक बेबी स्टेप है थोड़ा सा नेगेटिव वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए।
0: एक कदम है वो बस।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो इसीलिए मैंने वो फिल्म करी। बट ठीक है, हमारा काम सिर्फ अभिनय करना होता है, जैसे ही हमारा रैपअप होता है खत्म हो जाता है सब कुछ कट के बाद, है ना, बाकी ये फिल्म एडिट टेबल पे फिर से फाइनल बनती है, और बहुत सारे एक्सटर्नल एलिमेंट भी होते हैं जो फिल्म को प्रभावित करते हैं। मेरे हिसाब से गांधारी के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ, और आखिरी राइड वो भी बहुत मेरे दिल के करीब वाली फिल्म है,
0: अच्छा,
1: इसलिए क्योंकि कहानी बड़ी अच्छी है इसकी, और अनुराग कश्यप सर ने इनको इस फिल्म को प्रेजेंट किया है। और मुझे याद है कि ये फिल्म भी मैं कहीं और, मेरा शूट था पहाड़ पे किसी और दूसरे फिल्म को लेकर के, लेकिन डेट नहीं मैनेज हो रहा था, मतलब क्लैश हो रहा है डेट, तो मैंने उस फिल्म को छोड़ के आखिरी राइड करना पसंद किया जिसमें बिल्कुल भी बजट नहीं था, बट मेरे लिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं एक ऐसे स्टेज में हूँ जहाँ पे अपने पसंद का काम कर सकता हूँ, मेरे लिए अब कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छी कहानी इंपॉर्टेंट है।
0: अपनी पसंद रख सकते हैं अब आप सामने।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल।
1: ना,
0: और ऐसा कौन सा किरदार है जो आप के मन में है कि ये तो मुझे करना है, इस तरह का अगर कुछ किरदार है चाहते हैं? नेगेटिव शेड तो आपने कहा कि नेगेटिव, कोई ऐसा आइडल कि इस तरह का किरदार तो मुझे पर्दे पे उतारना है जब कभी मौका मिले?
1: बिल्कुल ऐसे तो बतौर अभिनेता अभी तो, मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी तो बहुत नया हूँ, अभी तो बहुत सारे कैरेक्टर करने हैं, बहुत सारे चीज़ों को जानना है समझना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर ना एक बहुत गंभीर अभिनेता है जो आना बाकी है।
0: सीरियस रोल।
1: हाँ जी हाँ जी, क्योंकि कॉमेडी हो या बाकी चीज़ें हो वो सब तो ठीक है, बट जो मेरा कोर एक्टर है वो एक बहुत ही गंभीर है, बहुत संजीदा है। जैसे अगर आप समझना चाहें तो मैं एक उदाहरण दूं कि अगर आप हीट देख रहे हो, रॉबर्ट डिनरो और अल पचिनो की फिल्म है जिसमें दोनों एक साथ बैठते हैं, इसमें चोर और पुलिस की कहानी है, और दोनों जब एक टेबल पे बैठते हैं,
0: जी
1: और वो मेरे ख्याल से 10-11 मिनट का वो सीन है, मैं कई बार उस गंभीरता को महसूस करता हूँ कि मुझे भी कुछ इस तरह कैरेक्टर करना है अपने इस करियर में, इतनी ही स्क्रिप्ट को जज्ब करके, एक एक लाइन को महसूस करके, उस गंभीरता के साथ मैं अपने कैरेक्टर को करूं, मैं ऐसा चाहता हूं।
0: हम भी चाहते हैं कि आपके मनपसंद का किरदार, कैरेक्टर, रोल आपको मिले, संजीदा रोल भी मिले और हम उसमें भी आपको देखें।
1: बिल्कुल, और मैं आपको निराश नहीं करूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को हमेशा सरप्राइज करता रहूंगा।
0: बिल्कुल। जाते जाते हम एक सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक छोटे जगह से आए हैं और यहाँ पर आके आपने अपना मकाम बनाया है। तो जो उभरते कलाकार आते हैं, दो तरह के होते हैं कई बार, प्लान ए और प्लान बी लेकर चलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, अभिनय में ट्राई कर रहे हैं, ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम ये भी कर लेंगे, इसको भी ऑप्शन लेके चलते हैं। कई बार ऐसा होता है नहीं, पूरी शिद्दत से आते हैं लेकिन थक हार भी जाते हैं, वापस लौट भी जाते हैं। तो आपके ख्याल से आप क्या सलाह देना चाहते हैं उनको, यहां पर टिके रहना, अपना मकाम बनाना, क्या कहना चाहेंगे?
1: सबसे पहली बात कि दूसरों की बात आप ना सुने,

0: अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपके अंदर एक बड़ा कमाल का आर्टिस्ट है, आप मुंबई चले जाओ या इस फील्ड में जाओ, मत सुनो किसी की बात। आप अपने आप से पूछो, क्या वो एक्स फैक्टर है आपके पास, क्या वो हुक पॉइंट है आपके पास जिसकी वजह से आप मुंबई में रह सकते हो या इस फील्ड में पूरी जिंदगी अपने आप को दे सकते हो। ये बहुत जरूरी है खुद से पूछना, दूसरे की बातों पे बिल्कुल भी आप मत जाइए। एक बात और कि कभी भी ग्लैमर और मुंबई में ये पैसा, शोहरत, नाम, ये सब देख कर मत आइए। ये आर्ट है, अगर अपने आप को इस आर्ट में समर्पित कर सकते हो तो आओ। बहुत सारे जो हमारे नौजवान दोस्त हैं वो गलती यही करते हैं, उनको चाहिए ग्लैमर, उनको चाहिए बड़ी बड़ी चीजें, बट वो आर्ट से कुछ लेना देना है ही नहीं। और वो अपने जीवन का बहुत ही गोल्डन टाइम बर्बाद कर देते हैं मुंबई में। एक ऐसा ये एज है, ऐसा समय जिस वक्त आपको आपके घर वालों के लिए देना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, बजाय आप यहाँ पे अपना समय एक तरह से बर्बाद ही करें क्योंकि आपने देखा नहीं, खुद को जाना समझा नहीं
1: जी,
0: है ना। और मुझे एक बात और आप लोगों से कहनी है कि दोस्त, सफलता असफलता कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है खुश रहना। और मुझे ये लगता है कि देख, जिंदगी एक ही मिली है, जिंदगी है तो ये सारे गोल हैं, सारे एम हैं, आपके जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो प्लीज अपने आप को जानिए, समझिए, उस डायरेक्शन में काम कीजिए। अगर सच में आपके अंदर ये काबिलियत है कि कुछ कर सकते हैं तो प्लीज आप मुंबई या जहां कहीं भी हो इस फील्ड में आ जाइए, क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट की बड़ी भारी कमी है मुंबई में।
1: बिल्कुल,
0: आपका आना बहुत जरूरी है, इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी है और इस समाज के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे आर्टिस्ट आए, चाहे वो किसी भी फील्ड के आर्टिस्ट हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, पेंटर हो, गीतकार हो, संगीतकार हो, जो भी हो
1: जी।
0: अगर आप कमाल के हैं तो इस इंडस्ट्री में आपकी बहुत जरूरत है।
1: ये बहुत ही सुंदर सलाह दी आपने। और चंदन जी, आपने अपने एक्टिंग का सफर तो हमारे साथ साझा किया ही, साथ ही निजी अनुभव और बड़ी ईमानदारी से वो छोटी छोटी बातें हमारे साथ शेयर की है जो हमें बहुत अच्छी लगी है। और पूरी उम्मीद है कि जितने लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें एक इंस्पिरेशन मिली है और उन्हें बहुत ही वो प्यारी प्यारी सलाह मिली है आपकी तरफ से। आपके जो भी भविष्य के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारी सी बातचीत के लिए।
0: शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा हूँ।
1: क्या कहना चाहेंगे?
0: यहाँ बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे विविध भारती के ऑफिस में बुलाया है। और यहाँ आना किसी सपने से कम नहीं है मेरे लिए। ऐसा लगता है कि वर्षों का एक देखा हुआ, एक बालमन में देखा हुआ सपना आज मेरा पूरा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलके, विविध भारती के इन दीवारों को देख करके, इन माइक, ये लाइट, ये सब कुछ देख करके। आपको शायद यकीन ना हो कि जब 2:30 बजे मेरा स्कूल छूटता था तो सीधे मैं घर आता था, अपना रेडियो सेट उठाता था, सखी सहेली सुनता था, उसके बाद पिटारा, और फिर रात्रि सेवा में मैं जब जयमाला से शुरू करता था तो गुलदस्ता होते हुए फिर गजल वाले प्रोग्राम, और फिर पता नहीं कब मेरी आंखें लग जाती थीं और कभी मेरी मम्मी, कभी मेरे दादा, कभी मेरी बहन आकर के बंद करते थे रेडियो, या कई बार सुबह तक वो रेडियो चलता रहता था
1: जी।
0: मुझे याद है कि मैं रेडियो से इस कदर स्नेह रखता था बचपन में कि मेरे गली में, आंगन के बगल में गली था, अमरुद का पेड़ हुआ करता था, उसमें मैं कई बार उस अमरुद के पेड़ पे अपने ट्रांजिस्टर को लेकर के चढ़ जाता था और ऊपर ही कहीं पेड़ के तने में बांध करके रेडियो चल रहा होता था और मैं अमरुद वही नमक लेके खाता रहता था।
1: क्या बात
0: है ना। तो रेडियो इस तरह से मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आज भी सूट पे जाता हूँ या किचन में होता हूँ या घर में, कहीं भी रेडियो मेरे घर के किसी न किसी एक कोने में बज रहा होता है। रेडियो मुझे लगता है मेरा बचपन का दोस्त है।
1: बिल्कुल,
0: एक ऐसा दोस्त जो हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल है।
1: बिल्कुल, हमेशा साथी बनकर।
0: बिल्कुल,
1: क्या बात है।
0: सिर्फ इस देश की धड़कन ही नहीं है, ये मेरा भी धड़कन है।
1: क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।

ये थी जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

0: मैं हूं जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूं कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूं, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूं। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आप हमें FM 102.5 मेगाहर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी अदिति निगम। श्रोताओं, नवरात्रि का नाम सुनते ही मन में आता है रंग बिरंगे कपड़े, सजे धजे चेहरे, हाथों में डांडिया, ढोल की थाप। तो

श्रोताओं, नवरात्रि सिर्फ माता रानी का आराधना का पर्व नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी खुशियों का उत्सव भी है। और आजकल तो गरबा का क्रेज युवाओं में सिर चढ़कर बोल रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गरबा गाना।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, आज के युवाओं के लिए गरबा अपनी जड़ों से जुड़ने का एक शानदार अवसर है। आधुनिक संगीत और नए डांस स्टेप्स के साथ भी अपनी परंपराओं को जीवित रखना जरूरी है। तो इस नवरात्रि गरबा जरूर खेलिए, क्योंकि आनंद माँ की आराधना में इसी के माध्यम से आता है। आइए सुनते हैं एक और प्यारा गरबा गीत।

0: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
1: क्या हो गया ऐसा?
0: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
3: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
4: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
5: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
6: अपनी ऊर्जा ही देश की शक्ति है। हमारे जो युवा वर्ग हैं, जिस उत्साह से गरबा मैदान में कदम थिरकाते हैं, उसी उत्साह से अपने जीवन के लक्ष्य की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। माँ की आराधना केवल हाथ जोड़ने से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने, दूसरों का सम्मान करने और ज़रूरतमंदों की सहायता करने में भी आज के युवा वर्ग अपनी इस प्रतिभा को दिखा रहे हैं। इस नवरात्रि आइए हम संकल्प करें कि हम अपनी परंपराओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं का आदर करेंगे और समाज में प्रेम, सद्भाव और सकारात्मकता का संदेश फैलाएंगे। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: आज के युवाओं को देखकर एक खूबसूरत बदलाव महसूस होता है। आधुनिक फैशन, वेस्टर्न आउटफिट्स और नए ट्रेंड्स के बीच हमारी युवा पीढ़ी एक बार फिर अपनी पारंपरिक संस्कृति, पहनावे और रीति रिवाजों को गर्व के साथ अपना रही है। लेकिन दोस्तों, ये पहनावे की बात नहीं है, ये अपनी जड़ों से जुड़ने की बात है, अपनी पहचान को समझने की बात है, अपनी परंपराओं पर गर्व करने की भावना है। एक और प्यारा सा गाना सुनिए।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: दोस्तों, आज की युवा सोशल मीडिया पर गरबा के वीडियो साझा करते हैं, पारंपरिक नृत्य सीखते हैं और अपने दोस्तों को भी इस उत्सव से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह हमारी लोक संस्कृति नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

तो श्रोताओं, आधुनिक बनिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, नए विचार अपनाइए, लेकिन अपनी संस्कृति को कभी मत भूलिए, क्योंकि अपनी परंपराओं पर गर्व करना पीछे लौटना नहीं बल्कि अपनी पहचान को साथ लेकर आगे बढ़ना है। युववाणी के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आपसे पुनः होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो सखी अदिति निगम। श्रोताओं, संध्या की इस पावन बेला में आपका स्वागत है भजन संध्या कार्यक्रम में, जहां भक्ति के स्वर मन को सुकून देते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक विचार लाते हैं, प्रभु स्मरण सदैव ईश्वर के समीप ले जाता है। श्रोताओं, आज नवरात्रि की तीसरी संध्या बेला में माँ के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं और सुनते हैं माँ का एक मधुर भजन।

0: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: श्रोताओं, भक्ति की सबसे सुंदर बात यही होती है कि इसके लिए किसी विशेष भाषा शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे मन से निकली एक छोटी सी प्रार्थना भी हमारी आस्था को अभिव्यक्त कर सकती है। आइए भक्ति से ओतप्रोत सुनते हैं एक और मधुर भजन।
0: को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: श्रोताओं, वे कैलाशवासी भी हैं और भक्तों के हृदय में बसने वाले भोलेनाथ भी हैं। उनके नाम में ही अपनापन है। महादेव, शंकर, नीलकंठ, भोले भंडारी, शिव भक्त हमें सिखाते हैं कि शिव में जीवन में सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना चाहिए, अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। तो आइए मन ही मन महादेव को प्रणाम करें और आनंद लेते हैं मधुर भजन का।

0: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: श्रोताओं, कृष्ण की बाल लीलाएं मन को आनंदित करती हैं और उनकी मुरली प्रेम का संदेश देती हैं और उनके उपदेश हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं, जब हृदय में कृष्ण का नाम बस जाता है तो जीवन की साधारण सी धुन भी भक्ति का संगीत बन जाती है। तो आइए मन में कृष्ण की बांसुरी का स्मरण करते हैं और सुनते हैं मधुर कृष्ण भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। मैं आदित्य निगम आपसे लेती हूँ अनुमति। पुनः होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

FM 102.5 MHz साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप हमें सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी आदित्य निगम। श्रोताओं, वक्त हो गया है फिल्मी बातें प्रोग्राम का। तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत फिल्म की जिसका नाम है सिलसिला। साल 1981 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन किया था यश चोपड़ा ने। फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा, जया बच्चन ने अपने शानदार अभिनय से कहानी को यादगार बना दिया। वहीं संजीव कपूर और शशि कपूर जैसे दिग्गज कलाकार भी इस फिल्म में मौजूद रहे। फिल्म को और भी खास बनाया इस फिल्म के खूबसूरत से संगीत ने। आगे और जानेंगे, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

कहानी में नहीं बल्कि इसके संगीत में छिपी है। शिव हरि का संगीत और जावेद अख्तर के गीतों ने इस फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई दी। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। श्रोताओं, इस गीत की फिल्मांकन शैली में फूलों और प्राकृतिक सुंदरता का ऐसा तालमेल हुआ कि ये हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार रोमांटिक गीतों में शामिल हो गया। श्रोताओं, इस गाने में अमिताभ बच्चन और रेखा की केमिस्ट्री और साथ ही कश्मीर की खूबसूरत वादियां और फूलों से सजे दृश्य दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। तो चलिए प्यार के इसी सपने को संगीत में महसूस करते हैं।

0: बाइक में नॉकिंग कम है।
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
2: श्रोताओं, कितना खूबसूरत एहसास है ना, जब इंसान किसी खास के साथ चलते चलते खुद से ही सवाल करने लगता है कि आखिर हम कहाँ आ गए। मोहब्बत की राह हमेशा आसान नहीं होती। कभी रास्ते में फूल सजे होते हैं तो कभी कांटे, कभी दिल में अनगिनत सवाल उठते हैं। फिल्म सिलसिला का ये खूबसूरत सा गाना कुछ ऐसे ही गहरे एहसासों को भीतर समेटे हुए हैं। अमिताभ बच्चन की आवाज़ में सुनाई देने वाली काव्यात्मक पंक्तियाँ इस गाने को और भी मधुर कर देती हैं। श्रोताओं, कभी कभी रात का सन्नाटा भी बहुत कुछ कहता है। चांदनी रात, ठंडी हवाएं और आसमान में बिखरे सितारे, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी प्रेम की कहानी का हिस्सा बन गई हो। अब जो गाना आप सुनेंगे उसमें आवाज़ अमिताभ बच्चन की है। इस गाने की खासियत है इसका शांत, काव्यात्मक और सप्रिल वातावरण, जहां दूसरे रोमांटिक गाने अपनी धुन और चंचलता से मन को मोह लेते थे, वहीं इस गाने की सादगी और ठहराव ने दिल में सभी के जगह बनाई है। आइए महसूस करते हैं इस प्यारे से गाने के एहसास को।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: श्रोताओं, सिलसिला फिल्म कहानी से ज्यादा अपनी कास्टिंग और असल जिंदगी के रिश्तों के कारण चर्चा में रही। यश चोपड़ा पहले इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी को कास्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि इस लव ट्रायंगल की कहानी के लिए एक चौंकाने वाली रियल कास्ट चाहिए। फिर यश चोपड़ा ने अमिताभ से बात की और उन्हें मनाया कि वे असल जिंदगी में इस त्रिकोणीय रिश्ते को पर्दे पर उतारे। अमिताभ के हामी भरने के बाद जया बच्चन और रेखा इस फिल्म के लिए राजी हो गए। आगे और भी बातें करेंगे, मगर अभी सुनते हैं सिलसिला फिल्म का एक और सुपरहिट गाना।

रंग बरस से अभी आप जो गाना सुन रहे हैं, इस फिल्म को अमिताभ बच्चन ने ही इस गाने में अपनी आवाज़ दी है। इस गाने की खास बात यह है कि ये लोक गीतों जैसे अंदाज में गाया गया है। इस गाने के बोल हरिवंश राय बच्चन की पारंपरिक होली गीत शैली से जुड़े हैं।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
1: श्रोताओं, फिल्म सिलसिला सिनेमाघरों में फ्लॉप फिल्म साबित हुई, लेकिन समय के साथ इसके शानदार संगीत और बोल्ड कहानी के कारण इसे कल्ट क्लासिक का दर्जा मिला। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और खूबसूरत और मधुर सा गाना।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
1: जरा सोचिए, जब किसी की अदा इतनी निराली हो कि उसे देखकर दिल खुद ही सवाल करने लगे, आखिर ये लड़की है या शोला। जी हाँ दोस्तों, यही शरारत, यही मस्ती, यही चुलबुलापन समाया है इस गीत में। इस गीत को अपनी दिलकश आवाज दी है किशोर कुमार ने और संगीत से सजाया है महान संगीतकार शिव हरि की जोड़ी ने। आइए सुनते हैं सिलसिला फिल्म का एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। कुछ कहानियां पर्दे पर खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनके किरदार, उनके एहसास हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। फिल्म सिलसिला हमें याद दिलाती है, कुछ गीत ऐसी धुन बनाए जाते हैं जो दिलों में समा जाते हैं। वे अपने समय की भावनाओं, यादों और कहानियों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। फिल्मी बातों से भरे इस कार्यक्रम को मैं देती हूँ यही विराम। मैं आदित्य निगम आपसे लेती हूँ अनुमति, मगर आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है और मैं हूँ आपके साथ अदिति निगम। नमस्कार श्रोताओं, अब वक्त है उज्जैन डायरी का, जिसमें आपको मिलेगी सप्ताह भर की मुख्य गतिविधियाँ, तो बने रहिए हमारे साथ। श्रोता, युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए उचित मार्गदर्शन जरूरी है। इसी दिशा में उज्जैन में 7 अक्टूबर को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माध्यमिक कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय परिसर में आयोजित मेले में 14 कंपनियों के 380 रिक्त पदों के लिए 515 युवक युवतियों ने पंजीयन कराया। इनमें से 328 युवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ, जबकि IIT के माध्यम से 19 युवाओं को अवसर मिले। इसके अलावा 128 आवेदकों को करियर मार्गदर्शन दिया गया। तो आइए उम्मीदों और नए सफर को यहीं और आगे जारी रखेंगे। सुनते हैं प्यारा सा गाना।

यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई।

0: और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: श्रोताओं, उज्जैन जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 7 अक्टूबर को योग एवं ध्यान सत्र आयोजित किए गए। जिला आयुष विभाग की 35 संस्थाओं के माध्यम से जिले के 6 विकास खंडों में कुल 13,882 नागरिकों, विद्यार्थियों और छात्राओं ने इन सत्रों में सहभागिता की। योगाभ्यास के साथ अष्टांग योग के विभिन्न अंगों और नियमित अभ्यास के महत्व की जानकारी भी दी गई। प्रतिभागियों ने योग एवं आयुर्वेद को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। याद रखिए, स्वस्थ जीवन की शुरुआत छोटे छोटे सकारात्मक प्रयासों से होती है। इसी सकारात्मकता के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
1: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: श्रोताओं, उज्जैन जिले में 8 अक्टूबर को टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जोश यानी ज्वाइंट स्कॉट फॉर हेल्थ टीम का शुभारंभ किया गया। शासकीय धन्वंतरी अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में टीम के स्वयं सेवकों को टीबी उन्मूलन के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही 8 अक्टूबर को सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। उज्जैन शहर के महाकाल मंदिर, काल भैरव मंदिर परिसर, रेलवे स्टेशन, नानाखेड़ा बस स्टैंड और फ्रीगंज स्थित टावर चौक पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। और इसी के साथ आगे की जानकारियां भी जारी रहेंगी, मगर उससे पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा गाना।

0: बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: श्रोताओं, जन्म और मृत्यु का पंजीयन नागरिक जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है। जन्म प्रमाण पत्र शिक्षा, पहचान और विभिन्न शासकीय कार्यों में उपयोगी होता है। वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र भी अनेक आवश्यक औपचारिकताओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन घटनाओं का समय पर पंजीयन और रजिस्ट्रेशन जरूरी है। भारत सरकार द्वारा पारित जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन अधिनियम 2026 के प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। उज्जैन जिला प्रशासन के अनुसार घटना के एक वर्ष बाद लेकिन 2 वर्ष के भीतर पंजीयन कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट अथवा अधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। नहीं 2 वर्ष से अधिक विलंब होने पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही पंजीयन किया जा सकेगा। प्रशासन ने संबंधित विभागों को इन प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नागरिक जागरूकता और जिम्मेदारी के इसी संदेश के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, 9 अक्टूबर को कलर्स ऑफ साइंस 3.0 विज्ञान बाजार का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित किसान कल्याण के लिए विज्ञान पर आधारित इस आयोजन में 25 फूड स्टॉल, 15 BIC स्टॉल और 16 विज्ञान परियोजनाएं आकर्षण का केंद्र रहीं। इसी के साथ देश विभिन्न हिस्सों में स्थित शक्ति पीठ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इन्हीं आध्यात्मिक परंपराओं को व्यापक रूप देने की परिकल्पना के साथ 51 शक्ति पीठों पर आधारित शक्ति धाम प्रकल्प पर उज्जैन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसका समापन 9 अक्टूबर को हुआ। जानकारियां आगे जारी रहेंगी मगर इस गाने के बाद।

श्रोताओं, बदलते समय के साथ करियर की परिभाषा भी व्यापक हो रही है। आज सफलता का रास्ता केवल पारंपरिक नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित नहीं।

अपनी रुचि, योग्यता और कौशल को पहचानकर उद्यमिता और नए व्यवसाय के माध्यम से भी आगे बढ़ा जा सकता है। इसी विषय पर उज्जैन के शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय में 10 अक्टूबर को करियर बियॉन्ड कन्वेंशनल जॉब्स विषय पर जिला स्तरीय करियर काउंसलिंग कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा, वित्तीय नियोजन और हरित रोजगार जैसे उभरते क्षेत्रों की संभावनाओं से परिचित करवाया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि शिक्षा ज्ञान देती है, कौशल उसे कार्य रूप देता है और नवाचार नए अवसर पैदा करता है। छोटे स्तर से शुरुआत करके ही सफल उद्यम खड़ा किया जा सकता है। इसी के साथ उज्जैन की पहचान यहाँ की प्राचीन धार्मिक परंपराओं, मंदिर और श्रद्धा से जुड़े आयोजनों से है। यहाँ प्रत्येक उत्सव अपनी सांस्कृतिक विरासत को जन आस्था की विशेष छाप छोड़ता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित उमा सांझी महोत्सव के अंतर्गत 12 अक्टूबर को वर्ष में एक बार निकलने वाली श्री उमा माता की सवारी राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकली। मंदिर के सभा मंडप से पूजन के बाद पालकी रवाना हुई। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल ने माता को सलामी दी। सवारी महाकाल चौराहा, महाकाल घाटी, दौलतगंज, नई सड़क, कंठाल, सराफा, छत्री चौक और गोपाल मंदिर सहित शहर के पारंपरिक मार्गों से होती हुई शिप्रा तट पहुंची। यहां जवारे और संजा का पूजन कर विसर्जन किया गया, जिसके बाद सवारी वापस मंदिर लौटी। श्रद्धालुओं ने मार्ग में माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आस्था, परंपरा और भक्ति के इस सुंदर भाव के साथ आइए सुनते हैं एक और मधुर गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, उज्जैन डायरी में साप्ताहिक गतिविधियों की जानकारी अभी आपने सुनी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मैं आदित्य निगम आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
4: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
3: सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के घर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। उन्होंने कहा कि अब वो जमीनी स्तर पर लौटना चाहते हैं और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए समय देना चाहते हैं। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों

0: नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को जागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इनकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हविलचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नॉड मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। हालांकि लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नात्सुकी निदेरा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अदिति निगम, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज, ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आपको आज रात साथ ही कल तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 7:10 पर। मालवी समाचार आप सुनेंगे 7:21 पर। 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल से आप सुन सकेंगे। रात 8 आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। 8:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। रात 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात 9 आप सुनेंगे News8 9। 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू समाचार। 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम कहकशा। फिल्म संगीत भोपाल से रिले किया जाएगा रात 10:00। 10:30 पर आप सुनेंगे राग रचनी कार्यक्रम। रात 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का रिले किया जाएगा। रात 11:10 पर आप सुन सकेंगे FM गोल्ड दिल्ली से प्रसारण।

कार्यक्रमों की जानकारी। अब हम सुनेंगे कल दिन भर साथ ही रात तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 5:50 पर आप सुनेंगे संकेत धुन। वंदे मातरम आरंभिक उद्घोषणा आप सुन सकेंगे 5:52 पर। सुबह 6:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार चिंतन। 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कान। संगीत सरिता आप सुन सकेंगे 6:45 पर। सुबह 7:00 आप सुनेंगे महाकाल वंदन। 7:05 पर कार्यक्रम विवरण किया जाएगा। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे। 7:20 पर आप सुनेंगे सुप्रभात उज्जैन। सुबह 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। उज्जैनी आरजे आप सुनेंगे 8:30 पर। सुबह 9:00 आप सुनेंगे संस्कृति के स्वर। 9:30 पर आप सुनेंगे बॉलीवुड बीट्स। सुबह 10:00 आप सुनेंगे उज्जैन दर्शन। 10:30 पर महिला सभा का कार्यक्रम रिले किया जाएगा। सुबह 11:00 आप सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे हिंदी न्यूज बुलेटिन। 12:05 पर आप सुनेंगे यादों की महफिल कार्यक्रम। दोपहर 1:00 आप सुनेंगे सुरीला सफर। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 2:00। 2:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 2:15 पर दोपहर समाचार का रिले किया जाएगा। 2:30 पर सदाबहार नगमे फिल्मी गीत का रिले होगा। दोपहर 3:00 आप सुनेंगे सखी सहेली कार्यक्रम। दोपहर 4:00 आप सुनेंगे आज के मेहमान। शाम 5:00 आप सुनेंगे युववाणी। शाम 5:30 पर फिल्मी बातें रिले किया जाएगा। शाम 6:00 आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 6:30 पर। दिल्ली से समाचार का रिले किया जाएगा शाम 7:00। अभी आपने सुनी आज रात साथ ही कल शाम तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। नमस्कार।

0: अब आप जल्द ही प्रादेशिक समाचार सुनेंगे विविध भारती भोपाल केंद्र से। नमस्कार।
1: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
3: घर से ही गीला सूखा सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
2: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
3: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
2: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
3: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
2: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
3: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को किया संबोधित, कहा देश में स्टार्टअप की संख्या 2.5 लाख से ज्यादा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल जारी करेंगे लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मैहर में मां शारदा के किए दर्शन, कहा महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया

0: जाएगा मां शारदा धाम, और कुछ ही देर में खंडवा में अभिनेता रघुवीर यादव को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी, डेटा और नवाचार का इस्तेमाल लोगों को सशक्त बनाने के लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी डिजिटल क्षमता और तकनीक के जरिए देश के साथ दुनिया के लिए भी नए अवसर तैयार कर रहा है। श्री मोदी ने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2.5 लाख से ज्यादा हो गई है और करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से हैं।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के मुताबिक भारत की जीडीपी में 2026 और 2027 में 7% की वृद्धि हो सकती है। उन्होंने इसे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती और बढ़ती संभावनाओं का संकेत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश को बढ़ावा देने से विकास के नए अवसर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल उमरिया जिले के गुरुवाही गांव में लाडी बहना योजना की 41वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं के खातों में 1500 रुपये प्रति महिला के हिसाब से राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जिले में 136 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे, जिनकी कुल लागत करीब 140 करोड़ रुपये है। इनमें 68 कार्यों का लोकार्पण और 68 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शारदीय नवरात्रि पर मैहर स्थित मां शारदा धाम पहुंचकर दर्शन पूजन और आरती की। उन्होंने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और हवन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मैहर प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि मां शारदा धाम में उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर विकास कार्य किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि
3: मैहर को जिला बनाया गया है और जिले बनने से बहुत सारे विकास के द्वार खुल जाते हैं। शारदा माई लोक के निर्माण की आधारशिला मुख्यमंत्री जी ने रखी है और आने वाले दिनों में इसका उसी प्रकार से विकास होगा जैसे बाबा महाकाल लोक का हुआ है और अन्य धार्मिक स्थलों के।
0: प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और मंत्री राधा सिंह ने आज भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की जन समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इनके निराकरण के निर्देश दिए। जिन मामलों में विभागीय कार्रवाई की आवश्यकता थी उन्हें संबंधित विभागों को भेजा गया। अब से कुछ ही देर में खंडवा में आज अभिनेता रघुवीर यादव को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित इस 2 दिवसीय समारोह में उन्हें उनके अभिनय क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान समारोह के बाद गायक सुदेश भोसले और उनके साथी गीत संगीत की प्रस्तुति भी देंगे। राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित सेवा सदन कार्यालय में आज राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने नवनियुक्त चिकित्सकों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की। उन्होंने डॉक्टरों से मरीजों को समय पर परामर्श, जांच और उचित उपचार करने के लिए कहा। बैठक में चिकित्सकों ने स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध संसाधनों, दवाइयों और अन्य समस्याओं की जानकारी दी। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण और स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अभियान में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि पहली बार मतदान करने वाले युवा और अन्य पात्र नागरिक फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। आवेदन के साथ अलग से घोषणा पत्र देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का दौर फिलहाल जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 और 16 अक्टूबर को ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के 9 जिलों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।

हालांकि आज और कल मौसम साफ रहने का अनुमान है। भोपाल और इंदौर समेत कई शहरों में दिन में गर्मी और रात में ठंडक बनी रहेगी। इस बार प्रदेश में मानसून के दौरान सामान्य से करीब 4% कम बारिश दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ जिले के युवाओं को

के नवीन लाइसेंस और लाइसेंस नवीनीकरण के लिए इच्छुक आवेदक 15 से 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीहोर में 28 अक्टूबर को जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय बाल अधिकार शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया जाएगा। देवास जिले के कन्नौद विकासखंड के ग्राम कुसमानिया में 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर का आयोजन किया जाएगा और अशोकनगर में जिला न्यायालय परिसर में आज आयुर्वेदिक स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि वितरण शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को किया संबोधित, कहा देश में स्टार्टअप की संख्या 2.5 लाख से है ज्यादा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल जारी करेंगे लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मैहर में मां शारदा के किए दर्शन, कहा महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया जाएगा मां शारदा धाम। और कुछ ही देर में खंडवा में अभिनेता रघुवीर यादव को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार, FM 102.5 MHz पे उका साथे न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर थम सब सुनी रहा हो अपना आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र के। तो रब नमस्कार के साथ राम राम हमारा किसान साथियों, टेम है अपनी किसान वाणी किसान संबंधित कार्यक्रम ग्राम सभा को। तो एक बार फिर थम सबको यो तुम्हारो भाई सुमित कुमार स्वागत करे, वंदन करे, उका साथे घणो घणो अभिनंदन करे। मैं आशा करूँ कि थम सब चकाचक होगा और अभी सीजन भी चली रहो चकाचक होने को, तो थम सब ऐसे ही चकाचक रहना है क्योंकि त्यौहार को सीजन चली रहो, त्यौहार में कितरो जरूरी है चकाचक रहना, यह बात तुम्हारे अच्छे तरीके से जानो हो तुम। आज की बात करा तिथि की, तो आज अपना अश्विनी शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि वही गई है और एक यूँ समझो कि अपना जो नवरात्र चली रहा उन्हीं को तीसरो दिन है आज। और नवरात्रा को अपना जीवन में कितरो अपना जो दैनिक जीवन में कितरो महत्व रहे यो थम सब अच्छो भली भांति जानो हो, क्योंकि हमारे मालूम है कि नवरात्रा माँ का आराधना का दिन हुई है, जिसमें अपन 9 दिन तक माँ का आराधना करा, माँ की पूजा करा, माँ का लिए गरबा पंडाल में गरबा करा और एक ती एक काम करा। उसका बात है जो अभी जो समय चल रही हो अभी व्यस्तता वाला चल रही हो, क्योंकि किसान लई देने लगे हो अंतर है रबी की फसल बोने में, जो खरीफ की फसल से खेत से फ्री हुआ है अब उन खेत के समेटने में, खेत में से अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकालने में, उनके अखने हाँकने में, उनके जोतने में, उनकी फिर बुआई करने में, रेलवा में, उनका साथ घन सारा किसान का जो घन सारा काम रहे उनमें भी लगे अंतर है। इकाले किसान के तो बिल्कुल भी व्यस्तता, किसान की व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि उनके तो बिल्कुल भी समय ये नहीं है कि थोड़ा सो इन त्यौहारों पर ध्यान देला, पर ऐसा नहीं है। त्यौहार को सीजन चली रहो है, नवरात्रि, नवरात्रि के बाद दिवाली, दिवाली के बाद ब्याह शादी चालू हो जाएगा, तो अभी जो ये आने वाला समय है ये सबका लिए व्यस्तता वालों जुड़ने वालों है सबके एक ती एक घन सारा काम करना है। मैं तो आज अपन जो आज अपनों कार्यक्रम है उमें अपन सुनाएंगे मुख्य रूप से मालवी समाचार, क्योंकि भी बहुत जरूरी हुई है, क्योंकि अपना आसपास कहीं चली रहो, अपना एरे मेरे कहीं चली रहो, अपना देश प्रदेश में कहीं चली रहो, यह जानकारी अपन सबके होनी बहुत जरूरी हुई है। तो आओ पहला सुना अपन अपना मालवी समाचार।

आकाशवाणी उज्जैन से प्रस्तुत है मालवी समाचार। नमस्कार, समाचार का साथ मूँ हमारो भाई सुमित कुमार। सबसे पहला अपने बुलेटिन का मुख्य समाचार सुन ला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल उमरिया जिला का गुरवाही में लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी करेगा। उसके बाद प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म भरने की 6 प्रक्रिया जारी करी गई है। उसके बाद नीमच का बर्डिया गांव पंचायत में कल जिला विविध सेवा

प्राधिकरण और निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाए गए थे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल उमरिया जिला का गुरवाही गांव में गुरवाही में लाडवली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी करेगा। अपनी बहना होते बहुत बधाई वाला संदेश है यो। इनमें प्रदेश का करीब 125 करोड़ पात्र महिलाओं का खाता में 1500 रुपया का हिसाबती राशि पहुंचेगा। इन्हीं दौरान मुख्यमंत्री 144 करोड़ रुपया की राशि अधिक का 136 विकास कार्यों को लोकार्पण भी करेगा और भूमि पूजन भी करेगा। इनमें 68 कार्यों को लोकार्पण और 68 कार्यों को भूमि पूजन शामिल है। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश का पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त करियो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई देता हुआ बोलियो है कि उनका अनुभव से उत्तराखंड की प्रगति के फायदों मिलेगा। डॉक्टर बिसेन सिवनी जिला का रहने वाला है और 4 बार विधायक रह चुके हैं। उन्हें 2003-2005 तक प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का रूप में काम भी करियो है। वे 2019 में बालाघाट का सांसद चुना गया था और 2024 तक अणिपत पर रहा है। उसके बाद इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक निजी होटल को शुभारंभ करियो। अणी मौका पे उन्होंने बोलियो है कि प्रदेश में पर्यटन बढ़ने से रोजगार का नया अवसर मिल गया है। वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ का कारण इंदौर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ेगी। अणिति होटल व्यापार और आर्थिक गतिविधियां के बढ़ावा भी मिलेगा। थोड़ी की देर में खंडवा में आज अभिनेता रघुवीर यादव के राष्ट्रीय किशोर गोसा कुमार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित 2 दिवसीय समारोह में उन्हें अभिनय का क्षेत्र में योगदान का लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। कार्यक्रम पुलिस ग्राउंड में शुरू हो चुकी है। सम्मान समारोह का बाद गायक सुदेश भोंसले और उनका साथी गीत संगीत की प्रस्तुति भी देगा। भोपाल में आयोजित MP ऑनलाइन आइडिया एंड इनोवेशन हेकाथॉन का समापन समारोह में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने बोलियो है कि युवाओं का उद्योगपति और निवेशकों से जुड़ना चाहिए। उन्हें स्टार्टअप शुरू करने और दूसरा रोजगार देने का अवसर मिलेगा। 2 दिवसीय होएकाथान में देश भर का 100,000 से ज़्यादा विद्यार्थी और 300 से अधिक टीम ने हिस्सा लियो। प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म 6 भरने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा का मुताबिक 1 अक्टूबर तक अब तक प्रदेश में करीब 4 लाख फार्म 6 जमा हो चुका है। इनमें 18 से 19 साल का युवा का करीब 1,92,000 फार्म शामिल है। पात्र नागरिकों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में अलग अलग जगह शिविर लगाया गया है। इन शिविर का जरिए लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है। अब बात करें मौसम की तो अब मौसम प्रदेश में मानसून की विदाई का बाद भी बारिश को दौर जारी है। मौसम विभाग का मुताबिक 15-16 अक्टूबर के ग्वालियर चंबल और सागर संभाग का 9 जिला में आंधी तूफान गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि आज और कल मौसम साफ रहने को अनुमान है। भोपाल और इंदौर समेत कई शहर में दिन में गर्मी और रात में ठंडक बनी रहेगा। इन्हीं बार प्रदेश में मानसून का दौरान सामान्य से करीब 4% कम बारिश दर्ज हुई है। नीमच का बर्डिया ग्राम पंचायत में कल जिला विविध सेवा प्राधिकरण और निःशुल्क नेत्र जाँच शिविर लगाए गए थे। गोमाबाई नेत्रालय की टीम ने 124 की आँख की जाँच करी, जिनमें 16 लोग का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित करे गए और 27 लोग के मुक्त चश्मा दिया गया है। बात करें आगरमालवा की तो आगरमालवा का कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा ने TL बैठक में CM हेल्पलाइन की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने वाला L1 अधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटने का नोटिस जारी कर दिया है। झाबुआ कलेक्टर का योगेश तुकाराम भरसठ ने आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम का तहत 4 विकासखंड में 38 संकेतकों की समीक्षा करने विभागों के लक्ष्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। मंदसौर कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने 3 औषधीय फसल क्लस्टरों में 12 हेक्टर से अधिक क्षेत्र में खेती के बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। वहां दूसरी तरफ जिला में सड़क सुरक्षा बैठक में अनाधिकृत कट हटाने वाला ओवरलोड वाहन का कार्रवाई और ब्लैक स्पॉट सुधारने को बोलियो गयो है। एक बार फिर अन्य बुलेटिन का मुख्य समाचार सुनो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल उमरिया जिला का गुरवाही में लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी करेगा। उसके बाद प्रदेश में मतदाता सूची का नाम जुड़वाने के लिए फार्म 6 भरने की प्रक्रिया जारी है। और नीमच का बर्डिया ग्राम पंचायत में कल जिला विविध सेवा प्राधिकरण और निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाएगी। तो श्रोताओं, ये था अपना आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र की आज का मुख्य मालवी समाचार।

0: तो बात करें आप रबी की फसल की तैयारी की, तो देखो रबी की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें एक बार अगर किसान लगी गयो तो फिर लगातार काम पे काम आतो जाए, क्योंकि पहले वो आंखेगा, जैसे ही सोयाबीन की फसल से निपटेगा वो आंखेगा, फिर उसमें बोएगा, उसके बाद पानी चालू हो जाएगा, उसके बाद खातर, फिर रोज पाणत करनी, मतलब किसान की अभी व्यस्तता इतनी खतरनाक रहने वाली है कि ऐसा समय में अगर कोई अर्जेंट में इन्हें बोल दे कि अपने भाई वहाँ चलना है यार, एक जगह परगाम चलना है यार, तो किसान तो हाथ जोड़ लेगा कि दादा हमारा घर पाणत चली रही है, एक जरा सो भी टेप नहीं मांगने कि मैं थोड़ा साथ चलूँ। तो ऐसी रहे किसान की स्थिति अभी हाल का दिन में, क्योंकि कहीं है नहीं, रबी की तैयारी, रबी की फसल की तैयारी जैसी चीज़ है जिसमें किसान मन तन मन धन तिनित लगी जाए, क्योंकि अगर किसान पूरा कहीं ना कहीं खेती पे आश्रित रहे और ऐसा में अगर खेती सही साठ नहीं होगा, ये फसल सही साठ नहीं बो पाएगा, तो किसान कैसे कहीं करेगा। तो आजकल इतरोज घुणो सुनो आप अगलो प्रोग्राम।
1: ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल से। आप जल्द ही सुनेंगे प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। किसान साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम के सभी हमारे सुनबे वारे किसान भैया हरों को दद्दाई हरों प्यारे प्यारे बाल गोपालों को खूब स्वागत आपके अपने कार्यक्रम में। तो सबसे पहले स्वीकार करें अपनी रानी बहन की दोई हाथ जोड़ के राम राम जय सीताराम भैया हरों। उम्मीद करत है कि आप सभी जने खूब अच्छे हुई हैं स्वस्थ हुई हैं। भैया हरों देखो मैया के दिन चल रहे हैं घर घर में माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं पंडाल सजे हैं मैया विराजी हैं और भक्ति भावना में पूरे दिन निकल रहा है। पता ही नहीं चले कि कब दिन भाव और कब संध्या हो गई। हवन पूजन की सुगंध से घर आंगन महक रहे हैं सकारे की आरती और जवारे चढ़त देखत भय कितो अच्छो लग रहो है। तो सबसे पहले मैया के चरणों में शीश नवाए और बोले जय माता दी। लेकिन भैया हरो त्योहारन की खुशी के संगे संगे अगर आप व्रत रख रहे हैं भैया हरो तो अपने सेहत के हिसाब से फलाहार जरूर करें पानी की

0: कमी नहीं होने दें, और शरीर की अगर कमजोरी महसूस होते भैया तो ओको पूरो पूरो ध्यान सोई धरने हैं। अब भैया हरो देखो, किसानी खेती के जो काम है वे अब बदल रहे हैं, जमाना भी धीरे धीरे बदल रहा है, खेती में भी नई नई तकनीक आ गई है। अब मोबाइल फोन की बात करें तो देखो, मोबाइल फोन किसानों के लाने जानकारी पावे को एक बहुत ही बढ़िया साधन भी बन गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपन के मिलत है किसान सारथी ऐप। तो किसान भैया हरो, किसान सारथी ऐप है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डिजिटल पहल से जुड़ो एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पहल को मकसद यही है कि किसानन तक खेती किसानी की सही और उपयोगी जानकारी पहुंच सके। तो भैया हरो, फसल में बीमारी लगे, कीड़ा लगे तो कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेवे में मदद मिल सकत है अपन के। मौसम की जानकारी, खेती की नई तकनीक की जानकारी, फसल उत्पादन से जुड़ी जानकारी, बुआई से लेके कटाई तकन उन्नत खेती और कृषि संबंधी सलाह की जानकारी भी अपन के किसान सारथी ऐप से मिल सकते है। अच्छी बात जा है भैया कि हिंदी सहित एमए और अनेक स्थानीय भाषाओं में भी कृषि की जानकारी उपलब्ध होते। तो भैया हरो, अगर आपके जरा भी लगा थे कि आपकी कोई सलाह की जरूरत है तो आप अपने किसान सारथी ऐप की मदद ले सकत हैं। एक और बात भैया हरो, आप और उनसे साझा करने हती कि हमारे किसान भैया दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लाने, देश के लाने अन्न उपजात है, उत्पादन करत हैं, उनके लाने भी तो एक योजना होने चाहिए। हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की। भैया हरो, रेहड़ी पटरी लगावे वाले जो हमारे भैया हरे हैं, रिक्शा चलावे वाले हैं, निर्माण करवे वाले मजदूर हैं, घरेलू कामकाज करवे वाले असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, उनके लाने यह बहुत ही महत्वपूर्ण पेंशन योजना है। जय योजना के अनुसार जो श्रमिक है हमारे किसान भैया हरे, वे अपनी उम्र के हिसाब से हर महीना एक निर्धारित अंशदान जमा कर सकते हैं। केंद्र सरकार भी निर्धारित नियमों के अनुसार बराबर को अंशदान जमा करत है। योजना की प्रमुख बात क्या है भैया कि पात्रता 18 से 40 वर्ष तक के बीच की है और मासिक आय 15,000 रुपया तक इनमें होने चाहिए। तो भैया हरो, आप और जरूर बिल्कुल जय योजना को लाभ उठाइयो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की। किसान भैया हरो, कई बार अगली फसल की तैयारी जल्दी करवे के चक्कर में किसान भैया हरे खेत में पराली जला देते हैं भैया, जो तरीका बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। फसल अवशेषों को सही प्रबंधन कैसे हो, जैया महत्वपूर्ण विषय पर सुनत है अपन जब भेंट वार्ता वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिलीप जाट से।
1: भाइयों बहनों, फसलों की बुवाई के बाद हमारे खेतों में हमें पराली या फसलों के अवशेष मिलते हैं। यदि हम इसका सही प्रबंधन करते हैं तो ये हमारी अतिरिक्त आय बढ़ाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे कई कृषक भाई बहन इन पराली को या इन फसल अवशेषों को जलाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा हमारी मृदा को हानि होती है। तो हम इस हानि लेने की अपेक्षा लाभ क्यों ना लें, तो आइए चर्चा करते हैं पराली और फसल अवशेष प्रबंधन पर। इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर दिलीप जाट जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में। सर, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी। सर, हम चर्चा कर रहे हैं पराली या फसल अवशेष प्रबंधन पर, तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं?
2: पराली एवं फसल अवशेष प्रबंधन दो, वैसे देखा जाए तो ये खेतों से प्राप्त होने वाले ऐसे अवशेष हैं जिनको सामान्यतः किसान जो है उसको अनुपयोगी समझता है
1: जी।
2: परंतु इनका उपयोग अगर सही तरीके से किया जाए तो उससे अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकती है, मिट्टी की सेहत भी सुधारी जा सकती है। साथ ही साथ अगर पराली को आपने मिट्टी में ही अगर मिक्स कर दिया, उसी के साथ मिला दिया तो इसके माध्यम से आप अगर आप सिंचाई करते हैं तो आपकी जल का जो क्षमता होती है मिट्टी की, वो जल धारण क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पराली या फसल अवशेष कहा जाए तो ये खेतों से फसल से प्राप्त होने वाला अवशेष ही है जिसका हम सही माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारा जो दोनों जो शब्द है उन्हीं अवशेषों के लिए उपयोग किया गया है, परंतु ये एक ही मकसद है हमारा कि इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए, किसान इसको खेत में ना जलाए, इसका उचित प्रबंधन करे जिससे कि उसकी लागत कम हो, उत्पादन लागत कम हो तथा इससे अधिक आय भी प्राप्त की जा सके।
1: सर, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि हमें इसे जलाना नहीं है, लेकिन हमारे किसान फिर भी इसे जलाते हैं। क्यों जलाते हैं सर?
2: इसको जलाने का एक प्रमुख कारण ये है कि एक तो हमें फसल की कटाई के बाद जो अगले फसल की बुआई करनी है उसके लिए एक सीमित समय मिलता है, उस कम समय में ही उसे पुनः किसान भाइयों को अपना खेत तैयार करना है। तो सबसे सामान्य तरीका किसान भाइयों के लिए यही समझ में आता है कि वो फसल को जला के अगली फसल को बुआई के लिए खेत को तैयार करें। दूसरा, इन पराली या फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए जो कृषि यंत्र है उनकी लागत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उनकी लागत अधिक होगी तो किसान भाई किसी ऐसे समाधान की ओर जाएंगे जो कम लागत में किसान भाइयों को मिल जाए। किसान भाइयों को कई ऐसे यंत्र है जो कम लागत में भी उपलब्ध है, उसकी जानकारी

0: खासकर हमारे छोटे किसान भाई या सीमांत किसान हैं, उनके लिए भी ये यंत्र उनको अधिक लागत के लगते हैं, तो उसके लिए भी सरकार की कई योजनाएं हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर है, उनके माध्यम से छोटे किसान भी इन यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो खासकर देखा जाए तो इन सब जानकारी का अभाव होना, इसकी वजह से ही किसान भाई जो है अपने इस पराली को खेतों में जलाते हैं।
1: सर ये बताइए कि पराली जलाने के स्थान पर हमारे भाई बहन कौन कौन से वैज्ञानिक विकल्प अपना सकते हैं जिससे कि उन्हें लाभ हो?
0: एक तो वैज्ञानिक तरीका ये हुआ कि आप उसे मिट्टी में सही तरीके से मिला दें। दूसरा तरीका ये होगा कि अगर आप यंत्रों का उपयोग नहीं करना चाहें तो कई ऐसे केमिकल्स भी होते हैं, जैसे पूसा नई दिल्ली ने एक विकसित किया है, उसका अगर डिकम्पोजर का अपन उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग करके भी उसको कम समय में, उसमें 15 से 20 दिन की जो अवधि मिलती है किसान भाइयों को एक फसल से दूसरी फसल के बीच में, तो इस अवधि में डिकम्पोजर का छिड़काव अगर करते हैं तो वो भी मिट्टी में सामान्य तरीके से विघटित हो जाते हैं। तो ये दो तरीके ऐसे हो गए, या तो उनको यांत्रिक तरीके से मिट्टी में मिला दे या डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर लें, इनका इस्तेमाल करके वो इनको वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है।
1: बिल्कुल सर, चर्चा के दौरान आपने कहा कि हम यंत्रों का उपयोग करके भी ये पराली का प्रबंधन कर सकते हैं, तो
0: जी
1: सर कौन कौन से यंत्र हैं जिनका उपयोग हमारे कृषक भाई बहन करें?
0: कई प्रकार के यंत्र होते हैं, जैसे हमें बुआई के समय अगर पराली का प्रबंधन करना है,
1: जी
0: जैसे पिछली फसल की हमारी कटाई हुई, हम अगर किसान भाई चाहें कि उसी पराली के साथ वो अगली फसल की बुआई करें तो उसके लिए जीरो टिल ड्रिल एक मशीन होती है, परंतु इसके लिए कुछ मात्रा पराली की या फसल अवशेष की जो है उसको हमें खेतों से हटाना होता है, तो हटाने के लिए हम बेलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रा रिपर भी एक यंत्र होता है जिससे हटा के हम भूसा बना सकते हैं। साथ ही साथ ये बुआई के समय अगर प्रबंधन करना है तो हैप्पी सीडर एक यंत्र होता है जिसमें आपका फसल अवशेष खेत में ही रहेगा, उसी अवस्था में आप नई फसल की बुआई कर सकते हैं।
1: अच्छा, ये तो एक
0: तो
1: अच्छी बात है सर।
0: ये एक बड़ा अच्छा यंत्र है, इसमें खासकर अगर आपका पुआल काफ़ी अधिक मात्रा में है, जैसे धान का सामान्यतः पुआल अधिक होता
1: अधिक
0: है
1: होता है जी।
0: गेहूं के पुआल की तुलना में, तो इसके लिए हैप्पी सीडर एक उपयुक्त यंत्र है। तो बुआई के लिए प्रबंधन अगर करना हो तो जीरो टिल ड्रिल हैप्पी सीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फसल कटाई के बाद आप प्रबंधन करना चाहें तो उसके लिए बेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो भी आपका फसल अवशेष है उसको बेल बना के खेत से बाहर कर सकते हैं। अगर आपका जो पुआल है वो जानवरों के खाने योग्य है तो उसका आप भूसा भी बना सकते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा रीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के उन्नत यंत्र है जिनका इस्तेमाल अगर किसान भाई करेंगे तो पुआल का प्रबंधन बुआई के समय भी कर सकते हैं, फसल की कटाई के बाद भी कर सकते हैं। और भी कई ऐसे यंत्र है जिनका अगर हम जब हम जैसे गेहूं की खासकर कटाई के बाद बहुत सारे दाने खेत में ही रह जाते हैं, तो जब हम एक्स्ट्रा रीपर का इस्तेमाल करते हैं तो वो भूसा तो बनाता है, साथ ही साथ जो दाने खेत में रह गए हैं उसको पुनः दाने में बदल के भूसे के साथ साथ कुछ अनाज की भी हमें प्राप्ति होती है।
1: अरे वाह।
0: तो किसान भाई चाहे तो ये भी एक उनका पुनः एक इनकम का स्रोत हो सकता है। तो इन तरीकों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही किसान भाई अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, एक स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम SMS ये हमने
0: जी
1: सुना है, ये क्या है?
0: स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जैसे प्रातः ये देखा गया है कि कई बार किसान भाई जब कंबाइन हार्वेस्टर से जब खेतों की कटाई होती है तो कटाई होने के बाद सारा जो पुआल या जितना भी फसल अवशेष है वो एक कतारी में मशीन के पीछे गिरता रहता है, तो ये इतना बड़ा ढेर लग जाता है खेतों के बीच में कि अगली फसल की बुआई करना संभव नहीं है।
1: अच्छा।
0: तो सबसे किसान भाई इसी ढेर को जला देते हैं, वो बड़े जल्दी आग भी पकड़ लेता है। तो सरकार ने इस प्रकार के प्रबंधन किए कि मशीन में जहाँ से पीछे फसल के अवशेष गिरते हैं वहाँ पर एक SMS सिस्टम लगाया जाता है जिसके माध्यम से जितना भी पुआल उसके ऊपर आके गिरता है वो समान रूप से खेत में बिखर जाता है। तो
1: अच्छा।
0: इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो एक कतारी में पूरा पुआल आके गिर रहा था या फसल अवशेष गिर रहे थे अब वो समान रूप से खेत में बिखर चुका है, तो उसका बाद में प्रबंधन करना बड़ा आसान होता है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: हाँ।
0: ये जो स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम जो SMS एक सिस्टम है, इसको कंबाइन हार्वेस्टर के साथ खासकर जितनी भी सब्सिडी की स्कीम है गवर्नमेंट की जिसके माध्यम से मशीनें खरीदते हैं उसमें कंपलसरी किया हुआ है, सभी किसान भाई जो भी हार्वेस्टर खरीदेंगे उसमें SMS सिस्टम रहेगा, तो ये इसका एक फायदा है।
1: बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है। सर ये बताइए, बेलर का उपयोग कैसे कर सकते हैं?
0: बेलर का उपयोग भी सामान्यतः धान की फसल के बाद जब पुआल काफ़ी अधिक होता है खेतों में तो बेलर एक यंत्र होता है जो सारे पुआल को इकट्ठा करके उसको उच्च दबाव पे दबाकर एक आयताकार बेल बना देता है। तो सामान्यतः होता यह है कि जितना भी पुआल, पुआल के साथ सबसे बड़ी समस्या है उसके संग्रहण की, तो उसका संग्रहण को कम करने के लिए जितने भी पुआल को वो कंप्रेस करता है दबाता है तो 10 हिस्से को एक हिस्से में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे फायदा क्या होगा, जो आपने बेल बना लिया तो आप संग्रहण के लिए आपको उतनी ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होगी। तो बेलर जो है ये खेत में से पुआल को उठा के सीधा बेल बना देता है, बेल बनाने के बाद उस बेल का उपयोग हम चाहें तो पूरे वर्ष भर अलग अलग

0: मुंह में कर सकते हैं। कई बार पुआल का उपयोग पैकेजिंग वगैरह में होता है, कई बार आपने फलों को देखा होगा कि जब पैकेजिंग की जाती है तो वहाँ पे इसी पुआल का उपयोग होता है। इसी बेल का उपयोग करके बाद में पशुओं को चारा में भी परिवर्तित करके खिलाया जा सकता है,
1: जी
0: तो इसके संग्रहण में बड़ी आसानी हो जाती है, तो यहाँ पे बेलर की उपयोगिता होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अभी जैसे हमने चर्चा की कि भूसा बनाते हैं, तो
0: जी
1: सर फसल अवशेषों से भूसा कैसे बनाया जा सकता है और इसके लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है?
0: फसल अवशेष से खेत में ही भूसा बनाना, एक तो तरीका होता है कि आप सारा फसल अवशेष को इकट्ठा करके खलियान में ला के वहाँ पे भूसा बनाया जाए, परंतु उससे भी आसान होगा कि हमारे पास ऐसे यंत्र हो कि हम खेत में ही भूसा बना सकें, तो इसके लिए स्ट्रा रीपर का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक्टर से चलने वाला एक यंत्र होता है, ट्रैक्टर को खेतों में आपको चलाना है, स्ट्रा रीपर उसके साथ साथ चलता है, उसके पीछे ट्रेलर भी होगा, तो सारा जो भी अवशेष है उसको भूसे में कन्वर्ट करके वो ट्रेलर में संग्रहित कर देता है,
1: जी
0: और साथ ही साथ जितना अनाज अंदर छूट गया खेत में ये स्ट्रा रीपर मशीन जो है उसको भी कन्वर्ट करके पुनः अनाज की भी प्राप्ति हो जाती है।
1: सर, अब ऐसे यंत्र के बारे में बताइए जो फसल अवशेषों के मध्य बुवाई करना संभव कर दे।
0: जी ये तरीका सबसे अच्छा अगर होगा, अगर हम फसल अवशेषों को खेतों से बाहर ना निकालें और उसी में खड़े फसल में जो पुराने अवशेष है उसी में बुआई कर सकें, तो इसके लिए हम जीरो टिल ड्रिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए हम हैप्पी सीडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: जी
0: इसके लिए सुपर सीडर भी यंत्र है जिन पे गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सब्सिडी भी दी जा रही है, तो इस प्रकार के यंत्रों का इस्तेमाल
1: कर
0: कर सकते
1: सकते हैं
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: जी
1: सर। एक मल्चर यंत्र और फसल अवशेष डीकम्पोजर,
0: जी जी
1: ये
0: जी
1: क्या है, इस बारे में थोड़ा बताएं।
0: जो मल्चर, कई बार जैसे मक्का वगैरह के डंठल सामान्यतः देखने में काफ़ी बड़े होते हैं, उनको खेतों से बाहर करना भी इतना आसान नहीं होता है,
1: जी
0: तो मल्चर एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से इन डंठल को हम खेतों में ही मिक्स करके बारीक करके खेतों में समान रूप से बिखेर देते हैं, तो इससे हम धान के पुआल का भी प्रबंधन कर सकते हैं, मल्चर के माध्यम से हम वीट का भी हम कर सकते हैं, गेहूं के भी पुआल का, और ख़ास करके मक्का के पुआल का हम प्रबंधन कर सकते हैं, तो खेत में खड़ी फसल की अवस्था में भुट्टे वगैरह तोड़ने के बाद जो बचे हुए पुआल है उसको मिक्स करने के लिए मल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। डिकम्पोजर जो होता है एक रसायन होता है जिसका हम सामान्यतः पानी में मिला करके उसको खेत में किसी भी स्प्रेयर के माध्यम से छिड़काव कर देते हैं, जिससे 15 से 20 दिन में हमारा जितना भी पुआल है वो विघटित होकर मिट्टी में मिल जाता है,
1: मिल
0: जिससे कि अगली फसल सामान्य रूप से किसान उसमें खेती कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: जी
1: अब एक और बात, फसल प्रबंधन में किसानों, कृषि वैज्ञानिकों एवं प्रशासन की भूमिका क्या रहती है?
0: सारे पुआल का प्रबंधन करना है, फसल अवशेषों का प्रबंधन करना है, तो इसके लिए किसान की भूमिका ये होगी कि वो इसको जलाने से बचे। वैज्ञानिकों की यहाँ पर भूमिका अगर देखी जाए तो उन्होंने ऐसी तकनीकें विकसित करने की आवश्यकता है या ऐसे यंत्रों को और विकसित करने की आवश्यकता है जो कि कम लागत पर किसानों के लिए बड़ी आसानी से फसल अवशेषों को प्रबंधित कर सके।
1: बिल्कुल
0: यहाँ पर प्रशासन की भूमिका ये होगी कि वो इन यंत्रों को कम कीमत पर या सब्सिडी के माध्यम से किसानों तक उपलब्ध कराए, किसानों को इनके बारे में अवगत करवाए, इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करें जिसके माध्यम से किसान इन यंत्रों का अधिक से अधिक उपयोग करें, तो इस प्रकार से इन तीनों घटकों की अपनी अपनी भूमिका है फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। आप कार्यक्रम में आए और विषय से संबंधित सभी जानकारी हमें विस्तृत रूप से दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: कितनों ने सुई जानकारी दी डॉक्टर दिलीप जाट ने। भैया और अपन सभी मिलके सुन रहे हैं अपनो आकाशवाणी केंद्र भोपाल से किसान वाणी कार्यक्रम, और अब जरा तनक मन में भक्ति की भावना सुई ललक ले रही है, तो भैया हरो अपन भी लगाते हैं मैया के चरणों में ध्यान और सुनत है जब भक्तिमय प्रस्तुति उमा सक्सेना।

0: वाह भैया, भक्ति के गीत सुन के तो मन प्रसन्न होगा माता रानी। हम सबके घर परिवार में सुख शांति और खुशहाली बनाए रखे जैया कामना करत है। किसान भैया हरो, अपन सब मिलके सुन रहे हैं अपनो पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी। भैया हरो बड़े जतन से खून पसीना एक करके फसल उगात है। कटाई के बाद जब अनाज घर आते है तो चेहरे पे अलग ही मुस्कान होते है। पर सोचो अगर सही देखभाल ना होए, नमी घुन चूहा कीड़ा लग जाए तो सबरो अनाज खराब हो जाते तो कितनो नुकसान होते है। अपनी गाढ़ी कमाई होते है मेहनत कोई और खा जात है तो अनाज के सालों साल सुरक्षित कैसे रखें? तो सुना थे जलघु वार्ता, वैज्ञानिक विधि से अनाज भंडारण कैसे करें, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से।
1: किसान भाइयों नमस्कार। वैज्ञानिक विधि से फसलों का भंडारण, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत करके अनाज दलहन तिलहन और अन्य फसलों का उत्पादन करते हैं। फसल की कटाई के बाद अनाज को सुरक्षित भंडारण बहुत जरूरी है। यदि अनाज का सही तरीके से भंडारण नहीं किया जाए तो उसमें कीड़े और रोगों का प्रकोप लग जाता है और नमी के कारण अनाज खराब हो सकता है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और फसलों का भंडारण यदि वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो जो है अनाज सुरक्षित रखता है और जो 15-20% तक जो हमारा अनाज खराब होता है उससे भी हम जो है बच सकते हैं। किसान भाइयों फसल की कटाई सही समय पर करने से जो है फसलों की पैदावार अच्छी होती है। बहुत जल्दी कटाई करने से अनाज में नमी अधिक रह जाती है और देर से कटाई करने से दाने झड़ते हैं और पक्षियों के

0: द्वारा भी नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, समय समय पर खेत में निरीक्षण करें, फसल पूरी पकने के पश्चात ही जो है कटाई करें, अनाज की कटाई के पश्चात जो है अच्छी तरह से साफ सफाई करें, कटाई और मड़ाई के बाद अनाज में मिट्टी, कंकड़, भूसा, टूटे हुए दाने और अन्य कचरा जो है आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह से साफ करें। साफ अनाज का भंडारण करने से उसकी गुणवत्ता बनी रहती है और भंडारित अनाज में लगने वाले कीटों का प्रकोप भी कम हो जाता है। तो इस बात का बहुत बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना आवश्यक है। अनाज को सुखाने की भी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज होती है कि अगर अनाज में जो नमी है वो 10-12% से ज्यादा नमी होगी तो उससे जो है भंडारित अनाज में कीड़ों का तो प्रकोप होगा ही, साथ में जो है उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसलिए आवश्यक है किसान भाई साफ तिरपाल या पक्के फर्श पर पतली परत में जो है अनाज को फैलाकर सुखाएं और समय समय पर पलटते रहें, जिससे कि अनाज में नमी जो है 10-12% से ज्यादा ना हो। इसके लिए किसान भाइयों जो है दाने को मुंह से कट करें, अगर कट की आवाज आती है तो जो है दाना जो है भंडारण के लिए उपयुक्त तो रहता है। इसके महत्वपूर्ण जो है बात आती है कि भंडारण गृह की सफाई भी बहुत आवश्यक है। भंडारण करने से पहले, अनाज रखने के से पहले गोदामों, कमरे, भंडार पात्र की अच्छी तरह से सफाई करें। उसमें यदि पुराना अनाज, कचड़ा या जो है छेद हैं तो उनको, छेदों को भर लें, क्योंकि छेद के अंदर जो है जो कीड़े होते हैं जो कि भंडारित अनाज में लगने की समस्या रहती है, तो उसे सुखा लें, साफ कर लें। वो दीवारों पर पानी टपकने की समस्या ना हो, यदि नमी है तो नमी को भी सूखने के उपरांत ही उसमें अनाज का प्रयोग करें। इसके साथ साथ किसान भाइयों उचित भंडारण पात्रों का उपयोग करने से अनाज सुरक्षित रहता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो भंडार पात्र हैं या जिन बोरियों में अनाज को भरा जा रहा है वो बोरियां पूरी तरीके से सूखी होना चाहिए और उनको जो है जमीन से लगभग 1 फीट ऊंचाई पर रखना चाहिए। साथ में जो भंडार पात्र को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए ताकि जो है हवा का आगमन ना हो, और हवा के आगमन और नमी होने से कीड़े बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि जो है एक और महत्वपूर्ण हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि बोरियों को सीधे जमीन पर नहीं रखें, उन्हें लकड़ी के पट्टों या पेलेट पर रखें, साथ में दीवार से लगभग 1 फीट दूरी पर रखें, जिससे कि नमी बची रहेगी और आसानी से हमारा अनाज सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज होती है कि जो है भंडार गृह में कीड़ों और चूहों का भी जो है काफी प्रकोप होता है, जिससे फसल जो है काफी प्रभावित होती है। तो भंडारित अनाज में घुन, सुरसुरी और अन्य कीट जो नुकसान पहुंचाते हैं, साथ में भंडार गृह में यदि चूहों का प्रकोप हो जाता है तो चूहे भी दाने को कुतर देते हैं और इससे जो है दाने की गुणवत्ता और उसका अच्छा बाजार भाव भी नहीं मिलता और वह खाने की योग्य भी नहीं रहता। इसलिए जो है जब भंडारण करते समय इन सब बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके साथ साथ किसान भाइयों भंडारित अनाज की नियमित रूप से जो है जांच करते रहें, अनाज में नमी, कीट, फफूंद अगर जो है का प्रकोप दिखाई देता है तो तुरंत जो है भंडारित अनाज को जो है दूसरे भंडार गृह में रखें, ताकि जो है जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान से बचकर आपका अनाज सुरक्षित रहे, उसकी गुणवत्ता बनी रहे, आने वाले समय में उसकी पैदावार और बाजार में बेचने पर उसका अच्छा मूल मिल सके। आज की चर्चा में बस इतना ही।
1: भैया हरो, आज की लघु वार्ता में बहुत ही अच्छी जानकारी दी अपन के वैज्ञानिक विधि से अनाज भंडारण के बारे में डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने। चलत चलत कृषि सलाह आप और उनके दे दें। मौसम में बदलाव के चलत भाई अपनी खरीफ फसलों को नियमित निरीक्षण करत रहे, पत्तियों पे धब्बे, पौधों को मुरझानों और कीटों को प्रकोप दिखाई दे तो जरूरत पड़वे पे कृषि विशेषज्ञ की सलाह से अनुशंसित कीटनाशक या रोगनाशक को ही इस्तेमाल करें। जिन किसान भैयाहरों की फसल पक चुकी है वे मौसम और फसल की स्थिति के अनुसार अपनी कटाई करें। मंडी के भाव भी सोई आपके बता दें तो भैया गेहूं रहो 2400 से 3250 रुपया प्रति क्विंटल, सोयाबीन रहो 4200 से 4850 रुपया प्रति क्विंटल, चना 5100 से 5600 रुपया प्रति क्विंटल तक देखोगा, और मक्का की अगर बात करें भैया हरो तो 2100 से 2450 रुपया प्रति क्विंटल आवक देखी है। मंडी में भाव, उपज की गुणवत्ता, नमी, किस्म और बाजार की मांग के अनुसार ऊपर नीचे हो सकते हैं। पहले नजदीकी कृषि उपज मंडी से ताजा भाव की जानकारी जरूर ले लेने, है ना। तो भैया हरो अब हो रही है चलबे की फिरिया, फिर मिल है किसान बाड़ी के अगले कार्यक्रम में नई जानकारी और नए विषय के संगे। तो देव अनुमति स्वीकार करें अपनी रानी बहन की। राम राम, जय सीताराम।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब

0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा,
1: परम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच
0: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आंगनवाड़ी। खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम
1: किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा समुद्र बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्ष पूरे किए हैं सार्वजनिक सेवा के। 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 12 वर्ष से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बंदरगाह, समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो समुद्र तट है वो बहुत लंबा है, 11,099 किलोमीटर के करीब का, और जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनकी भी लंबाई 14,500 किलोमीटर के करीब है। और 95% भारत का जो ट्रेड बाय वॉल्यूम और लगभग 70% बाय वैल्यू मैरिटाइम रूट से आवाजाही उसकी होती है। तो इसलिए बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन आज लेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे। तो हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, कॉमोडोर केडी जोशी जो है डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा जो है स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: कॉमोडोर जोशी, बंदरगाहों का जो विकास गुजरात में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है भारत में वो गुजरात में ही है, 2340 किलोमीटर। सो जिस तरह से वहां की सरकार ने ये रियलाइज किया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ उन्होंने वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये मॉडल पूरे भारत में, पूरी जो कोस्ट लाइन है वहां पर भी सफल रहा है?
4: आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वही एक फ्यूचरिस्टिक, मैं कहना चाहूंगा कि आगे की सोच का कदम माना जाएगा। क्योंकि जब तक देश के सारे विभिन्न तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, इंडस्ट्रियल हाउसेस कह लीजिए, सरकार कह लीजिए, ये सारे एक साथ अगर आएंगे और पूरे देश का चौतरफा उन्नति की दिशा में अपना अनुदान देंगे, तभी देश में मेरे ख्याल

0: से एक उन्नति ठीक से हो पाएगी।
1: जी
0: और अगर आप देखें तो सरकार ने जो 2-4 साल पहले, मेरे ख्याल से 2020 के आसपास, एक फाइनेंशियल शिप बिल्डिंग के लिए एक फाइनेंशियल व्हीकल लॉन्च किया था, तो वो भी सरकार की तरफ से एक कदम है कि ईज ऑफ बिजनेस जिसे बोलते हैं, कि अगर आपको किसी को शिप बिल्डिंग में जाना है, किसी को मैरिटाइम रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ये एक कॉरपोरेशन है जिससे आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी।
1: जी सो प्रोफेसर मिश्रा, जैसे कॉमोडोर जोशी ने बताया कि पूरी तरह से सरकार ने एक बढ़ावा दिया है निजी क्षेत्र को, पोर्ट्स के जो सेक्टर है उसमें उतरने के लिए। हमारे अब 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 से भी अतिरिक्त पोर्ट्स हैं। आप हमें बताएं कि ये जो एक बल दिया गया है बंदरगाहों के विकास पर, समुद्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर, कैसे देखते हैं आप इसको, कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, हमारे आर्थिक सशक्तिकरण के लिए?
2: भारत में आर्थिक विकास की जो गति है और आर्थिक हमारी जो हर साल की जो सालाना हमारी आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति की जो परसेंटेज है, वो कंसिस्टेंटली एक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने पिछले 2 दशकों में, खासतौर से पिछले 12 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कमोडोर जोशी ने कहा, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार ने अपनी नीतियों को बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखा है कि सरकार का रोल एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का है।
1: जी
2: एक ऐसा एनवायरनमेंट तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए और आम इंसान के लिए भी, ऐसा एनवायरनमेंट सामने रखना जिसमें कि वो अपनी जो उनकी क्षमताएं उनका विकास कर सकें। तो सरकार का काम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जिसमें मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। इस इनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखिए व्यापार के लिए किसी भी देश की या राज्य की सरकार व्यापार में सीधे तौर पर नहीं उतरती है, अगर वो एक कम्युनिस्ट सरकार ना हो, तो ऐसा जो वातावरण बनता है उसमें प्राइवेट सेक्टर को सीधे तौर पर एक स्टेक होल्डर के तौर पर उतरना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है और भारत से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उभर रही है और उनका व्यापार बढ़ रहा है दुनिया के तमाम कोनों से, उसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप बहुत आवश्यक थी। और भारत के, जैसा आपने कहा कि भारत के बड़े जो बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह हैं, लेकिन 200 छोटे बंदरगाह भी हैं, इनको कैसे पूरी तरह से समेकित रूप से इनका विकास कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि जो भारत का जो मैरिटाइम विजन 2030 है या मैरिटाइम अमृतकाल 2047 है, उसको ध्यान में रखते हुए एक समग्र और समेकित विकास की आवश्यकता रही है। और उसके विकास के लिए ही मुझे लगता है बंदरगाह से जुड़ा हुआ या पोर्ट लेड डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, वो आवश्यक एक जरूरत थी और वो पूरी तरह से निखर के आ रही है सामने। दूसरा एक बड़ा पहलू है कि भारत के जो बंदरगाह हैं, हम देखते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह हैं और पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह हैं, दोनों में पहला तो पूर्व और पश्चिम के बंदरगाहों के बीच में क्षमता को लेकर के और उनका जो व्यापार है, एक जो टनेज का टर्नओवर है, उसको ध्यान में रखते हुए ही पूर्व और पश्चिम में बहुत अंतर है। पश्चिम के पोर्ट बहुत विकसित हैं और मुंबई का जो बंदरगाह है उस पर बहुत ज्यादा लोड था, और इसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के जो नए बंदरगाहों का अपग्रेडेशन हो रहा है वो बहुत आवश्यक था। इसमें पूर्व और दक्षिण के बंदरगाहों पर भी काफी व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। आगे आने वाले समय में भारत की विकास की गति को सामने रखते हुए इन बंदरगाहों के विकास पर भी काम होगा और तभी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में निखर कर सामने आ पाएगा।
1: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अब प्राइवेट पोर्ट्स भी बहुत मेजर हो गए हैं। अगर हम देखें पीपावाव या हजीरा या मुंद्रा, मुंद्रा अब बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा पोर्ट है भारत में, और जो पोर्ट कैपेसिटी है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में 1561 मिलियन टन पर एनम था और अब वो बढ़कर 2817 पर पहुंच गया है, और जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो भी 96 घंटों से कम होकर 49 घंटे आ गया है। आप हमें बता सकते हैं कॉमोडोर जोशी की जो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये किस तरह से एफिशिएंसी बढ़ाता है, जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको गति देता है?
0: आपने बिल्कुल सही आंकड़े दिए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्न अराउंड टाइम अभी थोड़ा और भी शायद कम हो रहा होगा, क्योंकि जो सरकार का बेसिक, अगर आप एक उद्देश्य मान लें कि टर्न अराउंड टाइम कम करने से पोर्ट में ज्यादा जहाज आएंगे, ज्यादा माल की ढुलाई होगी, ज्यादा माल उन पे लोड किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो काम होता है उससे पोर्ट का जो टर्नओवर कहते हैं आप, मुनाफा कहते हैं फाइनली, वो बढ़ेगा। तो अगर पहले क्या होता था, ये सारे जहाज जाते थे 2-2, 3-3 दिन एक

0: पोर्ट में ये रहते थे, सामान की आवाजाही हो रही है, कंटेनर उतर रहे हैं, कंटेनर चढ़ रहे हैं, तो ये 2-3 दिन का टाइम लगता था। तो अभी अगर जैसे आपने बताया कि ये समय बहुत कम हो गया है, तो उस हिसाब से अगर देखें दैट में अगर 1 दिन में ये काम हो रहा है, तो जो पहले 3 दिन में होता था, अभी 1 दिन में 3 जहाज निकल गए, पहले एक ही जहाज निकलता 3 दिन में। तो उस हिसाब से टर्नओवर पर शिप अगर देखें तो 3 टाइम्स हो गया है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पूरा जो आर्थिक अपनी जो गति है देश की, उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक पैमाना है, टर्नओवर टाइम कितना है और इसको कौन देखता है। ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड बैंक का ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस का इंडेक्स है,
1: जी
0: वो ये सारे मेजर करके ये देखते हैं कि कौन कौन कैसे परफॉर्मेंस चल रही है इन सब चीजों में।
1: जी
0: एक ये पैमाना, उसके अलावा बहुत भी होंगे। अगर आप देखें इनका जो लेटेस्ट इंडेक्स आया हुआ है, उसमें टॉप 30 में हमारे 3 पोर्ट्स आ रहे हैं। जैसे आपने सही बोला, मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का। ये
1: जी
0: 3 पोर्ट टॉप 30 में भारत के हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा देश के लिए ये एक गर्व करने की बात है कि ये हमारा देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो थोड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी मानी जाएगी।
1: जी बिल्कुल। इसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर कि जब हम बात करते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट की या जो लॉजिस्टिक्स है समुद्री यातायात, तो उसमें कौन कौन से ऐसा कार्गो है जो बहुत हमारे लिए क्रिटिकल है, हमारे देश के लिए, जो समुद्री जो रास्ते हैं उनसे वो उसकी आवाजाही होती है और जिसके कारण ये जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर इतना बल दे रही है सरकार।
2: यहाँ कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको समझना आवश्यक है
1: जी
2: हमारे लिए भी और श्रोताओं के लिए भी, कि भारत का और दुनिया का अधिकतम व्यापार 90-95% से ज्यादा व्यापार वो शिपिंग रूट से ही होता है, समुद्री जहाजों से होता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और उससे ज्यादा माल की ढुलाई हो सकती है। इस बात को हम ध्यान रखें। पहली चीज ये है कि जितना तेल और गैस का व्यापार होता है वो सारा व्यापार समुद्री जहाजों के माध्यम से होता है, जितना हैवी कार्गो जाता है वो भी समुद्री जहाजों के माध्यम से जाता है, और इसके साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे आने वाले खाद्य पदार्थों का आयात और निर्यात भी समुद्री क्षेत्र से होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये समुद्री यातायात की जो ये जो लाइफ लाइन्स हैं
1: जी
2: इनको अगर रोक दिया जाए तो दुनिया में व्यापार ही नहीं, दुनिया का चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये हमने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में हमने ये बात देखी कि जब वहां से जहाजों का आवागमन रुका या उस पर एक तरह से नियंत्रण लगा, तो दुनिया के तमाम देश, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में ऊर्जा को लेकर के बहुत बड़ा संकट हो गया। भारत ने इस संकट को बहुत अच्छे से टैकल किया, ये एक प्रशंसनीय बात है, लेकिन हमने देखा कि कैसे दुनिया के तमाम देशों पे ऊर्जा के क्षेत्र में जो अपने को बहुत ही स्वावलंबी मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, उनके लिए भी यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी। तो
1: जी
2: इसलिए कार्गो के क्षेत्र में हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ आयरन और स्टील जैसी चीजें, रबर जैसी चीजें जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, लोगों के जीवन में जो खाद्य पदार्थ हैं या जो सामान उनके आम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं उनकी भी, तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, उसका एक सस्टेनेबल रहना और उसकी जो जनता है, उसके जो नागरिक हैं, उन लोगों का जीवन भी सुगम रूप से चले, इन सभी के लिए मैरिटाइम रूट्स और शिपिंग रूट्स की आवश्यकता है।
1: और कॉमोडोर जोशी, जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, एक आम नागरिक के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए भी ये जो समुद्री कारोबार है कितना जरूरी है। अगर हम मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आप नेवी में रहे हैं तो आप बता सकते हैं हमें कि इसी संदर्भ में ये जो आवाजाही भी सुगम रूप से बनी रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी का कितना बड़ा एक एस्पेक्ट है जो हर देश के लिए और खासकर अब जब भारत की बात कर रहे हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
0: आपने एक जो एक पॉइंट निकाला है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आज से नहीं, पिछले 15-16 साल से, जब ये दुनिया में जब इनका फूतीज जो थे या यहाँ पे जो हाईजेक हो रहे थे जहाज,
1: जी
0: और उनसे रैंसम मांगी जाती थी और पूरा का पूरा जहाज बोर्ड कर लिया जाता था, और समुद्री जो लुटेरे होते हैं वो आते थे एंड अभी भी आते हैं, और उसके कारण 2008 के करीब से भारतीय नौसेना ने इस एरिया में पेट्रोलिंग शुरू की थी, और वो पूरा का पूरा जो जो एंट्री पॉइंट्स हैं ये मिडल ईस्ट के, उसमें बहुत सारे देशों का एक कंसोर्टियम टाइप आप कह सकते हैं, उनके सारे जहाज अपने अपने वहां पे एक पेट्रोलिंग करते थे, टर्न बाय टर्न आते थे, और काफी अच्छी पेट्रोलिंग के कारण ये जो समुद्री लुटेरे आते थे उनका जो इवेंट्स थे, इंसिडेंट थे, सारे बहुत कम हो गए। अभी अगर आप देखें ये क्यों हुआ, ये सारा जब तक आपके पास नौसेना का बल नहीं है, आप अपने सी लेन्स जो समुद्री रस्ते हैं, समुद्री जहाजों के आने जाने के लिए जो रस्ते बने हुए हैं वो आप सिक्योर नहीं कर सकते, वो खुले पड़े रहेंगे, कोई भी आएगा रस्ते पे आपके जहाजों को वो लेके जाएगा, रैंसम मांगेगा या जो भी करेगा आगे। वो सिक्योर तभी हो सकते हैं जब नौसेना के जहाज उन सी लेन्स को सिक्योर करे। तो एक ये जो एक काम है भारतीय नौसेना का, एक प्रमुख काम है, पीस टाइम वर्क कह सकते हैं आप, कि जब युद्ध ना चल रहा हो तो ये एक मेजर काम रहता है। और हमारे जहाज कंटिन्यूसली वहां पिछले इतने सालों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, दो दो तीन तीन जहाज होते हैं वहां पे। तो उसके कारण मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि अगर देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है तो उसके लिए एक सशक्त नौसेना का होना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: और मेरे ख्याल से पिछले करीब करीब कुछ सालों में सरकार ने ये काम किया हुआ है। अगर आप जहाजों का थ्रूपुट देखें, जो नेवी के जहाज बन रहे हैं वो काफी सारे जहाज लॉन्च हुए हैं, काफी सारे जहाज कमीशन हुए हैं और बहुत मॉडर्न जहाज हैं। आज की तारीख में भारतीय नौसेना जो है वो एक सशक्त और आप कह सकते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलते हैं इंडियन ओशन रीजन, तो जिसमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल भी आ जाता है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारतीय नौसेना को माना जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है दोनों का पैरेलल विकास, जिस पर पूरा बल दिया गया है पिछले कुछ वर्षों में। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपके पास आए तो सागरमाला प्रोग्राम जो सरकार का 2015 में शुरू हुआ पोर्ट लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मैकेनाइजेशन, जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो डिजिटल सिस्टम्स को पोर्ट ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट करना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इस सबको आप कैसे देखते हैं, ये जो एक कहें कि फोकस्ड एफर्ट है सरकार?
2: देखिए, सागरमाला जो परियोजना 2015 में जिसको लॉन्च किया गया, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य थे वो ये थे कि भारत के तमाम बंदरगाह पुरानी तकनीक पर चल रहे थे, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था और उसमें बहुत ज्यादा जो पुराने किस्म के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सागरमाला परियोजना के तहत ये बात की गई कि बंदरगाहों का न सिर्फ उनका आधुनिकीकरण करना है बल्कि बंदरगाहों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी हो। और एक बार जब किसी जहाज से, किसी कार्गो या कंटेनर शिप से जब माल वो बंदरगाह पर डॉक होता है तो वहां से रोड कनेक्टिविटी कैसी है, और तमाम बंदरगाहों के साथ एक ये भी समस्या भारत में पहले रही है कि उनके लिए जो इनेबलिंग इकोसिस्टम है वो नहीं था, तो उसके विकास के लिए भी सागरमाला परियोजना में ध्यान दिया गया। साथ ही साथ इस इकोसिस्टम में ये बात की गई कि किसी भी बंदरगाह में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक पोर्ट फैसिलिटी है, डॉकिंग फैसिलिटी है और वहां पर सामान उतर गया, उस सामान का स्टोरेज कैसे हो और वो अत्याधुनिक तकनीक पर कैसे बेस्ड हो। तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जो परिवहन है, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वो रोड परिवहन हो या रेलवे के रास्ते जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए, और खास तौर से जो इनलाइन वाटरवेज हैं उनके विकास की कोशिशें की गई। तो सागरमाला परियोजना मुझे लगता है कि एक बहुत क्रांतिकारी कदम रहा है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत में, और इसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत तेजी से दुनिया की तमाम जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कॉम्पीट करने और उनके बराबर चलने की क्षमता प्रोवाइड की है। 845 परियोजनाओं को नामांकित किया गया था 2015 में और उनमें से 315 परियोजनाएं अभी पूरी हो चुकी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सागरमाला इनिशिएटिव, जैसा कि नाम भी खुद ये बताता है कि ये तमाम जो भारत के बंदरगाह हैं उनको एक माला की कड़ियों की तरह जोड़ना है
1: जी,
2: जिससे कि उन तमाम बंदरगाहों में आपस में भी कनेक्टिविटी रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे, अत्याधुनिक तकनीक से वो जुड़े रहे, कम्युनिकेशन और उन कोऑर्डिनेशन की उनमें लगातार एक सुगम यातायात रहे, और साथ ही साथ इस पूरी बंदरगाहों के विकास और उनके अत्याधुनिकीकरण के साथ साथ भारत के आम नागरिक, छोटे जो व्यापारी हैं, जो लोग पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़े हुए हैं या जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी परियोजनाएं चलाना कि वो भी जब बंदरगाहों का विकास हो और ज्यादा माल ढुलाई हो, व्यापार बढ़े, तो वो लोग भी इस विकास का फायदा उठा सके और उसमें अपना योगदान दे सके।
1: बिल्कुल, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हुए हैं, समय जो लगता था उस सामान को पहुंचाने में वो भी कम हुआ। आपने इनलैंड वाटरवेज की बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है हमारे सामने कि लगभग 700% बढ़े हैं कार्गो मूवमेंट इनलैंड वाटरवेज में। सो इस संदर्भ में जो हमारा कहें कि जो वाराणसी मल्टी मोड टर्मिनल है, जो पहला मल्टी मोड टर्मिनल है गंगा नदी पर, जो गवर्नमेंट की जल मार्ग विकास परियोजना है, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे आप कह रहे थे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए और जो समय है उसको भी कम करने के लिए?
2: देखिए, इनलैंड वाटरवेज भारत में उनकी परिकल्पना बहुत पहले से रही है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज का

0: उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सका। और क्योंकि भारत में गंगा नदी मुख्य रूप से गंगा नदी के रास्ते बनारस से लेकर वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक का एक वाटरवे बनता है,
1: जी
0: जिसमें तमाम जो छोटे और बड़े शहर हैं वो उसके साथ जुड़े

0: में हिस्सेदार बने और उनके जो निर्यात के सामान है या उनके लिए जो सामान बाहर से आ रहा है उसको कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। क्योंकि देखिए शिपिंग में और जो समुद्री व्यापार है ये वैसे ही है, एक बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है तो उसके जो 3 घंटे और 4 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह जब कोई माल खासतौर पर खाद्य पदार्थ जब वो किसी बंदरगाह पर डॉक होता है, जब उसको उतारा जाता है, वहां से कितनी जल्दी वो बाजार पहुंच सके, मार्केट में पहुंच सके, लोगों के पास पहुंच सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य पदार्थों के मामले में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर वो 48 घंटे और 72 घंटे के बाद पहुंचेगा तो आधे से ज्यादा सामान खराब हो जाएगा। भारत के उत्तरी राज्यों के लिए ये एक विशेष चिंता की बात है, क्योंकि जैसे अगर हम आम, क्योंकि उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों में आम निर्यात करने की कोशिश होती है, उनके लिए ये हमेशा से एक समस्या रही है कि उनके जो एक्सपोर्ट आइटम्स है वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाते थे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनलैंड वाटरवेज पर खास ध्यान दिया जाए और उनको विकसित किया जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि वाराणसी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या नमो घाट और तमाम जो परियोजनाएं वाराणसी में चल रही हैं उनका एक बहुत दूरगामी परिणाम होगा इनलैंड वाटरवेज को आगे बढ़ाने में और उनके योगदान को बढ़ाने में पोर्टलेट डेवलपमेंट की जो संकल्पना है भारत की आर्थिक विकास।
1: आपने बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देकर हमें ये बात समझाई है। कॉमोडोर जोशी, आपके पास हम आते हैं। विजिंगजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो केरला में विकसित हुआ है, 2015 में ये इनॉग्रेट हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको? ये ग्लोबल सी रूट से हमें कनेक्ट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये?
2: जी, अगर आप थोड़ा नक्शे पे ध्यान दें दुनिया के, तो आज की डेट में एक प्रोसेस बोला जाए, एक तो ट्रांसशिपमेंट का एक प्रोसेस है और वो सिंगापुर आज की डेट में सबसे बड़ा एक पोर्ट है जिसमें ये सबसे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट होती है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े जहाज बहुत सारा सामान लेके आते हैं उनको पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसकी कीमत लगती है। तो क्या किया जाता है कि समझिए आप सिंगापुर का एग्जांपल ले रहे हैं, जो ईस्टर्न साइड से सामान आ रहा है वो सिंगापुर में छोटे जहाजों में जाएगा, कंपैरेटिवली छोटे जहाजों में, और फिर वो बाकी वेस्टर्न साइड की तरफ मतलब हिंदुस्तान की तरफ मलाका स्ट्रेट से होता हुआ इस तरफ आएगा या फिर मिडल ईस्ट या जो भी अफ्रीका में जाना है वो जाएगा। तो एक प्रोडक्शन सेंटर है, एक ट्रांसशिपमेंट सेंटर है। अगर हमारी ज्योग्राफी देखा जाए, पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं अपने को, एंड ये जो विजिंगजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है ट्रिवेंड्रम में
1: जी,
2: वो एक डीप वाटर पोर्ट है। एक 20 से 24 मीटर का ड्राफ्ट मिलता है वहां पे, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इंटरनेशनल शिपिंग लेंस जो है ये उसके बहुत करीब है। इनफैक्ट जो सिंगापुर से लेके जो पर्शियन गल्फ की तरफ लेन जा रही है, मलाका स्ट्रेट से पर्शियन गल्फ की तरफ, वो तो इसके बिल्कुल साथ से होती हुई जाती है। और जो सुएज कैनाल की तरफ जो लेन जा रही है वो इससे करीब 20 से 30 नॉटिकल माइल, अगर किसी को विजिंगजाम पोर्ट में आना होगा तो 20 से 30 माइल का डायवर्जन लेना पड़ेगा। तो ये लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होगा कि जो समझिए आप मिडल ईस्ट से, यूरोप से, मेडिटेरियन से सुएज कैनाल के थ्रू होते हुए जहाज इधर आ रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांसशिपमेंट अपने यहाँ हो सकती है और फिर यहाँ से जहाज या तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होंगे या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये जो एक दूरगामी जो परिणाम है इसका वो काफी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 24-25 में करीब करीब 1.2 मिलियन TEUs जो यूनिट होती है, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट बोली जाती है, वो इसका थ्रूपुट हो चुका है। और जब फेज टू और फेज थ्री खत्म होएगा 2028 तक
1: जी,
2: तो उस टाइम पे जो इनका जो एम है, टारगेट है, एक विजन है कि 4.5 मिलियन TEU से ऊपर का व्यापार होगा यहाँ पे, और फाइनल फेज 2040 में 7.2 मिलियन TEU का होने का उद्देश्य है इस बात।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला और आज हमारी चर्चा का विषय है बंदरगाह, समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं, कॉमोडोर KD जोशी डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। प्रोफेसर मिश्रा, आपके पास आते हैं। एक जो बहुत ही रोचक और कहें कि बहुत ही उपयोगी ग्रास रूट्स लेवल पे जो प्रोग्राम है समुद्र तट के विकास को लेकर गुजरात ने, जहां पे सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, सागर खेड़ू सर्वांगी विकास योजना जो 2007 में शुरू की गई, इसको आप कैसे देखते हैं जिसमें लगभग 13,000 जो कोस्टल विलेजेस हैं वहां पर बिजली पहुंचाने की

0: और उसको निर्बाध रूप से पहुंचाने की व्यवस्था पर बल दिया गया है।
1: देखिए, ये जो परियोजना है सागर कांठा के तमाम जो जिले हैं जिसमें कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और तमाम भावनगर, अहमदाबाद, ये सभी उसमें आते हैं। इन तमाम शहरों के साथ एक समस्या ये थी कि जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो बिजली की आपूर्ति हो या पीने के पानी की सतत आपूर्ति हो, इन तमाम मुद्दों पर जो सामुद्रिक क्षेत्र का विकास होता है, खारे पानी के प्रवेश को रोकना, एक गुजरात के तमाम बंदरगाहों के साथ एक समस्या ये है कि क्योंकि वहां पर हाई टाइड के साथ बहुत ज्यादा सिल्टिंग हो जाती है और जो गाद आ जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत पहले के समय में, आज से हजार साल पहले भी, जब लोथल एक मानव निर्मित जब बंदरगाह बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, आज से 3000 साल पहले, बल्कि उससे ज्यादा, तब भी यही समस्या आई थी कि बहुत सारी गाद जो है वो बंदरगाह और उसके रास्ते उस क्षेत्र के अंदर आ गई। तो खारे पानी के साथ साथ इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए इस योजना का की संकल्पना की गई और मूलभूत तौर से इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग, जो जनता इन बंदरगाहों के आसपास रहती है, जो इन बंदरगाहों से होने वाले व्यापार और इन बंदरगाहों के सुचारू रूप से चलाने के लिए जिनकी जरूरत है, उनकी जो डेली लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए इंटरनल पीपल सेंट्रिक कनेक्टिविटी को कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए पीने का पानी कैसे मुहैया कराया जाए और तमाम इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसके लिए इस परियोजना को चलाया गया था। तो इसका फोकस बहुत ही लोकलाइज था, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये किसी भी बंदरगाह के लंबे समय तक और सुदृढ़ रूप से चलने के लिए बहुत आवश्यक,
0: कह सकते हैं एक तरह से मॉडल है। और सागरमाला के तहत 11 जो फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके तहत 30,000 जो मछुआरे हैं उनको फायदा हुआ है, आपको लगता है ये भी बहुत होलसम होलिस्टिक अप्रोच है?
1: जी बिल्कुल, दुनिया के तमाम देश जिन्होंने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया है और उनके विकास पर ध्यान दिया है, उन्होंने ये भी देखा है कि जो छोटे मछुआरे हैं, जो लोकल अर्थव्यवस्था है, वो बंदरगाहों पर जो निर्भर है या तटीय क्षेत्रों पर निर्भर है, उनको कैसे इस बंदरगाह के विकास में या पोर्टलेट डेवलपमेंट में से जोड़ा जा सके, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है, और ऐसे भी उदाहरण है दुनिया के तमाम बंदरगाहों के जहां बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से उनको डेवलप किया गया और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह बन गए, लेकिन जो जनता उससे जुड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गई। इन तमाम सागरमाला के तहत इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है कि जब हम आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, ज़्यादा बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत ज़्यादा आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं, तो हम आम जनता के कंसर्न्स और उनकी ज़रूरतों को कहीं पीछे ना छोड़ दें। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही समेकित परियोजना है सागरमाला, और इसके तहत मुझे लगता है कि जनता विकास के साथ साथ आर्थिक प्रगति दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई।
0: बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, अभी प्रोफेसर मिश्रा ने एक मेंशन किया लोथल जो गुजरात में, वहां पर जो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि ये एंशंट जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां डॉकयार्ड था 4,500 वर्ष पुराना, तो ये जो हमारी एक हिस्ट्री है मैरिटाइम हिस्ट्री, उसके लिए आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा उसको शोकेस करने का और पूरे देश के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम म्यूजियम होगा जब ये बन जाएगा तो।
2: जी सुलो जी, बिल्कुल सही आप दिशा में आपने जो बोला है, ये जो 4,500 साल पहले जब ये बनाया गया था, इसमें एक ड्राई डॉक भी होता था, तो मतलब आप सोचिए कि कितना एडवांस वो सिटी होगा जिसमें एक जहाजों को अंदर लाके ड्राई डॉकिंग की भी फैसिलिटी बनाई गई हुई थी। तो उस हिसाब से मैरीटाइम कल्चर जो बोलेंगे, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैरीटाइम कल्चर था, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम सारे हमारे देश के लोगों को थोड़ा सा, हमें जानकारी नहीं है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। और मेरे ख्याल से जब ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जब बन के पूरा हो जाएगा, ये दो फेजेस में बन रहा है और पहला फेज में फेज ए और फेज बी भी है, जब ये पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आकर्षक जगह होने वाली है, जिसमें अपने आप में ये एक डेस्टिनेशन हो जाएगा कि आप लोग वहां पे जाएंगे और एक मैरीटाइम जो हेरिटेज है उसको कैसे हिंदुस्तान ने प्रिजर्व किया है, और आज पास्ट, आज की डेट में और फ्यूचर, ये तीनों कैसे इंटीग्रेट होके उस जगह पे दिखाए जाएंगे, ये मेरे ख्याल से जन साधारण के लिए एक अच्छी परियोजना जो है वो स्थापित हुई है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही अच्छा एक, आप कह सकते हैं, एक दर्शनीय स्थल हो जाएगा लोगों के लिए, वहां पे भी जाना बहुत आवश्यक हो जाएगा।
0: प्रोफेसर मिश्रा, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ मिलकर उनसे भी लिया जा रहा है

0: टेक्निकल एडवाइस, तो कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को?
1: मुझे लगता है इसमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत 2047 में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बनना है, भारत को अपने जो इतिहास को प्रेजेंट करने में जो गलतियां की गई हैं उनको भी सुधारना है। तमाम तथाकथित इतिहासकार जो भारत के हैं और भारतीय इतिहास पर लिख चुके हैं, वो ये हमेशा से कहते आए हैं कि भारत कभी एक मैरिटाइम नेशन नहीं रहा है, ये तो एक कॉन्टिनेंटल देश रहा है जिसने कभी समुद्री यातायात या समुद्री सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा। इस नैरेटिव को एक सिरे से नकारने के लिए और इस डिबेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है इस मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना जरूरी थी। और क्योंकि ये इस बात को सामने रखता है कि आज से 5000 साल पहले भी भारत एक समुद्री महाशक्ति था, भारत के पास उस समय की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा स्थान रखते थे, हमने मानव निर्मित एक बंदरगाह बनाया जिसको आज फिर रिवाइव करने और उसको एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में रखने की बात हो रही है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि लोथल जो कि अहमदाबाद शहर का हिस्सा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितना बड़ा उसका योगदान रहा है। और इसमें आपने जो बात कही नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ सहयोग की, ये दोनों देश भी, वियतनाम और नेदरलैंड्स दोनों ही देश ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े पोर्ट्स को लेकर के और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेकर के वो हमेशा से ही बड़े एक्टर्स और बड़े प्लेयर्स रहे हैं। तो उनके साथ सहयोग मुझे लगता है इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम कलेक्टिवली अपनी जो हमारी जो साझा विरासत है उसको भी हम सामने लेकर के आए। और इस लिहाज से एक यूरोपीय देश और वियतनाम जो कि जिसकी अपनी 5000 साल की एक ग्लोरियस उसका इतिहास है उसको भी सामने रखना बहुत जरूरी।
0: सो कॉमोडोर जोशी, जैसा आप दोनों ने ही बताया कि कितना हमारा ग्लोरियस इतिहास है, मैरिटाइम इतिहास, उसको दर्शाया जाएगा और साथ ही साथ आपको लगता है कि बहुत होलिस्टिक अप्रोच है सरकार का कि विरासत का गौरव उसको बनाए रखना, साथ ही साथ जो मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 जिसकी बात अभी प्रोफेसर मिश्रा भी कर रहे थे, जिसमें 150 से ज्यादा पहले हैं 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए की, और जिसमें पिछले वर्ष का लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज शिप बिल्डिंग का भी शामिल है, और न सिर्फ ये मैरिटाइम अमृतकाल विजन भी 2047 उसको भी सरकार ने ऑलरेडी उसके बारे में सोचा है एक दूरगामी सोच के साथ। कितना आपको ये अप्रोच कहें कि ऑलराउंड अप्रोच लगता है?
2: बिल्कुल, एक चौतरफा सोच मेरे को दिखती है पूरे इसमें, क्योंकि आप देखिए बंदरगाहों को डेवलप करना, कोस्टल कम्युनिटी को साथ में लेके चलना, जो प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे कि कई बार मार्जिनलाइज हो जाती है जो लोकल लोग रहने वाले हैं
0: जी,
2: वो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन लोकल लोगों को उनकी सुविधाओं का, उनकी जरूरतों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते हैं बहुत बार। लेकिन अगर आप देखें ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे MIV के तहत हो, चाहे MAKV के तहत हो, या चाहे फिर सागरमाला के तहत हो, पांचवा जो पिलर है सागरमाला का वो है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट का पिलर है। मतलब पूरा का पूरा एक फंडामेंटल पिलर यही बोल रहा है कि जो हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज है, नॉट सिर्फ पोर्ट में नहीं, सिर्फ बंदरगाहों में नहीं, पूरी कोस्ट में, उन सबको साथ में लेके हमको डेवलप करना है और उनका ध्यान जरूर रखना है। और उसके लिए अगर आप देखिए तो अगर डेवलपमेंट कोस्ट में हो रही है, पोर्ट्स पे हो रही है, तो जो सरकार ने इतना जो बजट आउटले किया हुआ है 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का MIV के लिए और करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए का इसके लिए MAKV के लिए, तो ये सारा का सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्टलेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो सागरमाला के तहत एक और पिलर माना जाता है, जिसमें इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोस्टल इको जोन्स, कोस्टल इको यूनिट्स एंड साथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, और पोर्ट कनेक्टिविटी जो थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि कैसे की जाए, तो अभी जिक्र में यही आया कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू समझिए पोर्ट कनेक्टिविटी हो रही है, समझिए आपका जो नेशनल वाटरवे 1 बन रहा है जो वाराणसी और हल्दिया को कनेक्ट कर रहा है, तो हिंटरलैंड जो इंडिया की है वो उनको एक जिसे बोलते हैं उनका दरवाजा खुल गया है समुद्री रास्ते के लिए, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज बननी शुरू हो गई हैं। और वैसे ही अगर आप देखे हैं कुछ दिन पहले एक ट्रायल रन हुआ था एक वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का, जिसमें एक कंटेनर ट्रेन चलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर बड़ोदरा तक। तो अभी आप देखिए कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट में हिंदुस्तान ने जो पहला कदम लिया है, पहला देश है जिसने एक बिजली की जो ट्रेन है उसमें डबल डेकर कंटेनर सिस्टम अपनाया है, बाकी पूरे दुनिया में सिंगल कंटेनर सिस्टम जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक दो कंटेनर नहीं रखे जाते हैं। तो ये जो ट्रेन गई है करीब मेरे को लगता है 300-350 कंटेनर यूनिट से लेके गई थी, काफी लंबी ट्रेन

0: ये, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट माना जा सकता है, और
1: जी
0: ये सारी चीजें इन तीन प्रोग्राम्स के तहत हो रही हैं। और अगर आप देखेंगे कि अपनी जो लोकल सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी जानकारी के लिए मैरिटाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
1: बिल्कुल
0: सागर खेड़ू जो सर्वांगी विकास योजना थी गुजरात की, वो
1: जी
0: एक मॉडल था, उसके हिसाब से पूरे देश में वो मॉडल अभी अडॉप्ट हो रहा है किसी ना किसी स्कीम में।
1: जी
0: और उसके बाद में जो पोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स बन रहे हैं, इनफैक्ट वेंजम पोर्ट है, लेकिन अगर आप वाधवान पोर्ट देखें
1: जी
0: महाराष्ट्र में जो बन रहा है, वो एक और पोर्ट है,
1: जी
0: गलातिया बे का जो पोर्ट है अभी, वो तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट माना जाएगा, जो अंडमान में बना रहे हैं, जो करीब करीब सिर्फ 40 मील है मलाका स्टेट से। तो
1: जी
0: आप
1: जी
0: देखिए कि आप कैसे पूरा देश में हर जगह पे, पूरी देश की पूरी जो लैंडमास है वो कवर हो रहा है, जो भूमि है देश की, सब जगह कहीं ना कहीं
1: बिल्कुल
0: मैरीटाइम डेवलपमेंट हो रही है, चौमुखी विकास लग रहा है
1: जी
0: मुझे।
1: बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था के समग्र विकास से देश के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने के लिए।
0: धन्यवाद जी, शुक्रिया।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद।
3: यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आप हमें FM 102.5 MHz, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो सखी आदित्य निगम। श्रोताओं, वक्त है फिल्म संगीत प्रोग्राम का। आइए सुनते हैं मोहब्बत की मासूम अंदाज को, जहां शब्दों से पहले आंखें बात करती हैं।

अभी आप सुन रहे हैं फिल्म CID से गाना। ये गाना जिसे मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने अपनी आवाज से सजाया है, संगीतकार ओपी नैयर और गाने के गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी।

0: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: श्रोताओं, अब जो गाना आप सुनेंगे उसमें जिंदगी को एक खूबसूरत सफर की तरह देखने का संदेश छुपा है। फिल्म गाइड से सुनिए ये प्यारा सा गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के शब्द और एसडी वर्मन का संगीत मिलकर एक ऐसा जादू रच देते हैं कि मन अपने आप इस गाने को गुनगुनाने लगता है।

श्रोताओं, प्यार की खूबसूरती यही है कि जब दो लोग एक दूसरे को समझने लगे तो जिंदगी की राहें भी खूबसूरत लगने लगती हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में फिलहाल यहीं तक। आपसे पुनः होगी मुलाकात। मैं आदित्य निगम लेती हूं अनुमति। नमस्कार।

0: अब कैसी
1: E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
2: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
1: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
3: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
6: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर। पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
5: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने

0: ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
1: I want to strengthen my party to Tamil Nadu.
2: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
1: To strengthen the party.
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
2: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
3: इंडिया एंड चेक रिपब्लिक, भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
2: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है, वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते, तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
1: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
4: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भूस्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने

0: जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
2: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18 प्रतिशत कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
3: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
4: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
2: 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
1: UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
6: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPA ने बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी UPI लेनदेन निशुल्क रहेंगे। MDR शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेनदेन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत UPI QR कोड के माध्यम से प्रति माह 1 लाख रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई MDR शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ।
1: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी।

है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हम मनसब मार्क कार्नी ने तिजारत, तवानाई, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात में कलीदी शराकत दारी को मुस्तहकम करने से इत्तफाक किया है। मरकजी वजीर एल मुरुगन ने वुजरा की काउंसिल और राज्यसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। भारत ने एक बार फिर कहा है कि लद्दाख मुल्क का एक अटूट हिस्सा है और चीन की जानिब से किसी भी किस्म की तरदीद इस हकीकत को नहीं बदल सकती। फर्द से मर्चेंट को की जाने वाली मुंतखब ट्रांजेक्शन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट शरह पर दिवाली के बाद अमल किया जाएगा। घरेलू मार्केटों में 1.5% का इजाफा हुआ। सेंसेक्स 73,034 पर बंद हुआ। और पैरागोए में आनंद कुमार वेलकुमार ने वर्ल्ड स्केट गेम्स 2026 में 500 मीटर स्प्रिंट में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हम मनसब मार्क कार्नी ने बाहमी ताल्लुकात में मस्बत रफ्तार कायम करने और कलीदी शराकत दारी के तमाम अहम शोबों में ठोस नताइज के लिए काम करने से इत्तफाक किया है। इन शोबों में तिजारत, तवानाई, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और अवाम से अवाम के रवाबित शामिल हैं। दोनों लीडरों ने आज टेलीफोन पर गर्मजोश और कारामद मुजाकरात किए। जनाब मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि भारत और कनाडा एक मजीद मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया की जानिब मिलकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हम मनसब मार्क कार्नी के दरमियान ताल्लुकात को उम्दा तरीन करार देते हुए भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर क्रिस्टोफर कूटर ने आज कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान कभी इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे जितने इन दिनों हैं। नई दिल्ली में कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद की आमद से कबल एक खबर रसा एजेंसी से खिताब करते हुए कूटर ने दोनों मुल्कों की क्यादत के दरमियान हालिया मुलाकातों के बारे में इजहार ख्याल किया, जिसमें वजीर खारजा एस जयशंकर और मोहतरमा अनीता आनंद के दरमियान मीटिंग्स शामिल हैं। उन्होंने कनाडा के वजीर तिजारत मनिंदर सिद्धू के जल्द होने वाले दौरे के बारे में भी बातचीत की। कूटर ने कहा कि भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात प्राइवेट सेक्टर में भी पेशरफ्त कर रहे हैं और दोनों मुल्क एक दूसरे की दरियाफ्त कर रहे हैं और उनका मकसद 2030 तक तिजारत को दुगना करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकज ने अपनी हुक्मरानी के अंदाज़े नज़र और कामकाज के कल्चर में बाइख्तियार बनाने का इख्तियार देने के उसूल को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत की इक्तसादी तरक्की आलमगीर गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान मजबूत बुनियादों पर आगे बढ़ रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की पेशरफ की बुनियादें इज्तिमाई तरक्की और मुश्तरक मौाक़े में पेवस्त हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मुस्तकिल कोशिश रही है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि भारत की सलाहियतें दूसरे मुल्कों के लिए भी मौाक़े के नए दरवाजे खोलें।
1: क्या नॉलेज

केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर

0: है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि हुकूमत आने वाले मरकजी बजट के सिलसिले में सलाह मशवरे के दौरान तवील मुद्दती कैपिटल गेंस टैक्स को खत्म करने से मुतालिक तजावीज की समाअत के लिए तैयार है। जनाब सीतारमन ने नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर खजाना ने इस बात का जिक्र किया कि भारत और बैरून मुल्क दोनों ही जगह के सरमायाकार असासों से मुतालिक मुनाफे और असासों के मुख्तलिफ दर्जात के टैक्सेशन पर तबादला ख्याल करते रहे हैं, जिसमें सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन टैक्स भी शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अहम शोबों जैसे फलाह बहबूद, तालीम और हिफ्जान सेहत पर अखराजात को बरकरार रखते हुए नज्म व जब्त के हामिल एक मालियाती अंदाज नजर को इख्तियार करने का सिलसिला जारी रखेगी। भारत की सेमी कंडक्टर से मुतालिक हिकमत अमली के बारे में मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि मुल्क एडवांस्ड चिप्स और रोजमर्रा की मसनूआत में इस्तेमाल होने वाले सेमी कंडक्टरों के शोबे में मौके पैदा कर रही है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मसनूई जिहानत और डाटा सेंटरों की तेजी के साथ तौसी से बिजली की पैदावार और काबिल भरोसा बिजली के बुनियादी ढांचे की जरूरत में इजाफा होगा। इत्तलात नशरियात और पार्लिमानी उमूर के वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने अपनी दोनों वजारतों और राज्यसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम एक खत में डॉक्टर मुरुगन ने कहा है कि यौमिया उजरत पाने वाले मजदूर के बेटे से उनकी क्यादत में वुजरा की मरकजी कौंसिल में खिदमत अंजाम देने तक उनकी जिंदगी का अजीम तरीन खसूसी हैसियत का हामिल दौर रहा है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि वो जमीनी सतह पर वापस जाएं, पार्टी कारकुनों के साथ खड़े हों और 2029 के लोकसभा इंतखाबात से कबल तमिलनाडु में बीजेपी को इस्तेहकाम अता करने के लिए खुद को हमा वक्त वक्फ कर दें। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि वुजरा की कौंसिल में इन 5 वर्षों के दौरान उन्होंने जनाब मोदी के सब्र, हमदर्दी और गैर मामूली इखलास का इंतहाई करीब से मुशाहिदा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी और उनकी क्यादत से जो कुछ मिला उसने उनके जिम्मेदारी के एहसास को मजीद पुख्ता कर दिया। कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद भारत के 2 रोजा दौरे पर पहुंच गई हैं। अपने दौरे के दौरान वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और हुनरमंदी और कारोबार के वजीर जैन चौधरी से मुलाकात करेंगी। भारत ने आज एक बार फिर कहा है कि लद्दाख भारत का एक अटूट और नाकाबिले तंसीख हिस्सा है और चीन की जानिब से किसी भी हद तक की गई तरदीद के बावजूद ये तस्लीम शुदा हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। लद्दाख के बारे में चीन की जानिब से हाल ही में की गई रायजनी के बारे में मीडिया की तरफ से पूछे गए सवालात के जवाब में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजारत दाखिला की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज इस मामले की पूरी तरह वजाहत करती है। ऐलान में ये जिक्र किया गया है कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख में वाक़ 28 मकामात की मेयारी मकामात के तौर पर निशानदही की गई है और उनके नाम सर्वे ऑफ इंडिया के सरकारी नक्शे में शामिल हैं। ये काम लद्दाख और मकामी तरफैन के सलाह मशवरे से किया गया है। जनाब जायसवाल ने बताया कि सर्वे ऑफ इंडिया के लद्दाख वाले नक्शे पर इन मकामात की बाकायदा निशानदही का मकसद इनकी सही सही पहचान की सहूलत बहम पहुँचाना और आवाम में बड़े पैमाने पर बेहतर बेदारी पैदा करना है। ये आकाशवाणी है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी पर वोटरों की फहरिस्त की नजरसानी SIR के मामले पर मुल्क के अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से खिताब करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबी कमीशन के कामकाज पर सवाल उठा रही है, लेकिन उसने अपनी मुद्दत कार के दौरान उसके कामकाज और तरीक़ाकार के रिकॉर्ड को कतई नजरअंदाज कर दिया है। जनाब गोयल ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है कि उसने इंतखाबी कमिश्नरों को सियासी फायदा पहुंचाया। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत ने आईनी इदारों को मजबूती दी है और उसने इंतखाबी कमीशन को भी खुद मुख्तार बनाया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि एनडीए हुकूमत की जानिब से सियासी फायदे के लिए इंतखाबी कमीशन के अफसरान को इस्तेमाल करने की कोई कोशिश नहीं की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: एक और मरकजी

0: वजीर और जेडीयू लीडर राजीव रंजन सिंह ने भी इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी मुल्क में अनार्की फैला रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की सिमत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि GST काउंसिल जैसे इकदाम के जरिए इस नजरिए को किस तरह हकीकी शक्ल दी जा रही है।
1: 1 जुलाई 2017 को मुतारिफ हुआ अशिया और खदमात टैक्स GST भारत के टैक्स असलाहत के सफर में एक अहम संग मील साबित हुआ। मुतअद्दिद मरकजी और रियासती टैक्सों को एक जामे फ्रेमवर्क के तहत लाते हुए GST ने एक मुल्क एक टैक्स के उसूल को तकवीत बख्शी और मुल्क भर में टैक्स से मुतालिक ज्यादा जामे और मुनज्जम निज़ाम की राह हमवार की। GST काउंसिल की तजावीज़ ने GST रजिस्ट्रेशन तरीक़ाकार को टैक्स दहिंदगान के लिए मजीद साजगार बनाया। गुज़श्ता बरस आइंदा सिलसिले की GST असलाहत के तहत GST काउंसिल ने टैक्स से मुतालिक ढांचे को मजीद सहल बनाया। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि GST के जरिए हुकूमत ने टैक्सों के एक पेचीदा निज़ाम को एक कौमी मार्केट में तब्दील कर दिया है।
2: आज भारत का कॉन्फिडेंस अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। हमें क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन के साथ रिफॉर्म कर रहे हैं। GST के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है और हम यहाँ रुके नहीं हैं। भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। हमारे लिए रिफॉर्म्स कोई कंपल्सन नहीं है, रिफॉर्म्स हमारा कन्विक्शन है।
1: गुज़श्ता 9 बरस में यकसां तरीक़ाकार और माकूल शरहों ने ज्यादा शफाफियत, जवाबदेही और इक्तसादी तरक्की में मदद की है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के नजरिए को तकवीत दी है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: आज PM गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान को 5 बरस मुकम्मल हो गए हैं, जिसके सबब मुल्क भर में बुनियादी ढांचे से मुतालिक जामे मंसूबा बंदी और तरक्की के सिलसिले में नुमाया पेशरफ्त हुई है। आज ही के दिन 2021 में इस मास्टर प्लान का आगाज हुआ था, जिसका मकसद भारत के बुनियादी ढांचे के मंजरनामे में यकसर तब्दीली लाना था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने चेक जमहूरिया के पहले नायब वजीर आजम और सनत और तिजारत के वजीर कारल हैवलिक्स से नई दिल्ली में मुलाकात की। मुजाकरात के दौरान दोनों वुजरा ने अमन और सलामती के जारी मामलात पर तबादला ख्याल किया और इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा तआवुन की जरूरत को तस्लीम किया। सऊदी अरब में भारतीय बाशिंदों को किसी फजाई हमले की सूरत में सब्र व सुकून से रहने, चौकस रहने और घरों के अंदर रहने का मशवरा दिया गया है। रियाद में भारतीय सफारतखाने ने आज ये बात कही कि वो भारतीय बिरादरी को तआवुन फराहम करने के लिए हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे कंट्रोल रूम खुला रहेगा। सफारतखाने ने भारतीय बाशिंदों को पुरजोर तौर पर यह मशवरा भी दिया है कि वो इन दिनों जारी वाकयात से मुतालिक कोई वीडियो या खबरें एक दूसरे को न भेजें और न ही उन्हें रीपोस्ट करें। भारतीय बाशिंदों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी एयरलाइंस के साथ मुस्तकिल राबते में रहें और अपनी परवाजों के ताज़ा तरीन स्टेटस को वेरीफाई करते रहें। किसी शख्स से कारोबारी को मखसूस लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR दिवाली के बाद नाफिज होगा। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर अदायगियों से मुतालिक भारतीय कौमी कॉरपोरेशन ने कहा है कि आज UPI और खिदमात से मुतालिक कायमा कमेटी ने फैसला किया है कि त्यौहारों को जहन में रखते हुए किसी शख्स से कारोबारी को मखसूस UPI लेन देन पर MDR दिवाली के फौरन बाद नाफिज होगा। आज घरेलू शेयर बाजार में 1.5% के इजाफे के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 109 पॉइंट का इजाफा हुआ और 73,034 पर बंद हुआ। निफ्टी में 359 पॉइंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 22,722 पर बंद हुआ। पैरागोई में आनंद कुमार वेलकुमार ने वर्ल्ड स्केट गेम्स 2026 में 500 मीटर स्प्रिंट में कांसे का तमगा जीता है। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले 23 बरस के तेज रफ्तार स्केटिंग करने वाले आनंद कुमार ने 40.856 सेकंड में 500 मीटर के इस मुकाबले को मुकम्मल किया। भारत की सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा को ICC ख्वातीन प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज मिला है। उन्हें सितंबर 2026 के लिए ये खिताब मिला है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हम मनसब मार्क कार्नी ने तिजारत तवानाई टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात में कलीदी शराकत दारी को मुस्तहकम करने से इत्तफाक किया है। मरकजी वजीर एल मुरुगन ने वुजरा की काउंसिल और राज्यसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। भारत ने एक बार फिर कहा है कि लद्दाख मुल्क का एक अटूट हिस्सा है और चीन की जानिब से किसी भी किस्म की तरदीद इस हकीकत को नहीं बदल सकती। फर्द से मर्चेंट को की जाने वाली मुंतखब ट्रांजेक्शन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट शरह पर दिवाली के बाद अमल किया जाएगा। घरेलू मार्केटों में 1.5% का इजाफा हुआ, सेंसेक्स 73,034 पर बंद हुआ। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

आदाब सामईन, आकाशवाणी भोपाल के उर्दू प्रोग्राम कहकशा में आप सभी सामईन का खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन बानो। सामईन, उर्दू शायरी की दुनिया मोहब्बत, खुलूस, रवादारी और इंसानियत के खूबसूरत जज्बात से मामूर है। इस शायरी में जहां इश्क व मोहब्बत के रंग दिखाई देते हैं, वहीं तसव्वुफ की वो रोशन रिवायत भी नज़र आती है जो इंसान को इंसान से मोहब्बत करने, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने और मोहब्बत व अख़ुव्वत के साथ ज़िंदगी गुजारने का पैगाम देती है। आज के इस महफिल समा में हम आपके लिए ऐसी ही रूह परवर कवालियाँ लेकर हाजिर हुए हैं जिनके ज़रिए इश्क इलाही, अकीदत और सूफियाना कैफियात से आरास्ता एक खूबसूरत समा आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। आज की हमारी महफिल का मौजू है उर्दू सूफी शायरी में इंसानियत का पैगाम। सामईन, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से वाबस्ता अकीदत बरसगीर की सूफी रिवायत का एक अहम हिस्सा है। ख्वाजा साहब की तालीमात मोहब्बत, खिदमत खल्क, रवादारी और इंसान दोस्ती का पैगाम देती हैं। उनकी नस्बत से कही जाने वाली शायरी और कवालियाँ अकीदत मंदों के दिलों में मोहब्बत और रूहानियत के जज्बात पैदा करती हैं। इसी अकीदत और मोहब्बत के रंग में डूबी हुई कवाली के बोल हैं, शाने खुदा को देखा ख्वाजा तेरी गली में। इस कवाली को अपनी आवाज से सजाया है जाफर हुसैन ने और इसके शायर हैं नाता कायलपुरी। आइए समात फरमाते हैं ये खूबसूरत कवाली।

आपने समात फरमाई कव्वाली शान खुदा को देखा ख्वाजा तेरी गली में, जिसे जाफर हुसैन ने अपनी आवाज से सजाया था। इस कव्वाली में ख्वाजा साहब की बारगाह से वाबस्ता अकीदत और मोहब्बत के जज्बात नुमाया हैं। सामईन, सूफियाना रिवायत की एक बड़ी खूबी यह है कि ये इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करती है। सूफिया ने हमेशा इंसान को नफरत और तासुब से दूर रहने, दूसरों के दुख दर्द को समझने और खिदमत खल्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की तलकीन की है। सूफियाना शायरी में किसी बुजुर्ग की बारगाह से वाबस्तगी सिर्फ अकीदत का इजहार नहीं, बल्कि उन आला इंसानी अकदार की याद दहानी भी है जिनमें मोहब्बत, आजजी, रवादारी और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का जज्बा शामिल है। उर्दू शायरी की तारीख में सूफियाना शायरी को एक खास मकाम हासिल है। सूफी शायरी सिर्फ इश्क व मोहब्बत, बहर विसाल या खुदा की इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि ये इंसानियत, भाईचारे, रवादारी, अमन और मोहब्बत का पैगाम भी देती है। सूफी शौरा ने हमेशा इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया और मजहब, जात, रंग नस्ल की बुनियाद पर नफरत करने के बजाय एक दूसरे का एहतराम करने की तलकीन की। सूफी शायरी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें इंसान को खुदा की मखलूक समझकर उससे मोहब्बत करने का दर्स दिया गया है। सूफिया के नज़दीक खुदा तक पहुंचने का रास्ता इंसान की खिदमत से होकर गुजरता है। अगर इंसान के दिल में दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत, हमदर्दी और एहसास नहीं है, तो महज इबादत और जाहिरी मजहबी रसूमात से एक अच्छा इंसान नहीं बना जा सकता। सूफी शायरी में दिल को बहुत अहमियत दी गई है। सूफिया का मानना है कि खुदा की मोहब्बत का रास्ता दिल से होकर गुजरता है और किसी इंसान का दिल दुखाना एक बड़ी अखलाकी बुराई है। इसलिए सूफी रिवायत में मोहब्बत, बर्दाश्त और दरगुजर को बुनियादी मकाम हासिल है। बुल्ले शाह जैसे सूफी शौरा ने भी जाहिरी फ़िरकों और रस्म रिवाज से ऊपर उठकर इंसान को मोहब्बत का पैगाम दिया। बुल्ले शाह की शायरी हमें यह समझाती है कि इंसान की असल पहचान उसका लिबास, उसकी ज़ात या उसका मजहब नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद मोहब्बत, सच्चाई है। जो शख्स दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, वही हकीकी मायनों में इंसानियत की खिदमत करता है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं एक और अकीदत भरी कव्वाली, जिसके बोल हैं दरे ख्वाजा ख्वाजगा से मिलेंगे। इस कव्वाली के शायर नज़ीर अली आदिल हैं। इसे अजीज अहमद वारसी और उनके साथियों ने अपनी आवाजों से आरास्ता किया है। तो आइए समात फरमाते हैं यह कव्वाली।

और जिंदगी के फलसफे को बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। उनका मशहूर शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। इस शेर में शायर ने इंसान की पैदाइश का मकसद बयान किया है। उनके मुताबिक इंसान को सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि दूसरों के दुख दर्द को समझने और उनके काम आने के लिए भी पैदा किया गया है। इंसानियत का असल तकाजा यही है कि हम किसी के दुख को अपना दुख समझें और ज़रूरत के वक्त उसका सहारा बने। उर्दू के अजीम शायर मीर तकी मीर के यहाँ भी जिंदगी की नापायदारी और इंसान की बेबसी का एहसास नुमाया है। मीर का ये शेर सुने, हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश सराब की सी है। मीर इस शेर में इंसान की ज़िंदगी को पानी के बुलबुले से तशबीह देते हैं, जो एक लम्हे में वजूद में आता है और दूसरे लम्हे ख़त्म हो जाता है। जब ज़िंदगी इतनी मुख्तसर और आरजी है तो फिर इंसान को गुरूर, नफ़रत और दुश्मनी के बजाय मोहब्बत और हमदर्दी से काम लेना चाहिए। मिर्ज़ा गालिब ने भी इंसान की शख्सियत और इसकी हकीकत पर बड़ी गहरी बात कही है, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। ये शेर हमें याद दिलाता है कि आदमी होना और इंसान होना दो अलग बातें हैं। इंसानियत का मतलब सिर्फ इंसान की शक्ल में पैदा होना नहीं बल्कि अपने किरदार, अपने अमल और अपने रवैये से दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी गमजदा को तसल्ली देना, किसी मजबूर की मदद करना और किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाना ही इंसानियत की हकीकी मिसालें हैं। सूफियाना फिक्र सिर्फ उर्दू शायरी तक महदूद नहीं रही। कबीर ने भी अपने दोहों के जरिए मजहबी तासुब और ज़ाहिरी इल्म परस्ती की मुखालफत की। उनका मशहूर दोहा है, पोथी पड़ पड़ जग मुआ पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर का पैगाम वाज़े है कि महज किताबें पढ़ लेने से इंसान इल्म वाला नहीं बन जाता, हकीकी इल्म मोहब्बत, आजजी और इंसानियत के जज्बे से पैदा होता है। अगर हमारे इल्म से हमारे अंदर बर्दाश्त, हमदर्दी और दूसरों के एहतराम का जज्बा पैदा नहीं होता तो उस इल्म की तकमील बाकी है। अल्लामा इकबाल ने भी अपनी शायरी में इत्तेहाद, भाईचारे और इंसानियत की अहमियत पर जोर दिया। उनका मशहूर शेर है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। ये शेर आज भी हमारे माशरे के लिए एक अहम पैगाम रखता है। मजहब का मकसद इंसान को बेहतर किरदार का मालिक बनाना है, ना कि उसे दूसरे इंसानों से नफरत करना सिखाना। जब मजहब के नाम पर नफरत, तासुब और दुश्मनी को फरोग दिया जाता है तो मजहब की असल रूह मजरूह हो जाती है। आज के दौर में सूफी शायरी और इसके पैगाम को अहमियत से पहले कहीं ज़्यादा महसूस होती है। हमारे माशरे में मजहबी, समाजी और सियासी अख्तलाफात बढ़ रहे हैं। लोग एक दूसरे की बात सुनने, समझने की बजाय फौरन मुखालिफत पर उतर आते हैं। ऐसे माहौल में सूफी शौरा का पैगाम हमें याद दिलाता है कि इख्तलाफ के बावजूद मोहब्बत और एहतराम कायम रखा जा सकता है। सूफी शायरी हमें यह भी सिखाती है कि इंसानियत की खिदमत के लिए किसी बड़े ओहदे, दौलत या शोहरत की ज़रूरत नहीं। हम अपने रोज़मर्रा के मामूलात में छोटे छोटे कामों के जरिए भी इंसानियत का हक अदा कर सकते हैं। किसी परेशान हाल शख्स की बात सुन लेना, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना, किसी बुज़ुर्ग का एहतराम करना, बच्चों से शफ़क़त करना और दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना, ऐसे आमाल हैं जो माशरे में मोहब्बत और सुकून पैदा करते हैं। सामईन, आपने उर्दू सूफ़ी शायरी और इंसानियत के मौजू पर ख्वाजा मीर दर्द में मीर गालिब, बुल्ले शाह, कबीर और अल्लामा इकबाल के कलाम और उनके पैगाम को सुना। ये तमाम अशआर हमें मोहब्बत, आजजी, हमदर्दी, इंसान दोस्ती की अहमियत का एहसास दिलाते हैं। सूफियाना फिक्र का यही पैगाम हमारी आज की महफिल समा की रूह है। अब इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। वक्त है एक ऐसे कव्वाली का जिसके बोल हैं, ख्वाजा पिया का आस्ताना मिल गया। इस कव्वाली को मुनव्वर मासूम और उनके साथियों ने अपनी आवाज़ों से सजाया है। आइए अकीदत और मोहब्बत के इस रंग को अपनी समातों में बसाएं और समात फरमाएं। ये कव्वाली, ख्वाजा पिया का आस्ताना मिल गया।

सामईन आप समात फरमा रहे थे आकाशवाणी भोपाल का उर्दू प्रोग्राम कहकशां, जिसकी आज की महफिल समा में हमने उर्दू सूफी शायरी और इंसानियत के मौजू पर बात की और तीन खूबसूरत कवालियां आपकी नज़र की। हमें उम्मीद है कि यह महफिल आपको पसंद आई होगी और सूफी शायरी के जरिए मोहब्बत, रवादारी, भाईचारे और खिदमत खल्क का जो पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है वो आपके दिलों को ज़रूर छुएगा। मैं आफरीन बानो आज की इस महफिल से आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मोहब्बत, अमन और इंसानियत के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाते रहिएगा। आप अपनी आरा, तजावीज और खुदूत हमें इस पते पर अरसाल कर सकते हैं। उर्दू प्रोग्राम कहकशां, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, श्यामला हिल्स, आकाशवाणी भोपाल, पिन कोड है 462002। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों के लिए आसानी पैदा करते रहिए। इस दुआ नेक तमन्नाओं के साथ मुझे यानी आफरीन बानो को दीजिए इजाज़त। आदाब।

उर्दू कार्यक्रम कहकशां अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारा अगला कार्यक्रम होगा कुछ ही देर बाद।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक

0: यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने पर हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत फिल्म दिल तेरा दीवाना से। शब्द रचना शैलेंद्र की है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, जिसकी शब्द रचना है राजेंद्र कृष्णा की, मदन मोहन ने धुन बनाई, किशोर कुमार की आवाज़ और फिल्म का नाम है मनमौजी।

की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों ने। गीत को लिखा शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म श्री 420 से।

हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनते हैं, फिल्म जब प्यार किसी से होता है से। गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर और कमल बारोट की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म पारसमणि से। असद भोपाली के लिखे बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अगला गीत हम सुनते हैं, जिसे गाया है आशा भोसले ने, शेवान रिजवी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, और ये गीत है फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं कुमार लाल मिश्र का तबला वादन। आइए सुनते हैं पहला राग, 3 ताल।

ने सुना कुमार लाल मिश्र का तबला वादन, राग था तीन ताल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का तबला वादन ताल रूपक पर।

0: श्रोताओं, इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, बड़ी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
2: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
1: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में तीन नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि दो नगर पालिकाओं और एक नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती हैं। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को SIR से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज़ बारिश की बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।